ये आकाशवाणी सागर है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 सितंबर सन 2000

समाचार 26। इस वक्त सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

श्रोताओं, आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी सुबह के 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। आइए प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ब्रिक्स देशों में सहयोग की प्रेरणा हो और मानवता की प्रगति के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होंगे। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949

0: 1947 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTEL गया पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। सुबह के 6:05 हुए हैं। ये वक्त अर्चना का है जिसकी शुरुआत कर रहे हैं समूह स्वर में इस मातृ वंदना के साथ।

अभी श्रोता भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुन रहे थे। FM बैंड पर हम आकाशवाणी सागर से बोल रहे हैं।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ, 8700014242।

आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। श्रोताओं, इस वक्त सुबह के 6:25 हुए हैं। आपको इंतजार होगा कार्यक्रम विवरण का। आपको बताना चाहेंगे, थोड़ी ही देर बाद यानी 6:30 पर श्रोता सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। कुछ पुराने फिल्मी गीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में समय रहेगा सुबह 6:40। सुबह सुबह ये दैनिक वैचारिक क्रम लेकर आएंगे सुबह 7 बजे और 7:05 पर आप कृषि संकेत सुनेंगे। 7:20 का वक्त रहेगा मन चाहे गीत कार्यक्रम का और 7:45 पर संगीत सरिता। सुबह 8:15 सुनिएगा लोक संगीत कार्यक्रम। आज सोमवार है, 8:30 पर आप बिंदिया कार्यक्रम सुनेंगे। सुबह 9:00 आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। श्रोताओं, आज सुबह 9:10 पर सुनिएगा पॉडकास्ट श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इस पॉडकास्ट श्रृंखला का 11वां भाग आज आप सुनेंगे। 9:40 का वक्त रहेगा संगीत सरिता का। 9:50 पर आपके लिए लेकर आएंगे प्रायोजित कार्यक्रम मन उपचार सुखी संसार। 10:00 आप जिले की चिट्ठी सुनेंगे और 10:05 पर फोन करें लोकगीत सुने। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग लेकर आएंगे सुबह 11:00।

0: हेलो माँ। माँ तुम्हारी बहुत याद आती है, और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
1: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर न्यूज ऑन AIR।
0: न्यूज ऑन AIR?
1: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
0: अरे वाह माँ, कमाल है।
1: न्यूज़ ऑन AIR।
2: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770 43।

श्रोताओं आपको बताना चाहेंगे कि युववाणी कार्यक्रम आप शाम 5:02 पर सुनेंगे। संगीत सरिता कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:30 पर। शाम 6:30 पर कुछ सदाबहार गीत आपकी नजर किए जाएंगे। लोकरंग कार्यक्रम का वक्त रहेगा शाम 6:45। ग्राम सभा आप सुन सकते हैं शाम 7:20 पर। रात्रि 8:00 चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा और 8:20 पर संगीत सरिता। रात्रि 9:00 का वक्त मन चाहे गीत कार्यक्रम का रहेगा। रात्रि 9:30 से विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। रात 11:00 हिंदी में समाचार होंगे और 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार।

ये आकाशवाणी सागर है। इस वक्त 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। आज आप इसकी 110वीं कड़ी सुनेंगे, जिसमें मुख्य गायक स्वर सुरेश वाडकर का है।

बागवानी करने वालों को अयोध्या से आई बारात जब जनकपुर के निकट दिखाई दी तो हृदय में उमड़ते आनंद से उनके शरीर रोमांचित हो उठे। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। राजा जनक ने बारातियों के लिए दूध, ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्र आभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु पक्षी घोड़े हाथी भी भिजवाए गए। अगवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर इस प्रकार मिल रहे हैं मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंद मग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले जनवासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ सुन रहे थे। मुख्य गायक स्वर सुरेश वाडकर का था। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। इस वक्त सुबह के 6:40 हुए हैं। ये समय है कुछ पुराने फिल्मी गीत आप तक पहुंचाने।

संगीत तैयार किया है। गीत को सुनवाने से पहले श्रोताओं को ये भी स्मरण करवाना चाहेंगे कि आज अभिनेता तरुण बोस जी का जन्मदिन है, तो उन्हीं पर फिल्माया ये गीत। आइए सुने सबसे पहले।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: आइए सुने फिल्म पतीता से ये गीत, जिसे लता मंगेशकर ने गाया, शैलेंद्र ने लिखा, शंकर जयकिशन ने संगीत दिया।

इस गीत के साथ ही इस कार्यक्रम को यही संपन्न करने की हम अनुमति चाहते हैं। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। श्रोताओं, थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार जो अनुप्रसारित किए जाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। आइए इंतजार करते हैं थोड़ी सी देर।

0: सिद्धि बुद्धि सिद्धिनां प्रतीकभूतस्य भगवतः श्री गणेशस्य जन्मोत्सवत्वेन आमान्यते। विनायक चतुर्थी उत गणेशोत्सवः इति नामना प्रसिद्धः अयं दिनविशेषः दश दिवसीयानां उत्सव कार्यक्रमाणां शुभारंभं सूचयति, यस्मिन् भक्ताः स्वकीय गृहेषु मण्डपेषु च भगवतः गणेशस्य मृणमयीं प्रतिमानं प्रतिष्ठाप्य विधिवत् पूजार्चनं कुर्वन्ति। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य गुजरात राज्ये अति तीव्र वृष्ट्यै नारंगवर्ण परा संचेतना प्रकाशिता। ऋतु विज्ञान विभागानुसार अद्य राष्ट्रीय राजधान्यां नवदिल्ल्यां हरियाणा राज्ये चंडीगढ़े पंजाबे पूर्व राजस्थाने असमे अरुणाचल प्रदेशे च अतिवृष्टि संभाव्यते। गतरात्रौ दुबई नगरे अनुष्ठितायां महिलानां 20-20 एशिया चषक प्रतिस्पर्धायाः अंतिम स्पर्धायां भारतेन श्रीलंका दलं 270 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी सागर है। श्रोताओं सुबह के 7 बजे है, वक्त है कार्यक्रम सुबह सुबह का। कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं साहिबा, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। श्रोताओं आज गणेश चतुर्थी है और हिंदी दिवस भी है, हमारे सभी श्रोताओं को खूब सारी शुभकामनाएं। और श्रोताओं जब भी भाषा की बात होती है तो वाणी का जिक्र जरूरी हो जाता है। कबीरदास जी के अनुसार ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हम शीतल होए। यानी हमें अपनी वाणी में मधुरता और विनम्रता रखनी ही चाहिए। ये बिल्कुल सच है कि मधुर स्वभाव और वाणी का जीवन में बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये न केवल संबंधों को मजबूत और सुखद बनाती है बात, बल्कि दूसरों के दिलों में सम्मान और प्रेम का भाव भी इससे जग जाता है। मीठी वाणी एक अमृत के समान है जो कड़वाहट को दूर करती है, प्रसन्नता और सफलता को हमारे बहुत नजदीक लेकर आ जाती है। मधुरता से हमारी बातचीत में और हमारे व्यवहार में निखार भी आ जाता है। इससे और भी बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे आपसी समझ और विश्वास भी बढ़ने लगता है। हमारा मधुर व्यवहार परिवार में, समाज में, ऑफिस में आपसी मनमुटाव, झगड़े वगैरह मिटाकर संबंध को स्थायी बना देता है और संबंध बहुत मजबूत भी हो जाते हैं। आपने हमने सबने देखा है कि जो मधुर स्वभाव वाले इंसान होते हैं वो समाज में ज्यादातर लोगों के मन पसंद होते हैं और दूसरे लोगों से उनको बहुत ज्यादा आदर भी मिलता है और सम्मान भी मिलता है। लोग उनके बीच रहना पसंद करते हैं, उनसे बात करना पसंद करते हैं। यह भी देखा गया है कि अच्छे अखलाक से बड़े बड़े काम आसानी से बन जाते हैं। ये न सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा है बल्कि ये स्वयं को भी शांति प्रदान करता है। जहां हमारी अगर कठोर वाणी है तो वो लोगों को हमसे बहुत दूर कर देगी, वहीं अगर मधुर वाणी है, मधुर व्यवहार है तो लोगों का दिल जीत लेगी ऐसी वाणी और उन्हें हमारे नजदीक लाएगी। लेकिन इसके साथ साथ सच ये भी है कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमें अपने व्यवहार को सख्त करना पड़ता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि वो सख्ती हमें केवल उस परिस्थिति तक ही सीमित रखनी चाहिए जब उसकी आवश्यकता थी। उसके बाद फिर से हमें अपने व्यवहार को सहज कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम बहुत दिनों तक उसी सख्ती में जीने के आदि हो जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो हमारा व्यवहार बन जाएगा, वो हमारी आदत बन जाएगी। इसलिए अपने को बदलना बहुत जरूरी होता है, जिससे सख्त व्यवहार या ये कटु भाषा हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा कभी ना बन पाए। क्योंकि आपने और हमने सबने महसूस किया है कि जो आनंद मधुरता में है वो कहीं और है ही नहीं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि लोग हमसे बहुत मीठी वाणी में बात करें, अच्छी बात करें, सुखद बातें साझा करें। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम ऐसा कितनी बार करते हैं? क्या हम लोगों से मधुरता से बोलते हैं? क्या

0: हम लोगों से बहुत सुखद बातें साझा करते हैं। क्या हम ये कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग हमारी बातों से उत्साहित रहें और उनको प्रेरणा मिले? अगर हम ये सब बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही समाज से ये कड़वापन कम होकर मिठास फैल जाएगी, जो सभी के लिए सुखद है। आज सुबह सुबह बस इतना ही। इजाजत दीजिए साहिबा को इस कार्यक्रम से। अब आप सुनेंगे कृषि चर्चा पर आधारित हमारा कार्यक्रम कृषि संकेत। थनेला रोग से बचाओ, इस विषय पर केंद्रित है आज का ये अंक, जिसमें विशेषज्ञ हैं डॉक्टर बी के शर्मा।
1: वर्तमान समय में सभी पशुपालकों से निवेदन है कि टीकाकरण शीघ्र अति शीघ्र करा लें। बारिश हो चुकी है, गलघोंटू और जो हम बोलते हैं खुरपका मुंहपका, इसका टीकाकरण सभी पशुपालक निश्चित रूप से कराएं। और जहां तक बात है सबसे खतरनाक बीमारी या पशुपालन में बहुत नुकसानदेह बीमारी, तो उसमें नाम पहला नंबर पे आता है मैस्टाइटिस, जिसको हम बोलते हैं थनेला रोग। गाय के थनों में जो रोग होता है वो पशुपालक ऐसे देख सकते हैं कि शुरुआती दौर में यदि इस रोग की पहचान हो जाती है तो इसका इलाज बहुत सरल है, वरना लेट जब हम हो जाते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है और पशु दूध का भी एक नुकसान होता है, पशु की जो बाजार मूल्य है वो भी घट जाता है और दवाओं पर भी काफी खर्च करना पड़ता है। तो मैं पशुपालकों से बताना चाहूंगा कि मैस्टाइटिस रोग को जितने जल्दी पकड़ लिया जाए उतना ही ठीक होता है और कम दवा में इसका लाभ मिल जाता है। तो मैं कुछ लक्षण बताना चाहता हूं कि कैसे समझेगा एक पशुपालक के हमारी गाय या भैंस को मैस्टाइटिस या थनेला रोग है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि थनों में से जो सेंट आती है, जो धार आती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है या तो धार इधर उधर जाएगी, ठीक है ना, उसमें छितड़े आने लगते हैं या कुछ मांस का टुकड़ा आ जाता है या थनों में जो दूध है वो रुक जाता है, जम जाता है, तो ये देखकर। दूसरा, उसमें लालिमा आ जाती है, अडर पे आप देखेंगे लालिमा आ जाएगी और गाय अपना दूध लगाने से परहेज करेगी। जब आप गाय को लगाने जाएंगे तो वो पैर भी मार सकती है। और थनों पर सूजन, ये भी एक मुख्य लक्षण में आता है। यदि इन लक्षणों को पशुपालक जल्दी देख लेता है, और इसमें क्या करते हैं आजकल पशुपालक थोड़ा सा पीछे नहीं है, उसको भी आगे आना चाहिए। एक काउ साइड टेस्ट होता है, बहुत ही सामान्य सा टेस्ट है, गौशाला में भी हो सकता है। उसमें हम पशु का मिल्क चार कटोरी में अलग अलग निकालकर, एक मैस्टाइटिस स्ट्रिप बाजार में उपलब्ध होती है जिससे कि हम पशु के दूध का पीएच देख सकते हैं। पीएच से भी ये मालूम चल जाता है कि यदि पीएच बढ़ रहा है, एल्कलाइन पीएच पे हम जा रहे हैं एसिडिक से, तो ये मैस्टाइटिस रोग का लक्षण हो सकता है। और जितने जल्दी यदि हमको पता चल जाता है। अच्छा, दूसरी गलती एक जो पशुपालक करता है उसमें भी हम बताना चाहेंगे कि एक पशु से दूसरे पशु में रोग का फैलाव, वो हम हमारी जानकारी के अभाव में कर लेते हैं। होता क्या है, मान लीजिए किसी के पास 10 गाय है और एक गाय को थनेला रोग है, पशुपालक या लगाने वाला क्या करता है, पहले नंबर पर उसी गाय को लगा ली, उसके बाद फिर हैंड वॉश नहीं किए, हाथ नहीं धोए और दूसरी गाय को लगाने बैठ गया, तो इस गाय से उस गाय का दूध, मतलब जब वो एक ही हाथ से दूसरी गाय लगाएगा तो ये थनेला रोग फैलता है। दूसरा ये करना है पशुपालकों को, ये भी ध्यान देना है कि यदि जिस गाय में थनेला रोग है और वो एक ही थन में आया है, तो या तो जिस गाय को थनेला रोग है उसको पशुशाला में सबसे आखिरी में लगाना है, दूसरा कि जिस थन में ये रोग है उस थन को भी आखिरी में लगाना है। पता चला कि एक ही गाय का एक थन खराब था, उसको पहले लगा लिया, फिर उसी हाथ से दूसरा थन छुआ तो वो एक थन से दूसरे थन में जा रहा है, ये सब जानकारी के अभाव है। तीसरा, शुरुआती दौर में आप इतना कर सकते हैं कि बाजार में पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा के नाम, लाल वाली दवा के नाम से सभी जानते हैं, उसका एक चने के बराबर दवा आधा लीटर पानी में मिलाएं और गाय को पूरा लगाने के बाद, बछड़े को पिलाने के बाद एक गिलास में उस घोल को रखकर चारों थनों को उसमें डिप करना है, गिलास को ऐसे लगाना है कि उसका थन उसमें डूबे, जिससे कि वो दवा कैनाल के थ्रू उसके अंदर पहुंच जाए। दूसरी दवा का नाम है क्लोरहेक्साडिन, बाजार में उपलब्ध होता है, मुंह के कुल्ले करने के लिए सामान्य तौर पर ह्यूमन में यूज करते हैं, उसका भी आप 100 ml में 2.5 ml दवा डालकर और हमेशा यदि ये प्रोसेस अपनाएंगे तो आपकी पशुशाला में ये रोग नहीं आएगा। क्योंकि इस रोग में भारत में सबसे ज्यादा, लगभग वार्षिक अगर हम मूल्यांकन देखें तो 100 करोड़ से ज्यादा का खर्च होता है। तो यदि हम इस रोग से मुक्ति पा गए, तो देखो जब दवाएं शुरू होती हैं तो इस रोग पर जितना खर्च आता

0: वो तो अलग है, और पशुओं पे जो दूध का नुकसान होता है, दूध घट जाता है, वो भी अलग है और काफी नुकसान है। अच्छा, और पशुपालक से एक निवेदन और मैं करना चाहूंगा कि जब ये रोग हो, थनैला रोग, उस रोग के दौरान एवं उसके उपचार के दौरान ये दूध किसी को ना बेचें।
1: थनैला रोग से बचाओ, इस विषय पर अभी आपने कृषि संकेत का ये अंक सुना। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, अनुप्रसारण भोपाल केंद्र से।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं, समाधान का इकोसिस्टम। हिंदी दिवस के मौके पर आज भोपाल में भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का होगा शुभारंभ। प्रदेश में बड़ा पुलिस फेरबदल, 137 अफसरों के तबादले और प्रदेश में 3 मानसूनी सिस्टम सक्रिय। आज 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कल समापन हुआ। समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधान का एक इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन साझा विजन और भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों से योजनाओं और फैसले को समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारने की अपील की। उन्होंने सम्मेलन की सफलता के लिए सभी सदस्य देशों का आभार जताते हुए 2027 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाले चीन को शुभकामनाएं दी।
1: की मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: आज देशभर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस मौके पर आज भोपाल स्थित भारत भवन में 2 दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम 4 बजे करेंगे। 2 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, कवि मातृभाषा, संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्यों पर संवाद करेंगे। प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। शासन ने 10 आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के 127 अधिकारियों समेत कुल 137 पुलिस अफसरों के तबादले किए हैं। गृह विभाग ने कल देर रात इनके आदेश जारी किए, जिसमें डीएसपी, एसडीओपी, सीएसपी और एसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। कई अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय से मैदानी पदों पर भेजा गया है, जबकि कई अफसरों की दूसरे जिलों में नई जिम्मेदारी तय की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन भी शामिल होंगे। श्री शाह ने बताया कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इसी साल अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर उनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे हो रहे हैं।
2: 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक हम एक माह सेवा संकल्प अभियान के रूप में चलाएंगे। इस सेवा संकल्प अभियान पूरे राष्ट्र में चलेगा। राष्ट्र की हर प्रशासनिक इकाई, हर जिले में, हर लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में और बूथ तक सेवा संकल्प अभियान को लेकर हम देश की जनता तक पहुंचने वाले हैं।
0: वहीं दूसरी तरफ उज्जैन में सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर को क्षिप्रा नदी के घाटों और महाकाल महालोक क्षेत्र में 25 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। शाम 7 बजे होने वाले आयोजन के लिए पूरे क्षेत्र को 7 सेक्टर और 250 सब सेक्टर में बांटा गया है। इनमें दीप जलाने के लिए करीब 25,000 वॉलंटियर्स तैनात किए जाएंगे। प्रशासन की ओर से हर सब सेक्टर में दीप, तेल, कपूर, माचिस और अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। आयोजन को जीरो वेस्ट रखने के लिए सफाई और कचरा प्रबंधन की भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है और राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि ये पवित्र पर्व सभी को जीवन में नए संकल्पों के साथ तरक्की के रास्ते पर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी गणेश चतुर्थी और तीज के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सभी के मंगलमय जीवन की कामना की है।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के साथ शिवपुरी जिले में भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है। जिले के कोलारस जनपद के ग्राम खरे की किंता शाक्य इसकी जीवंत मिसाल है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता रंजीत गुप्ता।
4: किंता राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राम जानकी स्व सहायता समूह से जुड़ी। समूह से उन्हें पहला 10,000 रुपए का लोन मिला, जिससे उन्होंने छोटी सी किराना दुकान शुरू की। समय पर लोन चुकाने से उनकी साख बढ़ी। दूसरा लोन 30,000 रुपए का मिला, जिससे उन्होंने फेरी लगाने के लिए एक गाड़ी खरीदी। पति गांव-गांव जाकर सामान बेचने लगे, जिससे आय कई गुना बढ़ गई।
5: मेरा नाम किंता शाक्य है, मैं करई से हूँ। मैं जब समूह में नई जुड़ी थी, तब मैं हमारे घर के कुछ ऐसे ही हालात, लेकिन हमारा परिवार बहुत बड़ा है। हम पे 5 वीं का घर है, हमारा परिवार, हम हमारे बच्चे, हमारा कुछ तरह नहीं होता था। समूह बनने के गाँव में हमने आजीविका मिशन समूह बनाया, उसमें हम जुड़े थे। हम आजीविका मिशन का, हमारे मंत्री का हम धन्यवाद दिल से करते हैं।
4: एक समय संसाधनों के अभाव से जुड़ने वाली किंता शाक आज न केवल अपने पूरे परिवार को एक सशक्त और समृद्ध आर्थिक आधार दे चुकी है, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई है। शिवपुरी से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रंजीत गुप्ता।
0: सागर जिले के बंडा के जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी शिवांजय राजपूत को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कठुआ नाला जंगल के रास्ते अपने गांव छापरी जाने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस का दावा है कि शिवांजय ने 3 राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने 2 राउंड गोली चलाई और 1 गोली उसके पैर में लगी। आरोपी पर पुलिस अधीक्षक की ओर से 30,000 रुपए का इनाम घोषित था और उसके खिलाफ शराब तस्करी के 3 मामले पहले से दर्ज है। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा,
6: सागर के अंदर हमारी पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। एक अपराधी का 7 एनकाउंटर हुआ है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। लाइन रूप लेकर के हम बिल्कुल लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। होने वाली घटना पर हमारी कठोरता जारी रहेगी।
0: प्रदेश सरकार ने अगले 5 साल में प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी दिशा में पिछले 1.5 साल में रोजाना दूध का संकलन 8,73,000 किलो से बढ़कर जुलाई 2026 में करीब 12,00,000 किलो हो गया है। प्रदेश में 26,000 दुग्ध सहकारी समितियां बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। छिंदवाड़ा के मोखेड़ में स्थित कुकड़ी खापा जलप्रपात में कल नागपुर के 4 युवक अचानक बड़े पानी के बीच फंस गए। करीब 150 फीट ऊंचाई से गिरते पानी के नीचे चट्टान पर बैठे युवक करीब 1.5 घंटे तक मदद का इंतजार करते रहे। सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और करीब 150 फीट गहराई में उतरकर रस्सियों की मदद से चारों को सुरक्षित बाहर निकाला। भोपाल में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक कृष्ण मोहन झा की पुस्तक डॉक्टर मोहन भागवत संदेश का विमोचन विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में किया गया। पुस्तक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत के राष्ट्र चिंतन, भारतीय संस्कृति, सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विचारों को संकलित किया गया है। लेखक कृष्ण मोहन झा ने बताया कि अलग अलग विषयों पर डॉक्टर भागवत के विचारों को एक जगह प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ये पुस्तक तैयार की गई है। प्रदेश के हॉकी खिलाड़ियों खैदम शिलिमा चानू, कृष्णा शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है।

में हुए महिला जूनियर एशिया कप 2026 के फाइनल में भारत ने मेजबान चीन को 1-0 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब जीता। शिलिमा चानू ने भारतीय टीम की कप्तानी संभाली जबकि कृष्णा शर्मा ने जापान और पाकिस्तान के खिलाफ गोल कर जीत में अहम योगदान दिया। और अब बात मौसम की। प्रदेश में कल इंदौर उज्जैन ग्वालियर संभाग में एक साथ 3 मानसूनी सिस्टम सक्रिय रहे जिससे कई जिलों में तेज बारिश हुई। बड़वानी में नदी नाले तालाब उफान पर है जबकि इंदौर मुरैना रतलाम समेत कई इलाकों में भी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज उज्जैन नीमच मंदसौर रतलाम राजगढ़ गुना और श्योपुर में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भोपाल समेत कई जिलों में हल्की से तेज बारिश का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में समर्थन मूल्य पर धान ज्वार और बाजरा की खरीदी के लिए जिले में 6 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। खंडवा और नर्मदापुरम में गणेश चतुर्थी के साथ गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। ग्वालियर में तिगरा जलाशय में क्षमता से ज्यादा पानी आने पर कल शाम 3 गेट खोलकर सांक नदी में पानी छोड़ा गया। डिंडोरी में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर मंत्री संपत्तियां उइके ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मंडला कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे ने कान्हा से लगे भानपुर खेड़ा में स्वास्थ्य शिविर का जायजा लिया और बैगा ग्रामीणों से संवाद किया। कटनी में जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में करीब 160 बच्चों और युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सीहोर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधान का इकोसिस्टम। हिंदी दिवस के मौके पर आज भोपाल में भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का होगा शुभारंभ। प्रदेश में बड़ा पुलिस फेरबदल, 137 अफसरों के तबादले और प्रदेश में 3 मानसूनी सिस्टम सक्रिय। आज 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी सागर है। समय हुआ है कार्यक्रम मन चाहे गीत का। आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और सबसे पहले सुनते हैं फिल्म जानी दुश्मन से ये गाना। आपको बताता ही चले कि आज जाने माने डायरेक्टर राजकुमार कोहली जी का जन्मदिन है और उन्हीं की इस फिल्म का गीत हमारे श्रोताओं ने सुनना चाहा है। गीत को आवाज लता मंगेशकर ने दी, वर्मा मलिक के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आप सबका अनुरोध। ये है अडार नादघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश दीपेश वर्मा, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खटसे, विनोद खटसे, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से ये अनुरोध आया था हमारे साथियों का। साथ ही बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवांगन, रोशनलाल देवांगन, हेमलता, डिंपल कुमारी, भाव्या देवांगन, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ, साइना और निवान शर्मा। आइए सुनते हैं ये गीत।

आंसू बन गए फूल। इस फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया हुआ ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। गोविंद मोनिस के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी, तृप्ति। राजकोट गुजरात से अनुरोध है रश्मि झरना, भरत कुमार। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति, रोहतास बिहार से सोनम सिंह, अनामिका सिंह। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल, नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का। तो आपकी पसंद पर आइए सुने ये गाना।

दिल तेरा दीवाना, यह है फिल्म का नाम जिससे अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये तो गाना। गीत रचना शैलेंद्र की है और संगीत शंकर जयकिशन का है। अनुरोध करता है तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से बंडू पोपलघट, माया शिवांश, चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट, हरिभाव बिड़वे, कोरवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, चीनू आसमा, दीपक, अनुश्री, अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर, ग्राम लोहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र यादव, अरविंद, रागनी, रिया, रेनू और रोनिका यादव।

0: सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और आइए अब सुनते हैं फिल्म नागिन से ये गीत, जिसे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने गाया, वर्मा मलिक ने लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत तैयार किया। आपने अनुरोध हम तक पहुंचाया। ये है पश्चिम सिंह भूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश, संगीता, लिपि, दीपाली। और ये अनुरोध है ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, इंदूरकर, जसविनी चौहान, माई इंदूरकर, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता और अनिकेत चौहान। केवली गांव पुणे से अंकिता कामले, विजय कामले, सेदापुरकर, बेबी शौर्या और श्रेयस कामले। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से अनुरोध करता है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, राहुल, गुरशबद सिंह, राहुल। आइए सुनते हैं ये गाना।

और अब सुनते हैं बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में इंदिवर के बोल। ये गीत जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद अजीज ने, गीत है फिल्म मुद्दत से और फरमाइश आप सबकी है। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी, अंकित, उत्तम नगर दिल्ली, बोगराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल। मलयाला सधना मेरठ से अनुरोध है अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम। नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबन। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निकट परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के तमाम लोग। आइए सुने प्रोग्राम के आखिरी पेशकश ये गीत।

और अब साहिबा को इजाजत दीजिए इस प्रोग्राम से। अभी श्रोता मनचाहे गीत कार्यक्रम में अपने फरमाइशी गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है, वक्त हुआ है संगीत सरिता का। सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं ये पेशकश जिसको आवाज पंकज उदास ने दी, चंचल आंखों से कहानी बयां करती हुई ये गजल, आइए सुनिए।

0: अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: श्रोताओं, खामोश लबों से भी बहुत अफसाने बयां हो जाते हैं, ऐसी अंदाज की गजल आप तक आ रही है अनुराधा पुरवाल और पंकज उदास की आवाज में।

जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा।

अभी श्रोता संगीत सरिता कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है। थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिसका अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा। आइए इंतजार करें।

0: 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। नीरज बोम्मा देवरा ने मेक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनकर इतिहास रचा। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलूपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। भारत ने 12-13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम 3 दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
2: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
0: श्री शाह ने कहा कि 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को बिना किसी विवाद के हटा दिया गया है।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35A हटा

0: करना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है।
1: श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 5 दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह अभियान भाजपा, एनडीए के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देश भर के नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा से मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवा चे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाएं, सांस्कृतिक और साहित्य परंपरा के साथ हिंदी के जीवंत संबंधों को रेखांकित करना है। उद्घाटन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTL गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कल देर शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सलालाह में होने वाली बैठक को आम सहमति बनाने के क्रम में स्थगित किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर ईरान और ओमान ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया। यमन की सेना ने लाल सागर के तट पर ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह हौसी विद्रोहियों ने महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। हमारी

0: संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है।
1: गणेश चतुर्थी का त्योहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मोहल्लों में भक्ति गीतों, आरती और गणपति बाप्पा मोरिया के जयघोष के बीच लोग गणपति बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई में कई गणेश मंडल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और बेस्ट ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
2: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मेक्सिको में कल उन्होंने जापान के नाकानिशी जूनिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से सैफ अली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन का योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
0: इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब भी जीत लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेचिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार न बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्य ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमरीका, यूके, कनाडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, निबिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। 8:15 हुए हैं। वक्त लोक संगीत का है। शुरुआत कर रहे हैं सीताराम कुशवाहा की आवाज में इस गणेश वंदना के साथ।

पान चढ़ावे फूल चढ़ावे नड़ुअन भोग लगावे पान चढ़ावे फूल चढ़ावे नड़ुअन भोग लगावे आरती गावे सीत झुकावे तुम खूब में सुनावे आरती गावे सीत झुकावे।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: और आइए अब सुनते हैं सेठ राघव दास को।

अनमोल रतन ये अब उपाय तू ऐसो कर त्याग सकल कामना जगत की हित चित से हरि नाम सुमर वासुदेव भज नारायण तू कृष्ण कृष्ण और कौ हर हर जीते ये भव सिंधु जगत से क्षण में जाए पारोतर जन्म मरण नहीं हो तेरा नहीं जग में

लख चौरासी फिरे भरमता हो, लख चौरासी फिरे भरमता, जमदूतों की

दुर्लभ ये जामा नर का है, मिला बड़े संयोगों से। देवी सिंह कहता है सदा, समझाए के ये सब लोगों से। भजन करो आनंद रहो, और छुटो दुख सुख भोगों से। हर्ष सदा मन में व्यापे, और

अभी श्रोता लोक संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है। 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बिंदिया।

आस्था का पर्व है, उल्लास का संग है, आज हर घर में खुशियों का रंग है। एक ओर हरतालिका तीज की श्रद्धा और विश्वास, दूजी ओर गणपति बप्पा का मंगलमय निवास। और बहनों, शब्दों की मिठास लिए आया है हिंदी का सम्मान। जी हाँ, अपनी भाषा अपनी पहचान, हम सबका अभिमान। तो हमारी सभी सखियों का हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम बिंदिया में। और सखियों, आज का दिन है श्रद्धा का, संस्कृति का और अपनी भाषा के सम्मान का। सखियों, तीजा हमें आस्था और संकल्प की सीख देती है और गणपति बप्पा बुद्धि और विवेक का संदेश देते हैं। और हिंदी दिवस हमें अपनी मातृभाषा से प्रेम करने की प्रेरणा देता है। तो सखियों, इन्हीं सुंदर भावनाओं को अपने मन में सजाए, श्रद्धा के दीप जलाए, संस्कृति और भाषा का मान बढ़ाए। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। हाँ हाँ, हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम बिंदिया। हमारी सभी बहनें सखियां स्वीकार कीजिए अपनी बिंदिया सखी सुनंदा तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। पुनः स्वागत है सभी सखियों का घर आंगन में। अरे अरे सखियों, घर आंगन हमारे कार्यक्रम का प्रथम क्रम। तो बहनों, आज जरा अपने घर आंगन की ओर नजर तो डालिए। हर घर द्वार पर वंदन बार बंधे हैं और द्वार द्वार पर रंगोली सजाकर सखियां आज अपने घर में पूजा की तैयारी कर रही हैं। कहीं फूलों की खुशबू है, कहीं पकवानों और प्रसाद की महक। सच में सखियों, आज तो हर घर में, हर आंगन में खुशियों की छांव बिखरी हुई है। गणपति बप्पा जी के स्थापना की तैयारियों के साथ कहीं कहीं घर में हरतालिका तीज की तैयारियां भी चल रही हैं। सखियां फुलेरा, गुजिया, पपड़िया, खुरमा, बतिया बनाने में व्यस्त हैं। सच में सखियों, आज का दिन आस्था का भी है और उल्लास का भी है और हमारी सुंदर परंपराओं से जुड़ने का भी है। कितना शुभ दिन है ना सखियों, कि आज घर आंगन में दोनों पावन अवसरों की रौनक है। हरतालिका तीज का यह पावन व्रत हमें माता पार्वती की अटूट श्रद्धा और दृढ़ संकल्प को याद दिलाता है। और सखियों, आज कुछ बहनों ने व्रत भी रखा होगा। सखियों, हम यहाँ ये जरूर चर्चा करेंगे कि देखिए, उपवास का अर्थ केवल अन्न जल का त्याग ही नहीं है, बल्कि अपने मन और विचारों को संयमित रखना भी है। और सखियों, आज जब हम पूजा में बैठे, हाँ हाँ, तीज की पूजा में, हरतालिका तीज में हम सभी सखियां जुड़ेंगे, मिलेंगे, एक साथ पूजा करेंगे। तो जब पूजा में बैठते हैं तो अपने मन में अच्छे विचारों का हमें दीप जलाना है और साथ ही गजानन जी जैसा कि हमें बुद्धि और विवेक की प्रेरणा देते हैं, इसलिए बहनों आज हम उनसे केवल अपने घर की खुशियों की ही प्रार्थना न करें, बल्कि यह भी प्रार्थना करें कि हमें सही और गलत को समझने की बुद्धि मिले और हमें अपने व्यवहार से दूसरों के जीवन में भी खुशियां बांटने की बुद्धि मिले, हम दूसरों के जीवन में भी खुशियां बांट सकें। और सखियों, आज की रात भी बड़ी खास होने वाली है। बहुत से घरों में, मंदिरों में महिलाएं फुलहरा सजाकर रात्रि जागरण के साथ साथ भजन कीर्तन भी करेंगी। पर बहनों, ये अवसर केवल रात्रि जागरण का नहीं, बल्कि आपसी प्रेम और मेल मिलाप को बढ़ाने का भी है। जब हम एक साथ बैठें तो बातों में मिठास हो, इधर उधर की बातों के बजाय एक दूसरे के सुख दुख को समझें, परेशान बहनों का हौसला भी बढ़ाएं। आखिर बहनों, जागरण केवल आंखों का जागरण नहीं, बल्कि अपने मन की अच्छाइयों को भी जगाना है। अपनी वाणी को मधुर, विचारों को निर्मल रखकर भजन कीर्तन का आनंद और बढ़ाना है। तो बहनों, आज की ये दोनों पावन पर्व कितने सुंदर सीख और संदेश देते हैं। सखियों, आज अपने घर आंगन को केवल वंदनवारों और फूलों से नहीं, बल्कि प्रेम, सद्भाव और अच्छे विचारों से सजाना है। आप सभी को हरतालिका तीज और गणेशोत्सव पर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और इसी के साथ आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गीत संगीत के द्वारा भक्तिमय वातावरण में आइए हम सभी भक्तिमय हो जाएं।

आइए बहनों इसी गीत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए करते हैं हमारी आपकी बातें। हाँ सखियो, हमारी आपकी बातें जब तक ना हो मन कुछ अनमना सा रहता है, लगता है कि आज तो हमने कुछ किया ही नहीं। जब तक अपनी सखियों से मिलकर अपनी बातें ना हो जाएं, तो हमने अभी बातें की अपनी परंपराओं की और गणेशोत्सव की और अपने तीज त्योहारों की। अब आइए सखियों आगे बढ़ते हैं और इस क्रम के द्वारा हम और आप मिलकर करेंगे महिलाओं से जुड़े विषयों, जानकारी, जागरूकता और विचारों पर चर्चा। हाँ सखियों, यहाँ हम करते हैं जीवन से जुड़ी बातचीत। इतना ही नहीं, देश दुनिया दिवस की चर्चा के बारे में भी एक दूसरे को जागरूक करते हैं। सखी सोचिए तो जरा, जब हम सुबह उठते हैं, घर में सभी से बातचीत करते हैं, बच्चों को प्यार से पुकारते हैं, खुशी बांटते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, तो सबसे पहले हमारे होठों पर वही भाषा आती है जिसमें हमारे भाव अपने आप शब्दों का रूप ले लेते हैं। बिल्कुल सही समझा सखियो आपने, हमारी हिंदी भाषा। और आज है बहनों हिंदी दिवस, तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए ना बहनों, अभी भी हमारे विचार साझा हो रहे हैं हमारी हिंदी भाषा में। इसी तरह कभी माँ जो लोरियां सुनाती है तो माँ की लोरी सुनाई देती है लोरियों में हिंदी, तो कभी दादी नानी की कहानियों में भी सुनाई देती है, कभी हमारी लोक कथाओं में भी हिंदी की मिठास होती है, तो कभी कविताओं और गीतों में भी इसकी सुंदरता झलकती है। सखी हिंदी केवल बोलने की भाषा नहीं है, ये तो हमारी भावनाओं को जोड़ने वाली एक प्यारी सी डोर भी है। और बहनों इसी हिंदी भाषा के सम्मान और महत्व को समझने के लिए हम हर वर्ष 14 सितंबर यानी आज के दिन हिंदी दिवस मनाते हैं। सखी यह दिन हमें अपनी भाषा के प्रति प्रेम, सम्मान और गर्व की भावना जगाने का अवसर भी देता है। जी हाँ, 14 सितंबर आज का दिन हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं और ये हमें गर्व की भावना जगाने का अवसर देता है। होता ही है सखियों गर्व हमारी हिंदी भाषा पर, और होना ही चाहिए। और अक्सर देखा जाता है सखियों लेकिन कि आजकल हम अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं। ठीक है, निश्चित रूप से दूसरी भाषाएं सीखना भी बहुत अच्छी बात है सखियो, समय के साथ चलना भी बहुत जरूरी है, लेकिन क्या अपनी मातृभाषा को हिंदी को भूल जाना सही है? नहीं बहनों, दूसरी भाषाओं के साथ अपनी भाषा से जुड़ाव रखना बहुत जरूरी है। बच्चा घर से ही तो भाषा, संस्कार और बोलने का ढंग सीखता है, इसलिए सखियो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को हिंदी बोलने और पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करें। आप बच्चों को कहानी सुनाइए राजा रानी की, वीरों की, महान लोगों की, और हमारे देश की प्रेरणादायक कहानियां भी हम अपने बच्चों को सुना सकते हैं। और बच्चों को सखियों ये भी समझाइए कि हिंदी बोलना कमजोरी या शर्म नहीं बल्कि गर्व की बात होती है। जब हम अपनी भाषा में आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं तो हम अपनी पहचान और अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं। और बहनों ये संकल्प भी लेना है हम सभी को कि अनेक भाषाएं सीखें, ज्ञान के नए द्वार खोलें, लेकिन अपनी हिंदी की मिठास को कभी अपने जीवन से दूर ना होने दें। तो सखियों हिंदी दिवस केवल एक दिन मनाने का अवसर नहीं है बल्कि अपनी भाषा को रोजमर्रा के जीवन में सम्मान देने का संकल्प है। ये नहीं कि आज हिंदी दिवस है, आज 14 सितंबर है हिंदी दिवस है तो हमने एकजुट होकर सबको जागरूक कर दिया, संकल्प ले लिए। नहीं नहीं सखियो, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है अपने हिंदी के सम्मान का। और सखियो हमारी आपकी बातें तो बातें हैं, अब कहां समाप्त होती है क्योंकि देखिए ना इसी चर्चा के साथ शायद सखियां अपने गहने जेवर और साड़ी की तैयारी भी करती जा रही हैं। आखिर शाम को सजना सवरना भी तो है, और ये क्या, शायद आप यही सोच रही हैं ना कि गहनों की चमक तो कम लग रही है। अरे बहनों

कपड़े से धीरे धीरे साफ करके सुखा लीजिए। बहनों एक जरूरी बात हम यहाँ कर लेते हैं आप सभी से, वो ये कि मोती कुंदन और मीनाकारी जिनमें रहती है गहनों में, तो और अन्य नाजुक जो नग जड़े गहने होते हैं, उनको बेकिंग सोडा, नींबू, सिरका या किसी तेज चीज से साफ ना करें, बल्कि इन्हें थोड़ा सा हल्का सा ब्रश से ऐसे ही पानी से भी आप साफ कर सकती हैं। तो बहनों आप अब निश्चिंत होकर तैयार भी हो जाइए, क्योंकि सजना सवरना हमारी परंपरा का सुंदर हिस्सा है। लेकिन बहनों यही देखिए ना, सही मायने में तो सुंदरता आत्मविश्वास, मुस्कान और अच्छे व्यवहार से होती है। इसलिए सखियो सजिए संवरिए, पर अपना व्यवहार सकारात्मक रखिए। किसी महिला की तुलना उसके रंग रूप या कपड़ों से बिल्कुल ना करें और प्रयास करें एक दूसरे के अनुभव से कुछ नया सीखने का। जैसे घर की बचत पर चर्चा कीजिए, हाँ हाँ हम रात्रि जागरण करेंगे, बहुत समय मिलेगा, तो यहाँ वहाँ की चर्चा बिल्कुल मत कीजिए। आप सकारात्मक विचार एक दूसरे को साझा कीजिए और कुछ ऐसी बातें कीजिए जो हमारे घर और हमारे परिवार के लिए फायदेमंद हो। जैसे घर की बचत पर चर्चा कीजिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके हुनर पर चर्चा कीजिए, बच्चों को अपनी परंपराओं में जरूर शामिल करें बहनों, ताकि वे पर्वों का सांस्कृतिक महत्व जान सकें और परिवार का मिलना जुलना क्यों जरूरी है ये भी जान सकें। साथ ही सखियों अपनी कला और हुनर की भी पहचान करना है, ये नहीं कि हम परिवार में ही लगे रहते हैं स्वयं को देख ही नहीं पाते। नहीं नहीं सखियो, आपके अंदर भी हुनर है, होगा ही भाई, जब हम बच्चों को सिखा सकते हैं तो हमारे अंदर भी तो हुनर होगा ही, तो अपने हुनर को जरूर पहचानिए सखियो। और चलिए हमारी आपकी बातों के बाद बात करते करते तैयारी भी करते जाइए, क्योंकि आज कुछ सखियों का हरतालिका तीज व्रत भी है। और चलिए साथ साथ गीत संगीत का आनंद भी लेते हैं और साज श्रृंगार की तैयारी तो कुछ दिन पहले से ही चल रही है हमारी बहनों की, क्योंकि देखिए ना, बिंदिया चूड़ी कंगना, पायल छनकेगी अंगना और नींद उड़ेगी सजना।

सखी लता जी के स्वर में अभी ये गीत सुन रहे थे हम फिल्म लम्हे से। और लीजिए अब शुरू होता है हमारा प्रेरणादायी क्रम, जी हाँ ज्योति पुंज, जहाँ हम उन महिलाओं के जीवन से परिचित होते हैं सखियों, जिन्होंने अपने साहस ज्ञान और कर्मों से समाज में एक नई रोशनी जगाई। आज की वो प्रेरणादायी ज्योति पुंज हैं बहनों, ऐसी महिला जिन्होंने भारत का ना होते हुए भी भारत को अपना कर्म क्षेत्र और अपनी आत्मा का घर बना लिया। सखियों एक विदुषी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारतीयों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और देश की आजादी के आंदोलन को नई दिशा दी। सखियों हम बात कर रहे हैं, जी हाँ शायद हमारी सखियां भी समझ ही गई हैं, डॉक्टर एनी बेसेंट की, जिनका जन्म तो इंग्लैंड में हुआ पर बचपन से बहुत जिज्ञासु और स्वतंत्र विचारों वाली थी। जब सखियो एनी बेसेंट भारत आईं, तो वे भारतीय संस्कृति और दर्शन से बहुत प्रभावित हुईं। उन्होंने भारत की महान परंपराओं को भी समझा और भारतीयों के बीच शिक्षा और आत्मसम्मान की भावना जगाने का एक प्रयास भी किया, क्योंकि सखियो उनका मानना यह था कि किसी भी देश की उन्नति का सबसे मजबूत आधार है शिक्षा। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी किए। और इतना ही नहीं बहनों, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता और स्वशासन के लिए भी आवाज उठाई और उनके जोशीले विचारों और कार्यों ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की चेतना भी जगाई। सखी डॉक्टर एनी बेसेंट के जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहिए और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। सखियों देखे, हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझना चाहिए। एक महिला अपने परिवार को ही नहीं बल्कि अपने ज्ञान और कर्मों से पूरे समाज को दिशा दे सकती है। जी हाँ सखियों, ये बात हम आप सभी से हमेशा ही करते हैं कि एक महिला सिर्फ परिवार के लिए नहीं बल्कि समाज को भी ज्ञान की दिशा दे सकती है और देश में भी पूरी भागीदारी निभा सकती है। तो अपने आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस में भी अगर कोई बहने आज आपको ऐसी दिखती हैं, आज तो आप सभी रात्रि जागरण करेंगी ना सखियो, तो बहुत सी बहने आपसे मिलेंगी जुलेंगी और हमें उन सभी को जागरूक भी करना है। देखिए, हमने आपसे पहले हिंदी दिवस की भी बात की थी, तो उसके और भी हमें जागरूक करना है और ज्ञान के प्रति भी उनको ये समझाना है कि ज्ञान बहुत जरूरी है जीवन में। तो हमें अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि अपने ज्ञान और कर्मों से पूरे समाज को दिशा देना है। सखियों, जब एक नारी शिक्षित होती है तो और जागरूक होती है तो केवल उसका जीवन ही नहीं बल्कि पूरा समाज प्रकाशित होता है। और बहनों, इसी प्रेरणादायी संदेश के साथ आज की ज्योति पुंज में डॉक्टर एनी बेसेंट को हमारा नमन। और चलिए, हमारी इस क्रम के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और चलते चलते हैं, जी हाँ चलते चलते एक क्रम है हमारा जिसमें हम अपनी कुछ रसोई की भी बातें कर लेते हैं, छोटे छोटे से सावधानियों की भी बातें कर लेते हैं। तो आज देखिए गणेशोत्सव है तो भोग भी बनाना है, प्रसाद भी बनाना है, तो हम मोदक विधि आपको बनाना बताते हैं। सखियों, सामग्री आप जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके लिए एक कप चावल का आटा, एक कप किसा हुआ नारियल और आधा कप गुड़ ले लीजिए और एक चम्मच घी और थोड़ी सी इलायची, पानी और चुटकी भर नमक ले लीजिए। सखियों, अब इसे बनाने की विधि आप नोट कर लीजिए। एक कढ़ाई में नारियल और गुड़ डालकर धीमी आंच पर पकाइए। अब जब गुड़ पिघलने लगे तो इसमें इलायची डालें और अब इस मिश्रण को सखियों ठंडा होने दें। अब पानी में थोड़ा सा घी और चुटकी भर नमक डालकर उबालें, एक पतीले में रख लें इसे और फिर उबालें। अब इसमें चावल का आटा डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। चावल के आटे में ये पानी डालकर इसे गूथ लेना है और मिश्रण को थोड़ा ठंडा करके नरम गूथ लेना है आटा। अब आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर कटोरी जैसा आकार दे दीजिए इन्हें और बीच में जो मिश्रण बनाया था नारियल और गुड़ का, तो इस भरावन को उसमें रखना है। अब किनारों को मोड़कर मोदक का आकार दे दीजिए। अब मोदक को भाप में लगभग
10-15 मिनट तक आप पका लीजिए। ऊपर से थोड़ी सी घी लगाकर गणपति जी को आप भोग लगा सकते हैं। देखिए सखियों, भोग भी बन गया और बातें भी हो गई आज बहुत सारी। अब हमारा तो आपसे यही कहना है कि रात्रि जागरण के साथ अपने सकारात्मक विचारों को आप साझा करेंगी सखियों। यहाँ वहाँ की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, अपने बच्चों की बातें कीजिए, अच्छी बातें कीजिए। हम एक सखी को अगर जागरूक कर सकें तो सोचिए कितनी सखियां जागरूक हो जाएंगी। तो हमें सखियों इस ओर ध्यान देना है। और इसी के साथ देखिए ना सखियों, बातें तो बातें हैं, खत्म ही नहीं होती हैं, लेकिन अब समय जरूर हमारा समाप्त हो रहा है, आपसे अनुमति लेने का समय हो रहा है। तो सखियों, तीज हमें प्रेम, समर्पण और विश्वास का संदेश देती है, तो गणपति बप्पा हमें बुद्धि, शुभता और नई शुरुआत की प्रेरणा देते हैं। बहनों, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, आज के शुभ पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बिंदिया सखी सुनंदा तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बिंदिया। सुबह के 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। पहला गीत फिल्म सुल्तान से, आवाज राहत फतेह अली खां की, इरशाद कामिल के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

और आइए अब सुनते हैं रोचक कोहली और नुसरत फतेह अली खां के संगीत निर्देशन में मनोज मुंतशिर और पूर्णाम अलावादी के ये बोल। गीत को गाया है जोबिन नौटियाल ने और ये गीत है फिल्म रेड 2 से।

अभी श्रोता चित्रपट संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है, कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए गौरैया और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योगदान देने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अर्चना शुक्ला के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रही है सोनू सूद।
2: नमस्कार, प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के नए प्रसंस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रसंस्करण बहुत ही विशेष है क्योंकि हम एक ऐसी शिक्षिका से आज बात करने वाले हैं जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया है बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने का, और इसके लिए उन्हें हाल ही में टीचर्स डे के दिन राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर शुक्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर शुक्ला। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, ये जो आपको पुरस्कार सरकार की तरफ से मिला है, और आप हमें बताएं कि कैसा आपको महसूस हुआ और कौन सा ऐसा प्रमुख कार्य रहा है जो आपको लगता है कि जिसको सम्मानित किया गया है।
3: यह मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे विद्यालय के लिए, मेरे विद्यार्थियों के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए। यदि हम कार्य की बात करें कि किस लिए अवार्ड दिया जा रहा है, तो जब हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है और शासन को लगता है कि उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए या उस कार्य से दूसरे टीचर भी इंस्पायर हो सकते हैं, तो आपको अवार्ड दिया जाता है। तो यदि मैं बात करूं कि ऐसा क्या विशेष किया है, तो मुझे लगता है कि मेरा जो विज्ञान पढ़ाने का जो ढंग है वो थोड़ा सा, उसकी विधि जो है वो दूसरे शिक्षकों से विभिन्न है। तो इसमें मैं अपने विद्यार्थियों को विज्ञान जो है सिर्फ किताब के माध्यम से पढ़कर या प्रश्नों के उत्तर देकर ना सिखाकर उनको उसे महसूस कराती हूँ। तो जो मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। इसमें मेरे विद्यार्थी अलग अलग तरह की परियोजनाएं करते हैं, और उन परियोजनाओं को करते समय हमारी सरकार जो कह रही है कि विद्यार्थी NEP 2020 में 21st सेंचुरी स्किल्स पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि विद्यार्थियों में 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, तो मुझे लगता है इसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही है।
2: सो आपने जैसे कहा कि आप सिर्फ थ्योरी नहीं, जो प्रैक्टिकल एक एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर रही हैं, और जो आपने हमें बताया कि बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का जो कार्य है उसका आपको ख्याल कैसे आया, क्यों आपको लगा कि ये बहुत जरूरी है?
3: विज्ञान पढ़ाते हुए मुझे लगभग आज 16-17 साल हो गए हैं, और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि विद्यार्थियों को विज्ञान सिर्फ कक्षा में नहीं पढ़ाया जा सकता, विज्ञान तो हर चीज में है, विज्ञान तो प्रकृति के हर जगह पर है। तो कोरोना के समय मुझे ये रियलाइज हुआ, आपने सुना होगा कि कोरोना में लोग कहते थे कि काढ़ा पियो, तो काढ़ा पीने की जब बात आती है तो काढ़े में जो जो चीजें मिलाई जाती है, तो मेरे विद्यार्थी उन चीजों को पहचानते ही नहीं है। कितनी अजीब बात है कि आप अर्जुना रेस्ट बाजार से खरीद कर पी रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि आपके आंगन में लगा हुआ पेड़ ही अर्जुन है, तो अर्जुन की छाल को आप उबाल कर पी सकते हैं। तो यहाँ से मुझे रियलाइज हुआ कि जिसको भी आप जानोगे नहीं उसको आप मानोगे नहीं। तो यदि आप कंजर्वेशन संरक्षण की बात करते हैं तो सबसे पहला कदम जो है वो है आइडेंटिफिकेशन। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप चीजों को अपने आस पास के पक्षियों को, पशु को, इंसेक्ट्स को, ट्रीज को जब तक आप पहचानेंगे नहीं, तो आप कंजर्व कैसे करेंगे, तो उनका संरक्षण कैसे होगा? हमारे आस पास इतनी सारी जैव विविधता थी, लगातार कई जीव जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, और जब कोई बड़ी विपदा आती है तब हमें लगता है कि हमने ऐसी क्या गलती की। तो यहाँ पर मुझे लगा कि विद्यार्थियों को प्रकृति से जोड़ना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन।
2: बहुत ही आपने खूबसूरती से बताया कि आइडेंटिफिकेशन यानी जागरूकता सबसे पहला स्टेप है। जो आपने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात की उसमें प्रमुख सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट आप जो आपको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका बहुत प्रभाव हुआ बच्चों पर और उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई, उसके बारे में बताएं?
3: मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इस बात को कहा है कि विद्यार्थियों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करिए। तो विद्यार्थियों में साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे डेवलप होगा? सिर्फ बायोलॉजी को क्लास में पढ़ लेने से डेवलप नहीं होगा। तो इसी तरह से एक बार मैं अपने 11th बायो के बच्चों को कंजर्वेशन पढ़ा रही थी, तो मैंने विद्यार्थियों से पूछा क्या आपको लगता है कि हमें किसी जीव को कंजर्व करने की जरूरत है? तो मेरे एक विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा कि मैम पहले एक छोटी चिड़िया आया करती थी गौरैया, तो जब मैं नानी के घर जाता था बहुत सारी गौरैया आती थी, हम बहुत चावल खिलाया करते थे, आजकल वो दिखती नहीं है। तो मैंने कहा ओके क्या कारण है कि वो खत्म हो गई? तो किसी एक बच्चे ने रैंडम कहा कि मैम रेडिएशन। तो आई सेड आपने कहाँ पढ़ा कि रेडिएशन कारण है? तो बोले नहीं मैम, सब जगह आ रहा है सोशल मीडिया पे कि रेडिएशन के कारण बर्ड्स खत्म हो रही हैं। तो मैंने कहा ऐसे नहीं, यू फाइंड आउट द रिसर्च पेपर्स और फिर कारण पढ़िए, देयर आर मेनी रिसर्च पेपर ऑन स्पैरोज। तो हमने एक साल सिर्फ यही काम किया कि हमने रिसर्च पेपर्स निकाले और उसका मुख्य कारण खत्म होने का जानने की कोशिश की। तो बच्चों ने कंक्लूजन में लिखा कि गौरैया की नेस्टिंग साइट खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है वो गौरैया को कहीं भी अंडे रखने की जगह नहीं दे रहा है। तो जो आज हम मॉडर्न बिल्डिंग बना रहे हैं, जो आज हम अपने घर बना रहे हैं, उन घरों में कहीं भी गौरैया के अंडे रखने की जगह ही नहीं है। जबकि पहले जब हमारे खपड़े के घर होते थे, अर्थन टाइल्स होती थी, तो वहां कई जगह जगह होती थी जहां पर वो अंडे अपने रख पाती थी। गौरैया एक ऐसा जीव है, जब हमने खेती शुरू की वो हमारे साथ चला आया और जंगलों से हमारे साथ आके हमारे घरों में रहने लगा। धीरे धीरे उसकी जो नेस्टिंग की कला थी वो खत्म हो गई। अब वो प्रॉपर नेस्ट नहीं बनाता है, वो कहीं पर भी जहां जगह होती है वहां पर अंडे रख देता है। तो थोड़ी सी घास रखता है और अंडे रख देता है। तो फाइनली ये निकला कि भाई हमें गौरैया के लिए नेस्टिंग साइट बनानी पड़ेगी। तो फिर ये हुआ कैसी नेस्टिंग साइट बनाई जाए। 2021 में और 20 में जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किए थे उस समय कहीं पर भी प्रॉपर स्पैरोज के लिए नेस्टिंग बॉक्स नहीं थे। तो मैंने बच्चों से कहा कि आपको जैसा लग रहा है वैसे बनाइए। तो बच्चों ने इतनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाई, मतलब भूसे से घर बनाए, मिट्टी से बनाए कि ठंडा रहेगा, फिर उसमें जो है शू बॉक्स से घर बनाए। तो मैंने उनसे कहा कि जो भी आपने घर बनाया इसको अपने घरों में लगा दीजिए और देखिए गौरैया इसको अडॉप्ट करती है कि नहीं, क्योंकि रहना तो उसी को है। तो हमने देखा कि जो शू बॉक्स थे उसमें गौरैया आके रहने लगी। तो वो पहली बार जब किसी बच्चे ने मुझे बोला कि मैम वो वेंटिलेटर के ऊपर जो मैंने शू बॉक्स रखा था उसमें गौरैया ने बच्चे दिए, अंडे हैं उसके अंदर, तो वो जो खुशी थी, मतलब आई हैव गॉट गूज बम्स। तो वो मतलब कि यस दिस इज वर्किंग एक्चुअली। फिर ये हुआ कि ठीक है तो इस तरह के बॉक्सेस होने चाहिए और फिर हमने उन बॉक्सेस को बनाना शुरू किया। तो पहली बार जब लकड़ी के बॉक्सेस हमने बनाए तो हमने रियलाइज किया कि उसके अंदर दूसरी बर्ड एंटर कर रही थी। तो हमने देखा कि मैगपाई रॉबिन एंटर कर रही है, ब्राह्मणी स्टर्लिंग एंटर कर ली है, तो कुछ गड़बड़ है। तो देन वी रियलाइज कि होल साइज बहुत बड़ा है, तो हम इसका होल साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो हमने होल साइज छोटा किया। देन वी रियलाइज कि उसकी छत के ऊपर कबूतर बैठ जाता है और कबूतर जो गौरैया है वो शाय बर्ड है, तो कबूतर आके अंडे दे देगा तो वो अंदर आएगी नहीं। तो फिर हमने उसकी जो रूफ है वो स्लैंटिंग कर दी ताकि उसके ऊपर जो है वो कबूतर ना बैठ पाए। देन वी रियलाइज कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, फिर हमने उसके दोनों तरफ होल कर दिए। देन वी रियलाइज कि अंडे कई बार फूट जाते हैं, उसमें चींटियां लग जाती है, तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि नीचे भी होल होना चाहिए ताकि वो पानी नीचे से निकल जाए। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली 4 years कंटिन्यूस जब मेरे बच्चों ने वर्क किया तो हमने इंडिया के फर्स्ट साइंटिफिकली प्रूवन स्पैरो बॉक्सेस बनाए। आप कोई भी नेस्ट बॉक्स लेने जाएंगे उसमें हमेशा स्टिक होती है, पर हमने एक्सपेरिमेंट करते समय ऑब्जर्व किया यदि घोंसलों में आगे स्टिक लगी होती है तो उसमें दूसरी बर्ड आकर बैठती है। बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं माँ आई है और वो बाहर फेस निकालते हैं और वो खा जाती है, तो इसलिए हमने इससे स्टिक हटा दी। तो इस तरह से कंटिन्यूसली दिस इज व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो मेरे बच्चों ने 4 साल में प्रॉपर नेस्ट डेवलप किए। और अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो अचीवमेंट ये है मैम कि आज इसको हम डिफरेंट स्टेट्स में डिलीवर कर रहे हैं, इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। हमने इसको मुंबई भेजा, जयपुर भेजा, पुणे भेजा, कई जगह से डिमांड आती है, नोएडा भी भेजा, और नोएडा में 1.5 साल के बाद अभी हमें पता चला कि गौरैया आने लगी। तो ये जो रिजल्ट्स हैं, फिर इस प्रोजेक्ट को अभी हमने जून में 42 कंट्रीज से कंजर्वेशनिस्ट आए थे, एशिया कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस जो काठमांडू में हुई है नेपाल में, वहां पर हमने इसको प्रेजेंट किया। 42 कंट्रीज से जो लोग आए थे, जो प्रॉपर साइंटिस्ट है, कंजर्वेशन का काम किया हुआ है, उन्होंने जब इस वर्क को देखा तो दे सेड कि इस तरह का वर्क अगर हम करते हैं तो इसमें बहुत सारा फंड चाहिए होता है एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। हाउ इज इट पॉसिबल दैट द स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 11th क्लास आर डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क? सो वी गॉट लॉट्स ऑफ एप्रिशिएशन फ्रॉम देयर।
0: सो बहुत ही मतलब कहे कि आपने जो अचीव किया वो एक कम लागत पे भी किया, और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट आप बता रही हैं बच्चों की, क्या बच्चों के द्वारा और कम्युनिटी लेवल पर भी इसका इंटरेस्ट जागा लोगों का?
3: जब हमने परफेक्ट मॉडल्स डेवलप कर लिए तो हमें ये रियलाइज हुआ वी नीड फंड फॉर इट सो दैट वी कैन आल्सो इलैबोरेट दिस वर्क। तो हमने फिर मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी को अप्रोच किया, और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों ने प्रेजेंट किया उनके सामने, और हमने उनसे कहा कि बिकॉज गौरैया जो है वो भी वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आती है तो इसलिए वी नीड फंड्स फॉर इट, एंड लकली वी गॉट 1 lakh rupees फंड फ्रॉम देम। एंड जब हमने जो बॉक्सेस बनाए उस 1 lakh rupees से, वो हमने हमारे अवधपुरी के पूरे टेम्पल्स, गुरुद्वारे और जितनी रिलीजियस प्लेसेस थी वहां पर लगाए। तो वहां पर लगाने का एक बेनिफिट ये था कि जो बर्ड है उसको आसानी से दाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, और अगर नेस्टिंग साइट भी मिल जाती है तो उनका नंबर आसानी से इंक्रीज हो सकता है। और उसके बाद मेरे बच्चे इसको कंटिन्यूसली अब ऑब्जर्व करते हैं, तो दे यूज टू से कि मैम अभी उसमें 3rd time नेस्टिंग हो रही है और इसमें इतने अंडे हैं, इतने बच्चे उड़ गए। तो दिस होल ऑब्जर्वेशन दे आर राइटिंग एंड वी हैव पब्लिश्ड आवर वर्क नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली।
0: सो एवरेज एडॉप्शन रेट क्या है, और कोई जो हमारे श्रोता अगर वो भी प्रेरित होकर पहल करना चाहे कैसे वो बना सकते हैं और वो भी दे सकते हैं ये घर एक आशियाना गौरैया को?
3: तो हमारा जो मिशन है वो है कि हर घर गौरैया चिड़ियाघर होना चाहिए, क्योंकि आप जहाँ आज अपने घर बना रहे हैं वो जीवों के ही थे। तो बेसिकली आज हम कहते हैं ना कि लेपर्ड हमारे घरों में घुस गया, टाइगर हमारे घरों में घुस गया, ये उल्लू हमारे घरों में आ रहे, हमारे घरों में नहीं आ रहे, हम उनके घरों में चले गए हैं। तो इसलिए उनका भी आशियाना बना रहे ये जरूरी है। तो जब हम इसकी डिजाइन की बात करते हैं, जो होल साइज है वो हमने 1.5 से 2 इंच रखा है, इससे बड़ा होल साइज करने पर बड़ी बर्ड्स इसके अंदर जाने लगती है। दूसरा, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हमने होल बनाए हैं ताकि हवा जो है प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। इसमें नीचे होल्स हैं ताकि कभी अगर पानी इकट्ठा हो तो वो पानी निकल सके। इसका जो रूफ है वो हमने स्लैंटिंग बनाया है ताकि कोई पिजन्स वगैरह इसके ऊपर ना बैठ पाए। और कोशिश ये करनी है कि इसको विंडो या वेंटिलेटर के पास लगाएं या जहां पर आपका एसी लगा हुआ है। दूसरी, हमें ये कोशिश करनी है कि जहां पर भी आप इसको लगाएं उसके ऊपर रूफ होनी चाहिए ताकि पानी इसके ऊपर ना गिरे। और दूसरा, आप जो गौरैया है वो हमेशा वेंटिलेटर से एंटर करने की कोशिश करती है। आजकल हमने अपने रोशनदान में भी जाली लगा दी है, सब चीजों में जाली लगी है, तो गौरैया अंदर आ ही नहीं सकती है। तो इसके लिए सबसे अच्छी जगह वो है। दूसरा, इस पर हम किसी भी तरह का पेंट यूज नहीं करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से या रोड पर जो बॉक्सेस मिलते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं। हम भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को देते हैं, इसका जो एडॉप्शन रेट है वो 86% है मैम। तो हमने कई बार देखा कि जब हमने इसको दिया तो लोगों ने इसका होल साइज बड़ा कर दिया, ये सोच के कि इतने छोटे में कैसे एंटर करेगी। और दूसरा, कई बार लोग इसको येलो ऑरेंज कलर का पेंट कर देते हैं, इस पे ग्लासेस लगा देते हैं, क्योंकि ह्यूमंस लाइक एवरीथिंग टू बी ब्यूटीफुल, उनको हर चीज ऐसा सुंदर चाहिए। जबकि कोई भी बर्ड्स मैम कभी ये नहीं चाहती कि उनका
0: ज्यादा नेचुरल हैबिटेट से
3: कि उनका नेस्टिंग साइट कहाँ है ये किसी को भी पता चले। तो अक्सर इसको छुपा कर लगाना चाहिए और हम इसका कलर ऐसा रखते हैं मुल्तानी मिट्टी या गेरू से ताकि ये कैमोफ्लेज कर जाए वॉल के साथ आसानी से। तो ये दिखना नहीं चाहिए, कोई बर्ड ये नहीं चाहती कि उसका नेस्टिंग साइट किसी को भी पता हो। दूसरा, इसमें दाना पानी नहीं रखना है। इसमें कहीं पर भी अगर आप पानी के लिए बनाते हैं, बैठने के लिए बनाते हैं या दाने के लिए बनाते हैं तो इसमें दूसरी जो बर्ड्स हैं वो आकर बैठते हैं और उसके वो प्रेडेटर्स हो सकते हैं, उसको चिक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
0: जी, तो बहुत ही आपका सराहनीय ये प्रोजेक्ट है एंड आई एम श्योर कि बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि गौरैया तो हमारे जीवन का बहुत एक इम्पोर्टेंट, उसको कहां ही कॉमन हाउस स्पैरो जाता है।
3: आई वुड लाइक टू ऐड जस्ट वन थिंग इन दिस क्वेश्चन, ये आता है कि क्यों हमें लगा कि गौरैया को बचाना जरूरी है, गौरैया हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये हमें सोचना बहुत जरूरी है। तो गौरैया जो है मैम ये ह्यूमंस के साथ रहती है, बहुत कम ऐसी बर्ड्स हैं जो ह्यूमन कम्युनिटी के साथ रहती है, गौरैया उनमें से एक है। और ये क्या करती है कि जब इसके बच्चे अंडा फोड़कर बाहर आते हैं तो उनको हाई प्रोटीन की जरूरत पड़ती है और उस हाई प्रोटीन के लिए ये हमारे बगीचे में जितनी भी लार्वाज हैं जो हमारी नालियों में है, जो हमारे पौधों में है, जो हमारे गमलों में है, उससे लार्वा को चुन चुन के अपने बच्चों को खिलाती है। और ये वही लार्वाज हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी फूड चेन में एंटर करते हैं। तो यानी यदि आप एक छोटा सा गौरैया घर नहीं लगाते हैं तो आप हर महीने किसी न किसी रोग या बीमारी की वजह से डॉक्टर को विजिट करते हैं।
0: वेरी इंटरेस्टिंग।
3: क्योंकि जो कम्युनिकेशन जो आपके डिजीज हैं जो आसानी से फैल सकते हैं, उन डिजीजेस को रोकने का एक ही तरीका है कि जो आपके पास लार्वाज हैं आसपास, जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको आप खत्म करें। तो खत्म करने का ये नेचुरल तरीका है, ये बायोपेस्टिसाइड्स हैं, बायो इंसेक्टिसाइड्स हैं, और दूसरा तरीका है आप केमिकल्स डालेंगे।
0: तो आप जो कह रही हैं कि इतने सारे आपने छात्रों को इसमें इन्वॉल्व किया है जो खुद उन्होंने अपने आप रिसर्च की और बहुत एक कहें कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रही उनकी, तो उनके जो आसपास के जो उनका घर वाले हैं या उनके फ्रेंड्स हैं उनमें भी वो जागरूकता फिर एक तरह से एक डोमिनो इफेक्ट होता है।
3: यस यस ऑफ कोर्स मैम, जब मैं किसी बच्चे को कुछ सिखाती हूँ तो वो बच्चे से अभिभावक और अभिभावक से कम्युनिटी में जाती है। तो जब ये स्पैरो बॉक्सेस मेरे बच्चे घर में बनाते हैं या लगाते हैं तो सबकी नजर जाती है, और जब उसमें चिड़िया आती है या अंडे देती है तो सिर्फ वो नहीं देख रहे, इवन उनके दादा दादी बताते हैं कि हमारे यहाँ पहले बहुत आया करती थी। तो इस तरह से एक पूरा घर, एक पूरा समुदाय, एक पूरी कम्युनिटी धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो हमने एक दिया, बाद में वो 10 बनाते हैं। तो अब उनको ये पता है कि मेरे घर में अगर सोफा का कुछ लकड़ी बच गई है या डोर बनाते समय कुछ बच गया है तो उसको काट कर हम स्पैरो हाउस बना सकते हैं।
0: ये लकड़ी से ही बनता है या गत्ते से भी या किसी और मटेरियल से?
3: यस, अगर आपको सिर्फ एक सीजन के लिए लगाना है तो आप गत्ते से भी बनाकर लगा सकते हैं। स्पैरो आसानी से आ जाती है अगर आप एक नॉर्मल शू बॉक्स लेते हैं और उसमें होल कर देते हैं। जो सबसे बड़ा डर है मैम वो ये है कि उसमें पानी एब्जॉर्ब करेगा और वो फूल जाएगा तो उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार चींटियां आ जाती हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं, कई बार वो वीक हो जाता है और टूट जाता है, गिर जाता है, कई बार हवा से गिर जाता है। तो इसलिए हम एक सेफ नेस्टिंग जो है उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं।
0: और एक और जो आपकी पहल जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, जो पेड़ों को लेकर आपने जो जागरूकता बच्चों में जो QR कोड सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस किया है, थोड़ा सा ये बताएं।
3: मैम सेम आई वुड लाइक टू मेंशन, कोरोना के बाद जब बच्चे मेरे पास आए, कोरोना में हम लोगों ने ही सभी बच्चों को इंसिस्ट किया कि स्मार्टफोन्स खरीदिए, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए। तो ऑनलाइन क्लासेस लगभग 1.5 साल चली और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे बच्चों को सोशल मीडिया की आदत आदत पड़ गई। तो जब पेरेंट्स मेरे पास आए तो उन्होंने बोला कि मैम हमारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल ही हाथ से नहीं छोड़ते हैं, तो मुझे ये लगा कि वो टेक्नोलॉजी को जानते हैं। अब उस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जा सकता है दैट आई हैव टू सी, बिकॉज उनके हाथ से मोबाइल छोड़ाना इज नॉट द सोल्यूशन, बट मोबाइल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, ये एक समस्या थी मेरे साथ। मैं एज अ क्लास टीचर आई वॉज फेसिंग दिस। एंड दूसरी तरफ मेरे बच्चों को मैं बायोडाइवर्सिटी पढ़ा रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे ही स्कूल में जो लगे हुए पेड़ हैं बच्चे उनके भी नाम नहीं बता पा रहे हैं, मतलब वो सिर्फ कुछ पेड़ों के नाम जानते हैं, वो पीपल और बरगद में अंतर तक नहीं जानते हैं। तो मुझे लगा कि अगर वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने एक दिन नाइन्थ क्लास में बच्चों से पूछा कि क्या हम पेड़ों को कैसे पहचान सकते हैं, तो एक बच्चे ने कहा कि मैम जैसे हम अपना नाम बताते हैं यदि वो भी अपना नाम बता दें खुद ही तो हम पहचानने लगेंगे। तो मैंने कहा इसके लिए क्या किया जाए, तो देयर वाज अ स्टूडेंट शाहद मिश्रा इन द नाइन्थ क्लास, सो ही सेड कि मैम QR लगा देते। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड कि QR लगा देते हैं, कैसे QR लगाओगे। तो बोले मैम आप देखिए ना आपके लैपटॉप में QR लगा है, ये पेन में लगा हुआ है, हर चीज में बुक्स में QR लगे हुए हैं, पेड़ों पे QR क्यों नहीं लगा सकते, 2021 की बात है ये। तो मैंने कहा लगाते हैं फिर, तो चलिए आप लोग QR बनाइए फिर बना लोगे। तो दे सेड यस। बच्चे कभी ना नहीं कहते मैम, कुछ भी कहिए तो दे यूज्ड टू दे लाइक हां कर लेंगे ना मैम, दे नेवर से कि नहीं होगा, इवन आई वाज ब्लैंक कि कैसे होगा। तो अगले दिन 5 QR कोड बन के पेड़ों पे लग गए मैम, और हमने उन सबको स्कैन किया, देयर वर ग्लिचेस, उनमें से एक भी चल नहीं रहा था लेकिन QR बन गए थे। तो उससे एक होप डेवलप हुआ कि हम बना सकते हैं। फिर बहुत सर्च किया तो इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिल रहा था जिन्होंने ये काम पहले किया हो, इंडिया के बाहर एक दो जगह मिला पर वो जिस तरीके से लगा रहे थे वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर हमने कहा कि ठीक है QR बनाते हैं। तो QR बनाने के लिए सबसे पहले आपको बॉटनिकल सर्वे करना पड़ेगा कि आपके स्कूल में कौन से पेड़ हैं, कितने प्रकार के हैं और कितने नंबर में हैं। तो ये एक बॉटनिकल सर्वे शुरू हुआ, तो हमने फाइंड आउट किया कि हमारे स्कूल में टोटल इतने पेड़ हैं और इतने प्रकार के हैं। तो शुरू किया कि इस पेड़ का QR बनाना है। अब ये काम जो है वो काफी डेप्थ में जा रहा था और इतना टाइम आप स्कूल में दे नहीं सकते क्योंकि स्कूल में बच्चों के फिक्स पीरियड होते हैं, क्योंकि जूम मीटिंग हम पहले सिखा चुके थे बच्चों को, तो हमने उसको यूटिलाइज किया और हम डेली 8 से 9:30 नाइट में बच्चों के साथ मिलने लगे। ऑलमोस्ट 50-55 स्टूडेंट्स नाइन्थ के सभी सेक्शंस के मिले,
0: बहुत उत्साह।
3: सो वो बच्चे कनेक्ट होते थे और हम डिस्कस करते थे कि क्या क्या लिखना चाहिए, QR में क्या क्या होना चाहिए। तो फाइनली 1.5 साल की मेहनत के बाद हमने प्रॉपर QR बनाया जिसमें इंग्लिश नेम, उसका हिंदी नेम, साइंटिफिक नेम होता था, और हम ये चाहते थे कि आप जिस जगह रहते हैं उस भाषा का भी विवरण उसमें होना चाहिए क्योंकि कम्युनिटी अगर स्कैन करे तो उसको पता हो। तो हम सिर्फ इंग्लिश नहीं चाहते थे, हम उसको हिंदी में भी चाहते थे, बाद में कई लैंग्वेजेस में बने ये। तो हमने उसको बनाया और उसमें इन्फॉर्मेशन दी कि ये पेड़ आपको कितना ऑक्सीजन देता है, इसका मेडिकल यूज क्या है, और इसके अलावा ये सब तो हमें नेट से मिल रहा था लेकिन उसके बाद ये आया कि हमारी कम्युनिटी इसका कैसे यूज करते हैं। तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो गांव से आते हैं, तो वो कई तरह से जैसे अमलतास की फली है वो अपने गाय भैंस को खिलाते हैं डाइजेशन के लिए, और आज इसको हम पढ़ रहे हैं रिसर्च में कि अमलतास की फली इस तरह से यूज हो सकती है। कदम का जो फूल होता है हम कभी नहीं जानते थे उसके फल को खाया जाता है, पर मेरे बच्चे ने बताया कि मैम इसकी तो हम चटनी बना के खाते हैं, तो हमने उसमें विधि लिखी अगर आपको इसको खाना है तो चटनी कैसे बनाई जाए। तो जब आप उसको स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फ्रूट की चटनी कैसे बनाई जाती है। फिर हमने साइंटिफिकली पढ़ा तो पता चला कि अगर अक्टूबर नवंबर में जब ये फल आता है यदि आप इसे खा लेते हैं तो दिसंबर जनवरी में आपको सर्दी खांसी बुखार कुछ नहीं होगा।
0: कोई भी जो विजिटर है जो भी वहां से गुजारा स्कैन करिए और आपको
3: यस यू डोंट नीड एनी ऐप फॉर इट, सिंपली विद द QR स्कैनिंग आप उसको स्कैन कर सकते हैं। फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे वहां कमिश्नर मैम थी तन्वी हुड्डा, शी केम टू नो अबाउट इट, तो शी कॉल्ड अस कि कैन वी डू इट इन ऑल द पार्क्स ऑफ आवर एरिया। तो शी गेव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 72 पार्क्स, तो हमने 72 पार्क्स में QR कोडिंग की मैम, और हर बच्चा जो है जो उस पार्क के पास रहता था वो वहां जाता था सुबह वॉक करने अपने पेरेंट्स के साथ, वहां के जो लोग थे उनसे पूछता था कि इस पेड़ का नाम क्या है, और वो लिखता था कि ये पेड़ इतने हैं, ये पेड़ इतने हैं, और फिर हमने QR कोड्स लगाए। मोर देन 4,000-5,000 ट्रीज अभी तक हम QR कोडिंग कर चुके हैं। फिर हमने पन्ना टाइगर रिजर्व में लगाए, फिर हमने मुकुंदपुर में लगाए, ऐसे कई टाइगर रिजर्व्स में हमने QR कोडिंग की, एंड फिर पुणे में किया हमने सिखाया इसको, बैंगलोर में सिखाया। तो वो एक छोटे से जिले से जो काम शुरू हुआ था वो पूरे इंडिया में फैल गया और फाइनली मिशन लाइफ के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लिया और लास्ट मार्च में सभी इंडिया के स्कूल्स में इस प्रोजेक्ट को मस्ट कर दिया गया। अब सभी स्टेट ICSE और CBSE बोर्ड के स्कूल्स में ये हो रहा है।
0: बहुत ही मतलब एक इनोवेटिव पहल है जिससे एक इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चों का। और जो दूरगामी फायदे क्या है, क्या आपको पता लगता है कि कितनी बायोडाइवर्सिटी है नहीं है, किस तरह के सजेशंस या पॉजिटिव आउटकम्स क्या आती हैं?
3: अगर हम पॉजिटिव आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें मैं देखती हूँ। एक कम्युनिटी की तरफ से अगर हम देखें तो जो मेरे बच्चों ने ये डेटा निकाला, मैम बॉटनिकल सर्वे किया, तो जो हमारे पास रिजल्ट आया कि किस पार्क में कितने पेड़ लगे हैं और उसको जब हमने एनालाइज किया, दिस इज व्हाट इज रिसर्च, तो हमने देखा कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज है हमारे एरिया में वो रॉयल पाम था। दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि मेरा एरिया ज़ेरोफाइटिक एरिया है नहीं, तो ये रॉयल पाम का नंबर सबसे ज्यादा कैसे हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि प्लांटेशन में आप रॉयल पाम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब आप महुआ काटते हैं, शीशम काटते हैं, आम, बरगद, नीम, महानीम, कहां गए सब? ये सब कहां गए? जंगल जलेबी कहां गया? आपने इन सबको काट के और प्लांटेशन में क्या लगा दिया? रॉयल पाम। क्यों लगा दिया रॉयल पाम? क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कम है। तो इस तरह से क्या हुआ कि मेरे नेटिव पेड़ सारे गायब हो गए, और अगर नेटिव पेड़ गायब हो जाएंगे तो पूरी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। उस पेड़ से जो मेरे इंसेक्ट्स रिलेटेड है, जो मेरे बर्ड्स रिलेटेड है, जो मेरी बटरफ्लाईज रिलेटेड है, एक पेड़ के खत्म होते ही वो सब खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे उस एरिया की पूरी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जा रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है, हम ये सोचे कि यदि हम कोई पेड़ काट रहे हैं, यदि हम शीशम काट रहे हैं, महुआ काट रहे हैं, बरगद काट रहे हैं, हम लगा क्या रहे हैं? क्या हम वहां उस एरिया के नेटिव पेड़ लगा रहे हैं? सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, यदि आप QR कोड या PBL का इंपैक्ट की बात करें कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं, तो आज से 4-5 साल पहले एक स्टूडेंट था युवराज, वो मेरे साथ QR कोडिंग करता था। उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसके फादर नहीं थे, तो कई बार ऐसा होता था कि युवराज से जब बात करो तो वो रोने लगता था अचानक से। बाहर से जब लोगों से इंटरेक्ट करके आता था तो कहता था मैम वो तो ऐसा कह रहे हैं, और बहुत जल्दी हार जाता था। पर वो प्रोजेक्ट करते समय मैंने उसमें देखा कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, और फिर जब वो कमिश्नर सर से मिल रहा है, कलेक्टर सर से मिल रहा है, जब उसकी फोटो न्यूज़पेपर में आ रही है, तो इससे कॉन्फिडेंस उसमें धीरे धीरे डेवलप हुआ। और फिर उस बच्चे को क्योंकि QR कोड बनाना था तो उसको टैब मिल रहा था, उसको मेरा लैपटॉप मिल रहा था, तो उसको धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। और अभी जुलाई में मुझे पता चला कि उस बच्चे ने IIT रुड़की ज्वाइन किया है।
0: कितना मतलब एक एक्सपैंड होता है आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है जो छात्रों का। और कोई ऐसा एग्जाम्पल आप बता सके कि जो उन्होंने ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के दौरान सीखा उसको आगे जाके उनको उसकी हेल्प हुई हो?
3: एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है मैम, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट ही किया था तो आई यूज टू गिव दिस प्रोजेक्ट टू माय स्टूडेंट्स। तो 9th क्लास में देयर वाज स्टूडेंट, बच्चों को मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था कि आपको अपनी सिटी में जो बर्ड्स मिलती हैं उन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, और उन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करके आपको बताना है कि उनका नाम क्या है, उनकी फोटोग्राफ्स आपको लेनी है। तो उस बच्चे ने वो प्रोजेक्ट किया, एंड देन कुछ साल पहले दिल्ली से मुझे एक कॉल आया, और वो बच्चा मुझे कॉल करके बोलता है कि मैम मैं विनायक बोल रहा हूँ, मैम आपने मुझे 9th में साइंस पढ़ाई थी, तो ही सेड कि आज मैं UPSC का इंटरव्यू देके आया हूँ। तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, एंड देन ही वाज लाइक मैम आपको पता है आपने 9th में मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था जो बर्ड्स के ऊपर, तो आज मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपने कोई भी ऐसा काम जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है प्रैक्टिकली किया है? तो बोलता मैम वो 9th में जो मैंने बर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन किया था, मैं सुबह कैमरा लेके जाता था, बर्ड्स की फोटो खींचता था, गूगल से मैच करता था, और कितना डिफिकल्ट होता था उस काम को करना, वो सारा मैंने आज डिस्क्राइब किया। एंड देन आफ्टर फ्यू डेज आई सॉ इन द न्यूज़पेपर दैट इज UPSC ranking was 47.
0: Wow.
3: So that is an achievement. Wow.
0: Yes, yes. आपको लगता है कि ये जो experience इनको मिलता है project based learning में, जैसे आप कह रही हैं कि वो research जो stage है उसमें भी involved होते हैं, और जिस तरह से धीरे धीरे dynamic changes होते हैं project में, उसको एक success तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से involved रहते हैं बच्चे, तो आपको लगता है कि पूरा उनका जो mindset है for life, ता उम्र के लिए वो एक जो conservation है, हमारी प्रकृति के प्रति प्रेम है, उसके संरक्षण के प्रति जो जागरूकता है, वो आपको लगता है कि उन्हें हमेशा वो रहेगी, उनका पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी बन जाती है?
3: जो 40 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट मेरी क्लास में आज बैठते हैं, मेरा ये मानना है कि कल समाज वही बनाएंगे। आज जो समाज हम देख रहे हैं, यदि हम उसमें कुछ बुराइयां देख रहे हैं या कमियां देख रहे हैं, ये समाज कभी किसी दिन किसी टीचर की क्लास में बैठा होगा, और आज जो मेरी क्लास में बैठा है ये आने वाली पीढ़ी है, ये कल समाज की नींव रखेगी। जरूरी नहीं है कि मेरे क्लास में जितने विद्यार्थी बैठे हैं वो सभी के सभी डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बन जाएं। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं अपने विद्यार्थियों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना, मैं उन्हें इस चीज के लिए समझा पाऊं, सेंसिटाइज कर पाऊं कि प्रकृति हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना आप प्रकृति से लेते हैं कुछ तो उसके बदले में उसे दीजिए। हमें प्रकृति को बचाने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। तो ये जो सेंसिटाइजेशन है, यदि हम इस कच्ची उम्र में कर पाते हैं तो वो जीवन पर्यंत उनके साथ जाता है। जैसे मेरा एक विद्यार्थी है मैम, वो इंजीनियर है, तो वो बहुत पहले पढ़ाया था मैम, 2010-11 में पढ़ाया था, सबसे पहला बैच था मेरा। तो उस बच्चे को जब हम क्या करते थे, नेस्टिंग साइट्स ढूंढते थे कि चलो आज देखते हैं कहाँ कहाँ नेस्टिंग साइट्स हैं, गांव में जाते थे मेरे साथ और नदी के किनारे नेस्टिंग साइट ढूंढते थे। तो बड़ा मजा आता था कि ओपन बिल की नेस्टिंग साइट है, ये इग्रेट्स की नेस्टिंग साइट है। वो वहां पढ़ाया और खत्म हो गया और बच्चे ने मैथ्स ले लिया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मुझे उसका मैसेज आता है कि मैम मैं यहां से इलेक्ट्रिसिटी की लाइन डाल रहा था तो मैंने वो ना डायरेक्शन चेंज करा दिया मैम। आई सेड क्यों, क्या हुआ? तो ही वाज लाइक मैम वहां पे तो नेस्टिंग साइट है, तो इग्रेट्स की और ओपन बिल्स की नेस्टिंग साइट है, तो वो पेड़ नहीं काटना मैम, बिकॉज दे नो कि ऐसी कई माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कई हजार किलोमीटर उड़कर बार बार इंडिया आती है, और जब वो इंडिया आती है तो वो उसी पेड़ को ढूंढती है, उसी एरिया को ढूंढती है। तो इन एरियाज को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। यदि वो पेड़ वहां पे नहीं है और बिल्डिंग बन गई है, क्योंकि वो उसका ब्रीडिंग सीजन है, वो ब्रीडिंग सीजन मिस आउट हो जाएगा। तो इसलिए नेस्टिंग साइट्स को पहचानना बहुत जरूरी है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा किस फील्ड में है, लेकिन नेचर से कनेक्ट होना तो सभी के लिए जरूरी है।
0: बिल्कुल जरूरी है, हमारे खुद के भविष्य के लिए भी। सो डॉक्टर शुक्ला, जैसा आप कह रही हैं कि हर एक जो नागरिक है वो आगे चलकर किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन जो पर्यावरण का संरक्षण है वो तो हम सभी के भविष्य के लिए, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां उनके भविष्य के लिए भी बहुत ही जरूरी है, जैसा हम देख ही रहे हैं। एक और जो आपकी पहल है बीजों को लेकर, सीड बिन्स को लेकर, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, उसका क्या है ये पहल और उसका क्या उद्देश्य है?
3: मैम, इसकी कहानी भी इसी तरह से शुरू हुई थी कि एक बार मैं थर्ड फ्लोर पे खड़ी हुई थी और मैंने देखा कि नीचे से जो गार्बेज व्हीकल थी वो निकल रही थी और लोग क्या कर रहे थे, आम के बीज को काली पन्नी में बांधकर और उसमें डाल रहे थे। तो मैंने अपने विद्यार्थियों को यही समझाया कि बीज कचरा नहीं है, क्योंकि बीज को जो आप कचरे की गाड़ी में डाल रहे हैं वो कचरा है ही नहीं। दूसरा, बीज का जो मौलिक अधिकार है उसको मिट्टी पानी मिल सके, आपने वो भी खत्म कर दिया। तो और वो बीज का एक पोटेंशियल है कि हर बीज जो है या तो 40 दिन में या 1.5 महीने में वो उगाता है, अगर उतने दिन में उसको मिट्टी पानी नहीं मिला तो बीज खत्म। इस तरह से लाखों बीज हम भारत में हर साल बर्बाद कर। तो इस तरह यहाँ से ये मुहिम शुरू हुआ कि हम जो बीज है उसको गार्बेज व्हीकल में नहीं डालेंगे। तो फिर इसको लेकर हमारी नगर निगम कमिश्नर मैम से बात हुई कि मैम क्या हम बीज को अलग से इकट्ठा कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने गाड़ियों में थैलियां डलवाई और पूरे एरिया में लोगों से रिक्वेस्ट किया कि बीजों को अलग से दीजिए, और इन बीजों को हमने बोरियों में कलेक्ट किया। तो जब ये काम कौन कर सकता था, मेरे विद्यार्थी पूरे शहर में फैले होते हैं तो वो हर जगह अपने अपने एरिया में बता रहे थे, और इस तरह से हमने बीजों को कलेक्ट किया। और यहाँ पर ये हुआ कि स्कूल में कैसे कलेक्ट करेंगे, तो हमने स्कूल में डस्टबिन के साथ सीड बिन रखे। तो मेरे विद्यार्थी जो सीताफल खाते थे वो सीताफल के बीज लाके उसमें अलग से डालते थे, जो आम खाते थे वो आम लाके अलग से डालते थे। तो यहाँ से सीड बिन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, और इस मुहिम के चलते हम नगर निगम के साथ मिलकर आम के उस साल लगभग 6000 बीज और सीताफल के लगभग 10000 बीज बचा पाए थे, और वो 6000 में से 2500 पेड़ हमने डेवलप किए थे।
0: तो बहुत ही मतलब एक नेचुरल रिसोर्स है देखा जाए तो। ये एक और जो आपका कॉन्सेप्ट है प्लांट्स में इमोशन है, ये क्या तथ्य है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और इसका क्या फायदा है?
3: एक बार क्लास में ही पढ़ाते हुए मैंने जगदीश चंद बसु जी के बारे में जब अपने विद्यार्थियों को बताया तो मैंने कहा था कि वो कहते हैं कि उनमें फीलिंग्स होती हैं, उनमें भावनाएं होती हैं, वो फील करते हैं। तो मेरा एक बच्चा खड़ा होकर कहता है कि मैम सच में फील करते हैं क्या, क्या वो हमारी बात समझते हैं? तो मैंने कहा करके देखते हैं। तो विद्यार्थी बड़े एक्साइटेड होते हैं, यस मैम कर सकते हैं क्या, मैंने कहा करते हैं। तो हम दो पौधे लाए और दोनों पौधे जो है वो बराबर साइज के थे, एक जैसी मिट्टी थी, एक जैसे गमले थे, एक जैसे सूरज की रोशनी मिल रही थी, और हम नाप कर दोनों में पानी डालते थे, बराबर खाद डालते थे। बस एक डिफरेंस जो था, हमने 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जो पेड़ों से बात करता था। तो एक ग्रुप जो है वो उस पेड़ को ग्रेटिट्यूड शो करता था, अप्रिशिएट करता था, और जो दूसरा ग्रुप है वो थोड़ा क्रिटिसाइज करता था। तो उसकी जो लैंग्वेज होती थी वो रफ होती थी और क्रिटिसाइजिंग होती थी। तो मैंने इनसे कहा कि आप बात करिए इनसे, लेट्स सी कि कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो जब बच्चों ने बात किया, एक महीने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट थे, तो जिससे हम नेगेटिवली बात कर रहे थे उसकी ग्रोथ ज्यादा थी। तो मुझे लगा कि शायद हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ तो है जो हम गलत कर रहे हैं। तो फिर दे सेड कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा लेट्स कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट, अभी रोकते नहीं है इसको। हमने अगले महीने फिर उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया, तो मैम इसकी जो ग्रोथ थी जिससे हम नेगेटिवली बात कर रहे थे उसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक गई, और इसमें नई पत्तियां निकलने लगी। तो हम नोट करते थे कि इसमें नई लीफ आ रही है, स्केल से नापते थे कि कितनी बड़ी होगी। 3 महीने आते आते मैम जो पौधा जिसको क्रिटिसाइज करते थे वो मर गया, और जो दूसरा वाला पौधा था वो हरा था। तो मतलब अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो जिन बच्चों ने ये प्रोजेक्ट किया, जब उन्होंने पीपीटी प्रेजेंटेशन इस प्रोजेक्ट का दिया, तो वो बच्चे जितनी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे उतने अच्छे से तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो अब मेरे बच्चे सुबह आते हैं तो पेड़ों से हेलो करते हैं, मैं खुद हेलो करती हूँ, बात करती हूँ।
0: तो बहुत ही कहे कि दूरगामी इसके प्रभाव है, और लगता है कि ये विन विन सिचुएशन है, एंड बच्चों के लिए भी उनकी जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है उसमें आपको लगता है कि इसका बहुत अहम भूमिका है।
3: यस मैम, हमने एक और मूवमेंट शुरू किया है जिसमें हम बच्चों को पेड़ों को हग करने के लिए कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज हग अ ट्री मूवमेंट। तो जब वो पेड़ों को हग करते हैं, देयर इज अ साइंटिफिक रिपोर्ट जो ये कहती है कि अगर आप सिर्फ 28 सेकंड्स तक अगर किसी पेड़ को हग करते हैं तो आपके अंदर एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और ये वही हार्मोन है जो मदर को हग करने से रिलीज होता है। और मैंने बच्चों के फेस पे एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखे हैं।
0: डॉक्टर शुक्ला बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई आकाशवाणी स्टूडियोज में और आपने इतने विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बताया, और एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप आपको सम्मानित किया है भारत सरकार ने उसके लिए।
3: थैंक यू सो मच मैम मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ एक लाइन आखिरी में बोलना चाहूंगी, महात्मा गांधी ने कहा था बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द सोसाइटी, और मुझे खुशी है कि हम वह परिवर्तन है। धन्यवाद।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे गौरैया और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योगदान देने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अर्चना शुक्ला के साथ खास बातचीत संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमारे ईमेल podcast.airnews@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
5: ये आकाशवाणी सागर है, 9:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं संगीत सरिता। क्या जाने कब कहां से चुराई मेरी गजल, उस शोख ने मुझे को सुनाई मेरी गजल। ये है पंकज उदास।

0: अभी श्रोता संगीत सरिता सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है। 9:50 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार।
1: नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मनोपचार सुखी संसार कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना, और बातचीत करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ आज फिर हैं न्यूरो मनोरोग नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी। डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी पिछले 12 सालों से लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और भोपाल के एक जाने माने न्यूरो मनोरोग चिकित्सक के रूप में पहचाने जाते हैं। सर, बात हम मनोरोगों की कर रहे हैं। विगत दिनों एक रिपोर्ट जो अखबारों में पढ़ने को मिली, उसमें जो अपराध बढ़ते हैं या अपराध होते हैं, उसका मूल कारण बहुत हद तक नशा देखने को मिला है
2: जी।
1: ये जो नशे की प्रवृत्ति है युवाओं में खासकर ज्यादा देखी जा रही है
2: जी,
1: इसमें भी फैंसी नशे जैसे कह सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
2: अब बहुत समसामयिक आपने सवाल पूछा है
1: जी,
2: और अच्छी बात यह है कि हमारी जो सरकारें हैं, विभिन्न जो भी सरकारें हैं राज्यों में या फिर केंद्र में, तो वो इस चीज पे अब ध्यान केंद्रित कर रही है, क्योंकि देखिए नई पीढ़ी ही इस तरह के नशे ज्यादा कर रही है, और जो क्राइम क्रिमिनल सिंडिकेट हैं
1: जी,
2: वो इस

0: उसको एक जरिया बनाते हैं। देखिए जो पैसे वाले बड़े लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, उनके बच्चे जिनके पास अफोर्ड कर सकते उन्हें पहले आकर्षित किया जाता है फ्री में, संगत और दोस्ती बढ़ा के। फिर है कि उनके साथ जो उनके मित्र हैं, जो हो सकता है उतने पैसे वाले नहीं है, उनको भी आकर्षित किया जाता है, फ्री में दिया जाता है। फिर उनके पास तो पैसे नहीं है, चलो पैसे वाले का बच्चा तो कर रहा है, ठीक है, तो जो है तो उससे फिर वो गलत काम करा सकते हैं, उस ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करा सकते हैं, उसको तो आदत लगा दी है, अब बिना उसके वो रह नहीं पाएगा, बिना दवाई के वो छूट नहीं सकता, और वो उसको ठीक भी नहीं होने देना चाहते, है ना। तो उससे क्या है, ये क्राइम्स भी बढ़ेंगे फिर, क्योंकि बच्चा ऐसे में क्या करेगा, घर से पैसे उठाएगा चोरी छुपे, या लोगों से पूरे समाज में अपने पिताजी के नाम से उधारियां लेने लगेगा, या फिर एक नशे की पूर्ति के लिए हो सकता है वो इंटरनेट पे गेमिंग, जुआ, सट्टा, डिफरेंट एप्स हैं, उनके यूज करने लगे, और फिर वो और कर्जे में जाके उसके नशे में भी फंस सकता है। सा चक्र है इसमें, यदि हम अभी सतर्क नहीं होते एज ए पेरेंट, एज ए समाज, एज ए सोसाइटी जो है, या एज ए प्रदेश या देश, तो बहुत बड़ी समस्या होने में, कई देश इस नशे की समस्या की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। तो आज आपने ये सवाल उठाया, आज का दिन गणेश चतुर्थी का दिन है, पहला
1: बात है, मैं तो
0: शुभारंभ हम यदि इस सोच में रखेंगे हम कैसे इनको पहचाने और कैसे हम अपने बच्चों को इससे बाहर ला सकते हैं।
1: बिल्कुल सच बात है सर, ये जो सवाल है ना, सबके मन में जो इस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उनके मन में यही रहता है कि साहब हम तो जान ही नहीं पाए कि हमारा बच्चा इतना दलदल में फंस चुका है
0: जी,
1: या इस क्षेत्र में इतना आगे जा चुका है, हमें तो पता ही नहीं चला
0: जी।
1: तो सवाल यही है सर कि हम अपने बच्चों पर निगरानी कैसे रखें, और अगर ये इस परिस्थिति में आ गए हैं तो उनको शुरुआत में कैसे पकड़ें
0: जी। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, निगरानी ये है कि आप देखिए बच्चे की जो भी आप अपनी नॉर्मल हरकतें समझते हैं, थोड़ा सा किसके साथ बैठता उठता है, कहाँ आता जाता है, कहाँ एंजॉय करने का उसका जगह है, कैसे लोग हैं, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, भलिए टोका टोकी उतना मत करिए चलेगा, लेकिन आप नजर जरूर रखिए,
1: बिल्कुल
0: संवाद रखिए, क्यों वो ऐसे लोगों की तरफ ज्यादा जा रहा है, हो सकता है उसे घर में बोलने बतियाने के लिए समझने के लिए कोई नहीं, तो दूसरे लोग प्रभावित ज्यादा कर रहे हैं। तो एक जो मैं बोलता हूँ हमेशा है कि घर में एक मील साथ में होनी चाहिए दिन की या रात की, ताकि लोग क्या चल रहा है किसकी लाइफ में, और एक डिसिप्लिन होता है घर में, यदि बच्चा उसको तोड़ रहा है, बातें छुपा रहा है, आपके सामने नहीं पड़ रहा है, और लग रहा है कि अब काम नहीं है मान लीजिए उसके पास, फिर भी ये इतना समय कहाँ रहता है, फिर उसकी शारीरिक स्थिति कुछ कमजोर हो रही है क्या, या फिर उस आपको कुछ अजीब स्मेल आ रही है, या फिर कुछ उसकी नींद में डिस्टर्बेंस, या कुछ चीजें आपके घर में कम हो रही हैं, या बार बार किसी बहाने से पैसे मांग रहा है, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, कहीं बच्चा गलत संगत में तो नहीं चला गया, उसका शारीरिक परीक्षण भी कराएं, ठीक है, आपको लगता है तो थोड़ा उसको बात करें बैठाएं, ऐसे में है कि बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेके उससे पूछना है, क्योंकि ये जो नशे हैं, जो भी आप ओपियोइड्स हो गए, आपके सिंथेटिक ड्रग्स हो गए, है ना, जो सूखे नशे आप बोल रहे हैं, इनमें क्या है कि बिना दवाई के आप अचानक नहीं छोड़ सकते, दवाइयों के साथ छुड़ाया जा सकता है, मैं कहूँ शराब छुड़ाने से आसान है इनको छुड़वाना दवाइयों के साथ, है ना, दवाइयां हैं और काउंसलिंग भी है, ठीक है, बच्चे को बस पहले समझना है क्या नशा है, पूरी बात सुनना है, डॉक्टर के पास ले जाना है उसको, फिर वो कॉन्फिडेंस में लेके, क्योंकि बच्चा भी बहुत बुरे चक्र में फंसा है, वो भी निकलना चाहता है, ठीक है, और मान लीजिए वो कुछ भी कन्फेस करता है, कोई क्राइम भी है कुछ भी है, तो आप सपोर्ट करिए उस चीज को, है ना, ऐसा नहीं है कि पुलिस उसमें मदद नहीं करती है, पुलिस वाले भी मदद करते हैं भाई, वो भी चाहते हैं ये नशे की चीजें खत्म हो,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि सरकार की नीति है, तो क्या है लोग पहुंचते ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ना घर वालों को है ना समाज को है, तो हमें थोड़ा सतर्क रह के संवाद करना है ऐसे बच्चे को, उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति, बात कैसे कर रहा है, खाने पीने का सिस्टम, किसके साथ उठ बैठ ज्यादा रहा है, तो इस पे निगरानी रखने से पता चल जाता है कुछ गड़बड़ है।
2: डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत, न्यूरो मनोचिकित्सा क्लिनिक भोपाल, मनोरोग, नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ एवं काउंसलर, मिर्गी, सिर दर्द, नसों के दर्द, सभी तरह की मानसिक एवं व्यवहारिक समस्याओं, बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं की विभिन्न व्यवहारिक समस्याओं के निदान हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9406925768, हमीदिया हॉस्पिटल के सामने 27 न्यू ताज मार्केट एवं 11 ऋषि कॉम्प्लेक्स डीआईजी बंगला चौराहा भोपाल।
3: डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत अब आपके आसपास के क्षेत्र बाड़ी बरेली उदयपुरा और बीना में भी उपलब्ध है।
1: इलाज की बात कर लेते हैं
0: जी,
1: कितना जल्दी इसका इलाज संभव है?
0: देखिए किस तरह का नशा व्यक्ति कर रहा है, जब वो बताता है किस रूट से कर रहा है, है ना, कि भाई वो सूंघ के ले रहा है, धुएं के रूप में ले रहा है, इंजेक्शन में ले रहा है, या फिर टैबलेट्स में ले रहा है, या इनहेल कर रहा है, या हुक्के में ले रहा है, कैसे ले रहा है, उसके हिसाब से कौन सा नशा है, क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं। सिम्टोमेटिक इनिशियली ट्रीटमेंट दिया जाता है, 10 दिन, 1 हफ्ते या 15 दिन में बुलाया जाता है, फिर धीरे धीरे व्यक्ति को जो नशा अचानक छोड़ने से जो विड्रॉल होते हैं, डिटॉक्स करके फिर विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट होता है जो कि एक्यूट ट्रीटमेंट, मतलब शुरुआती है
1: जी।
0: फिर जब वो उससे बाहर आ जाता है 10-15 दिन में, व्यक्ति उससे बाहर आ जाता है, ठीक है। कई बार बहुत ज्यादा है, मॉनिटरिंग लगती है कि भाई उसके ब्लड प्रेशर, सांस में दिक्कत, या फिर कोई और ऑर्गन्स में ज्यादा दिक्कत है, तो एडमिशन भी लगता है, है ना, तो कोई भी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है, है ना, जहाँ पे साइकेट्रिस्ट की विजिट है,
1: ठीक है।
0: उसके बाद है कि फिर उसको फॉलोअप में ओपीडी पे नशे से जो इच्छा होती है उसको रोकने की दवाई, उसके जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हुए हैं नशे की वजह से उनको खत्म करने के लिए दवाई, या उसके साथ कोई, जैसे कि हर दूसरे नशे वाले व्यक्ति में मानसिक रोग हो सकता है, उसमें कोई टेंशन तनाव चिंता की बीमारी बन गई है, या शंका की या डर भय की बीमारी बन गई, तो उसका इलाज, और कोई कमजोरी आई है तो उसके लिए दवाइयां शुरू की जाती। जनरली 6 महीने या 1 साल दवाई 1-2 चलती है, ताकि व्यक्ति उतना दिन यदि वो कंट्रोल कर पाया तो 70-90% चांस है कि फिर नशे की तरफ बीमारी नहीं बनेगी। देखिए नशा चॉइस से करना छोड़ना अलग बात,
1: हाँ,
0: लेकिन जो रेगुलर है बिना उसके नहीं रह रहा, उस पर डिपेंडेंसी हो गई है, छोड़ते ही शारीरिक मानसिक समस्याएं होती हैं, उसको तुरंत इलाज की जरूरत है, और बिना दवाई के इलाज संभव नहीं होता है। लोग कितना ही बोलेंगे हम कंट्रोल कर लेंगे, ये देखिए बहुत लंबे समय से डिपेंडेंसी है, तो फिर आपको दवाई की मदद, डॉक्टर की सही सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि उससे स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
1: श्रोताओ, वाकई ये ऐसा मुद्दा है, इस पर बहुत लंबी बात करने का मेरा मन है और आपका भी मन होगा कि इस पर बहुत सारी बात की जाए। हम आगे के एपिसोड में जरूर बात करेंगे डॉक्टर साहब से। अभी हम बात कर रहे थे भोपाल के सुविख्यात न्यूरो मनोरोग नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी से। साथियों, अगर आपके मन में भी इस तरह के कोई सवाल है और उनका समाधान चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9406925768। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9406925768। अब हम आपसे विदा ले रहे हैं, अगले सोमवार हम फिर मिलेंगे।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम, और अब से कुछ ही देर बाद श्रोता सुनेंगे जिले की चिट्ठी हमारे भोपाल केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है राजगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख कमलखस, वाचन स्वर शेख महजबी अलमार। राजगढ़ जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की। इस अभियान के तहत राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने ब्यावरा में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने नए जनपद पंचायत कार्यालय और रेस्ट हाउस के निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता देखी और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं के लिए बन रहे सामुदायिक भवन का भी जायजा लिया। वहीं दूसरी तरफ संभाग आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने पीलूखेड़ी और नरसिंहगढ़ का दौरा किया। पीलूखेड़ी में उद्योगपति से संवाद कर पानी सुरक्षा, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। वहीं नरसिंहगढ़ में राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने और मामलों को बेवजह लंबित नहीं रखने की हिदायत दी। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव संजय गोयल ने भी राजगढ़ जिले के सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूलों में व्यवस्थाओं और शिक्षा की स्थिति का जायजा लिया। राजगढ़ जिले में अच्छी बारिश से सोयाबीन की फसल तेजी से बढ़ी है, जिससे किसानों को अच्छी पैदावार की उम्मीद जगी है। हालांकि कुछ खेतों में पौधों की जरूरत से ज्यादा बढ़वार के कारण फूल और फलियां कम बनने की चिंता भी सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ लगातार बारिश से नदियों और जलस्रोतों का जलस्तर बढ़ गया है और मोहनपुरा डैम के 5 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। पानी की निकासी से निचले इलाकों के करीब 150 से 200 गांवों के रास्ते प्रभावित हुए हैं, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। बलराम जयंती पर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों को वैज्ञानिक खेती और प्राकृतिक कृषि की जानकारी दी गई। कृषि विशेषज्ञों ने बीजामृत, जीवामृत और संतुलित उर्वरक इस्तेमाल के साथ मिट्टी की सेहत बनाए रखने पर जोर दिया। किसानों को कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए वैज्ञानिक तकनीक अपनाने की सलाह दी गई और उनकी खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी किया गया। सिविल अस्पताल सारंगपुर में करीब 56 लाख रुपए की लागत से 4 अत्याधुनिक मशीनें शुरू की गई है। इन मशीनों से अब सारंगपुर और आसपास के मरीजों को कई गंभीर बीमारियों की जांच के लिए बड़े शहरों या निजी केंद्रों का रुख नहीं करना पड़ेगा। राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने अपने जन्मदिन पर इन मशीनों का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के मौके पर राजगढ़ में 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलेगा। भाजपा की जिला स्तरीय कार्यशाला में अभियान की तैयारियों पर चर्चा हुई और बूथ से जिला स्तर तक कार्यक्रम चलाने की रणनीति बनाई गई। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि अभियान के जरिए सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ब्यावरा के बूथ क्रमांक 71 पर राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम में नशा मुक्त युवा अभियान, महिला सशक्तिकरण, विरासत संरक्षण, नवाचार और जन भागीदारी जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री के विचार सुने गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी ने राजगढ़ के जिला अस्पताल का दौरा कर नवनिर्मित रैन बसेरे का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में दूर दराज से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के ठहरने की व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान साफ सफाई, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाओं को बेहतर रखने पर चर्चा हुई। ब्यावरा के ट्रेशिंग ग्राउंड में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने पौधरोपण कर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान कचरे को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर उसके बेहतर प्रबंधन की जानकारी दी गई। महिलाओं की इस पहल में स्वच्छता के साथ रोजगार की संभावनाओं पर भी जोर दिया गया। ब्यावरा के श्री खाटूश्याम मंदिर में एकादशी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर समिति के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। मंगल आरती के साथ शुरू हुआ दर्शन का सिलसिला दिन भर चलता रहा। खिलचीपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आयोजित कार्यक्रम में कथक, नृत्य नाटिका और सूफी भजनों की शानदार प्रस्तुतियां हुई। कलाकारों ने कृष्ण जन्म, बाल लीलाओं से लेकर गीता के संदेश और मीरा सुदामा की भक्ति तक को मंच पर जीवंत किया। गणेश चतुर्थी और हरतालिका तीज जिले में आज घरों से और चौराहों पर गणपति बप्पा की प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। वहीं हरतालिका तीज पर महिलाएं व्रत रख रही हैं। पर्व को देखते हुए बाजारों में सुहाग सामग्री की खरीदारी की जा रही है। अब बात जिले की ऐसी सफलता की कहानी की, जहां सरकारी योजना का लाभ लेकर एक दंपति ने अपने सपनों को कारोबार में बदला और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की। संत रविदास स्वरोजगार योजना के तहत मंजूबाई और उनके पति कमल सिंह ने 3 लाख रुपए का ऋण लेकर राजगढ़ में एमपी ऑनलाइन सेंटर और बैंक सीएसबी शुरू किया। आज उनका कारोबार अच्छी तरह चल रहा है। खर्च व ऋण की किस्त के बाद उन्हें करीब 13,000 रुपए की मासिक बचत हो रही है। योजना का लाभ, मेहनत और आत्मविश्वास ने इस परिवार की आर्थिक स्थिति बदल दी है। राजगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
0: इसमें आज आपने सुनी राजगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख कमल खस का था, वाचन था शेख महजिबी अलमास का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
2: ये आकाशवाणी सागर है। 10:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुनें।

0: भैया फोन करें लोकगीत सुने, ये कार्यक्रम में आपको खूबे खूब स्वागत है। हम हैं आपके संगे जय शेखर और करत है भैया आपसे राम राम और लेते हैं आपको जो पहलो फोन। फोन करें लोकगीत सुने में खूबे खूब स्वागत है आपको। अपनो नाम बताओ।
1: नाम तो कल्याण सिंह यादव पाली, बांदी के पास में है फूलदान पे गाँव।
0: हाँ तो कल्याण भैया
1: जी
0: हमें बताओ क्या कर रहे हो पाली में?
1: कछु नहीं सर, खेती किसानी है अपने लगा। हाँ फसल सोयाबीन बहुत सर।
0: हाँ हाँ
1: उड़दा भाई अब सर कछु नहीं, पानी गिर गया बहुत पानी, ये साल बरसात हो गई सर, बढ़ गए हैं सर सोयाबीन।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ तो भैया हमें जा बताओ कि अगर हम आपसे अटका पूछें तो अटका बताओ।
1: अटका बताए सर हम
0: तो हमें भैया जा बताओ कि अब पांच पंच हैं घने खजूर, तुम लौटो हम जाएं दूर।
1: सर वो अपन भोजन करा थे। हाँ। तो जो हाथ को हुआ भोजन बन गया।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो। अब बता दो लोकगीत कौन सा सुनवा देवे?
1: लोकगीत तो सर हमें भगवान सिंह यादव को सुनवा।
0: ठीक है भैया सुन लो अपनी फरमाइश पे, भगवान सिंह यादव को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: हेलो,
3: फोन करें लोकगीत सुने में, स्वागत है आपको।
2: हाँ जी सर, नमस्ते।
3: नमस्ते, अपना नाम बताओ।
2: ग्राम लक्ष्मण परा, जिला टीकमगढ़ से अखिलेश सेन।
3: भैया क्या कर रहे हो आप?
2: सर बस अभी तो घर पे ही हैं सर, दिल्ली में रहते तो भैया है, बस यहाँ ही अभी तो घर पे ही खेती बाड़ी का काम चल रहा है अभी तो।
3: चलो भैया बहुत अच्छी बात है, अब हम भैया आपसे अटका पूछ ले।
2: जी सर अटका बताइए।
3: अटका कह रहा है, 5 पंच हैं घने खजूर, तुम लौटो हम जाएं दूर।
2: 5 पंच हैं बड़े खजूर,
3: घने खजूर।
2: अच्छा, घने खजूर, तुम लौटो हम जाएं दूर।
3: हाँ,
2: संकेत थोड़ा बहुत।
3: संकेत भैया जो अपने साथ ही जुड़ी हुई बात है।
2: रास्ता तो नहीं जो?
3: नहीं भैया,
2: समझ में नहीं आ रहा।
3: चलो भैया बताओ लोकगीत कौन सा सुनवा देवे?
2: सर आप इंद्रपाल विश्वकर्मा का लोकगीत सुनवा दीजिए।
3: चलो भैया हम आपको सुनवा रहे हैं इंद्रपाल विश्वकर्मा को गाओ भाओ जो लोकगीत।

0: हेलो।
1: फोन करें लोकगीत सुने में स्वागत है आपको। अपना नाम बताओ।
0: हम बोल रहे हैं अमित तिवारी, कोटरा जिला जालौन उत्तर प्रदेश से।
1: भैया अमित, अपने बारे में बताओ, कछु के क्या कर रहे हो आप होते?
0: बस हम पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं और पूजा पाठ कर रखेंगे। और मतलब
1: आपके देखो मौसम कैसा चल रहा हो बे?
0: हमारे तरफ वो बराबर मौसम बारिश हो रही है अभी, और ये मान के चलो कि सब लोग इंतजार में है कि जी अच्छी धूप खुले, क्योंकि चौप हमारे यहाँ जो फसल है इस वक्त पूरी खराब हो चुकी है।
1: चलो भैया, हम उम्मीद करें कि आपके ते मौसम खुल जाए लेकिन हमारे कितने बरस जाए। जय है भैया प्रकृति को, एक हो बन प्रकृति कहते हैं कि कहूं बारिश है और कहूं कम है बारिश। तो हमारे तो भैया हम चाहते कि और बारिश हो जाए। तो अमित भैया, अब हम आपसे पूछ रहे हैं एक अटका।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: अटका कह रहे हो कि पांच पंच हैं घने खजूर, तुम लौटो हम जाएं दूर।
0: पांच आपको जी अटका है, ये तो हमारा झटका को प्रदान कर दे साहब। हम तो एकदम अटका भी बताई तेरा स्रोत होते हैं जी, मान के चलो सर।
1: बिल्कुल भैया, तो अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा दे मैं आपको?
0: बस लोकगीत आप सुनवा दीजिए साहब, चंद्रभूषण पाठक की आवाज में कोई भी लोकगीत सुनवा दीजिए आप।
1: चलो भैया ठीक है, भैया सुन लो अपनी फरमाइश पे चंद्रभूषण पाठक को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: हेलो,
1: फोन करें, लोकगीत सुने।
0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार भैया, अपना नाम बताओ।
0: सर हम बोल रहे राजा राम कुशवाहा।
1: राजा राम भैया कहाँ से बोल रहे हो?
0: सर बड़ा गाँव से बोल रहा था।
1: तो राजा राम भैया कछु अपने सरका खेड़ा गांव के बारे में बताओ और अपने बारे में बताओ।
0: अबे तो सब कछु नहीं हुआ, बारिश हो रही है, आज धूप भी निकली। देखो भगवान की तो भगवान की देन है, सुबह तो आज तो सड़क है। जो कछु कुछ सूख गई थी अभी तो सड़ गई।
1: चलो भैया, हम जय उम्मीद करें कि आपको खेती किसानी से लाभ मिले और कोई भी प्रकार की हानि ना हो, और जो उनसे आपके पूरे परिवार जुड़े है, पूरा देश जुड़े है भैया, एक ऐसा काम धंधो है जो तो बड़े अच्छे से चले, प्रकृति की मार भी ना पड़े।
0: सब पानी की मार देखो अब मिल जावे तो बड़ी बढ़िया है। पानी की नहीं साहब, बिल्कुल कमी नहीं है।
1: चलो भैया अच्छी बात है कि सरका खेड़ा के आदमियों को पानी की कोई कमी नहीं है।
0: बोले चलो तो एक पेड़ माँ के नाम।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: तो साहब हमारे बिल्कुल भी एक भी गाय नहीं बचो के जिसने पेड़ नहीं लगाए हो।
1: अरे भैया जहाँ तो सबसे अच्छी बात है। हम तो आदर्श गाँव मान है आपके लाने की, भैया इतनो ध्यान रखो आप लोगों ने प्रकृति के लाने, एक पुण्य को काम कर दो आपने।
0: हमारा तो साहब आपको पता ही जाएगा, मतलब आपकी मतलब हमारी बात दो चार भी आपसे भाई।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ,
0: सुरेश चंद्र तिवारी को सुनवा दियो कोई बढ़िया। तो
1: सुरेश चंद्र तिवारी को राजा राम भैया अटका कह रहा है कि पांच पंच हैं घने खजूर, तुम लौटो हम जाएं।

0: एक बार कहियो।
1: पांच पंच हैं घने खजूर, तुम लौटो हम जाएं दूर।
0: दांत आते नहीं ना?
1: हाँ।
0: तो सब बन नहीं हुआ।
1: हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश चंद्र तिवारी को गाओ भाओ जो लोकगीत।

0: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार, फोन करें लोकगीत सुनने में स्वागत है आपको।
0: जय बजरंग रेडियो सोता संग बस टेन वंडा बेनेशन लक्ष्मण देखो चाय वाले बोल रहे सर, कैसे हो आप?
1: हम बढ़िया है भैया, आप अपनी बताओ।
0: बस पानी चल रहा, पानी से है परेशान
1: भैया। परेशान अपन को नहीं होने हैं, कोई भी चीज से परेशान नहीं होने हैं।
0: फसलें फलियां मलिय गिर लगी
1: है। हाँ भैया, लेकिन देखो तो अभी कुछ दिन तक तो पानी ही नहीं गिर रहा। तो
0: हाँ अब गिरो तो खतरनाक गिरो।
1: हाँ तो लक्ष्मण भैया, बरसात का मौसम चल रहा है, खूब सावधानी बरतने हैं अपन के लाने।
0: बस तो आसपास जो कचरा मचड़ा जो हाँ। नाली माली का पानी रहता है उसको निकाल लेना, आयल माल डालना तो उससे मच्छर से बचा जाए।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अब हम आपसे पूछ रहे हैं एक अटका।
0: हाँ सर,
1: अटका कह रहा है कि पांच पंच हैं घने खजूर, तुम लौटो हम जाएं दूर।
0: हम जाएं दूर जो हमने सुनो ही नहीं है, हम समझ ही नहीं आ रही।
1: चलो भैया कोई बात नहीं, अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा देवे?
0: राजू पटेल को सुनवा दीजिए।
1: सुन लो भैया अपनी फरमाइश पे, राजू पटेल को गाओ भाओ जो लोकगीत।
2: अरे मुनि के शोभे से हाथ लाए धनुष बाण
3: भैया,
2: अरे मुनि

0: सर।
1: नमस्कार भैया, फोन करें लोकगीत सुने में स्वागत है आपको।
0: जी आकाशवाणी सागर, फोन करें लोकगीत सुने लेकर उपस्थित है जय शेखर।
1: वाह भैया वाह। भैया अपना नाम भी बता दो।
0: नरेंद्र कुर्मी, शमनापुर कला, यह रैली रोड पे है सर, पटना के पास में।
1: अच्छा अच्छा।
0: और हम नेत्रहीन है, हम बड़ी भैया।
1: ओ भैया।
0: अब सर हम भजन लिखाते हैं, भजन गाते हैं, लोग संगीत से जुड़े हैं।
1: अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है भैया, संगीत के लाने समर्पण कर दो है आपने।
0: जी जी।
1: तो भैया घूमने फिरने में तो बहुत अच्छा लगा था आपके तो बरसात में।
0: अरे हमारे तो सर बहुत, शमनापुर कला है पूरा नाम, तो कला जो जुड़ा है।
1: हाँ हाँ।
0: तो भगवान की कृपा से वास्तव में अब क्या है कि हम अपने मुंह से कहें तो क्या है, कला है वास्तव में नाम।
1: नहीं आप तो बता दो हमें, आप तो अपने मुंह से कहो।
0: जी क्या है कि हमारे गांव में सर संगीत प्रेमी है सबसे बड़ी बात तो।
1: हाँ हाँ।
0: और हर प्रकार की मैकेनिक है हमारे गांव में, लगभग छोटी चीज सुधारने से लेकर फ्रिज कूलर से लेकर जेसीबी मशीन तक सुधारते हैं।
1: बहुत ही अच्छी बात बताई आपने भैया।
0: जी कभी आप आए तो जरूर।
1: हाँ बिल्कुल भैया, जरूर आए समनापुर। हाँ हाँ। तो भैया अब आपसे पूछ रहे हैं हम अटका।
0: जी बिल्कुल, आप पूछो सर।
1: अटका क्या रहा है कि पांच पंच हैं घने खजूर, तुम लौटो हम जाएं दूर।
0: हाथ पंजा हुई है सर।
1: बिल्कुल सही कह रहे भैया, हाथ को पंजा और खाना।
0: जी
1: अब बता दो लोकगीत कौन सा सुनवा देवे।
0: केवट प्रसंग को भजन सुना रहे हैं।
1: ठीक है ठीक है।
0: पार लाखों भाव से उतारो है, केवट सोचे अब नंबर हमारो है, केवट सोचे अब नंबर हमारो।
1: अब बता भैया लोकगीत कौन को सुनने भैया आपको।
0: घनश्याम दास मृदुल को सुना दी सर।
1: तो सुन लो भैया अपनी फरमाइश पे, घनश्याम दास मृदुल को गाओ भाओ जो लोकगीत।

0: जयराम जी की सर।
1: जयराम जी भैया अपना नाम बताओ।
0: हरीश रैकवार बोल रहा सर।
1: हरीश भैया बताओ कुछ अपने बारे में।
0: जी सर अभी तो हरियाणा में है सर।
1: हाँ हाँ
0: जी यही पता है।
1: अच्छा अच्छा भैया उधर बारिश कैसी हो रही है?
0: बारिश बहुत हो रही है सर, अच्छी हो रही है।
1: तो हरियाणा में भैया पानी अच्छा गिर रहा है?
0: जी सर पानी अच्छा गिर रहा है।
1: चलो भैया बहुत अच्छी बात है। हरियाणा में जहाँ आप रहते हो उधर की जगह की खासियत बताओ, कहाँ कहाँ अच्छा लगा था आपको घूमने, कहाँ जाऊ थो आप?
0: घूमने का अच्छा यहाँ से अपन मतलब लाल किला पहुँच जाते हैं।
1: हाँ हाँ
0: चिड़ियाघर है। हाँ, इंडिया गेट है। जहाँ भी जाना है तो सर वहाँ पहुँच जाते, पास में पड़ता है यहाँ से।
1: अच्छा अच्छा। और सानोदा कब से नहीं भैया आओ जाओ आपको?
0: हो गए सर, जून में गए थे फिर अभी नहीं गए हैं, अब जाएंगे दीपावली पे।
1: चलो बहुत ही अच्छी बात है भैया, खूब सब में मिलत जुलत रहो। हम आपसे पूछ रहे हैं अटका।
0: जी सर बताइए।
1: अटका क्या रहोगे? पांच पंच हैं घने खजूर, तुम लोटो हम जाएं दूर।
0: ये सर अपना हाथ है सर, अपन खाना खाते हैं ना सर।
1: हाँ हाँ भैया सही
0: कह रहे हैं,
1: बिल्कुल सही। अब बता दो लोकगीत कौन सा सुनवा देवे?
0: विजय सिंह ठाकुर का कोई भी लोकगीत सुनवा देना। अच्छा
1: चलो भैया बहुत अच्छी बात है, और हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पे विजय सिंह ठाकुर को गाओ भाओ जो लोकगीत।

भैया हरो जो हतो हमाओ आज को फोन करें लोकगीत सुने कार्यक्रम। ये कार्यक्रम में हमने आपसे पूछा तो आज एक अटका है तो पांच पंच हैं घने खजूर तुम लोटो हम जाएं दूर। तो भैया हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने को सही जवाब भी दो। सही जवाब भैया हाथ की उंगलियां और भोजन। और अगर आपके पास भी ऐसे नौने नौने अटका हुए तो व्हाट्सएप पे या चिट्ठी पे हमें लिख के आप भेज सकत हो। अगर आपको व्हाट्सएप पे अटका लिख के भेजने हैं तो भैया व्हाट्सएप के लाने मोबाइल नंबर लिख लो 9770432297। अगर भैया आप चिट्ठिया लिख के अटका भेजो चाहत हो तो ऊपर लिख दो अटका द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सागर मध्य प्रदेश। तो भैया हमें रहे आपके अटकों को इंतजार। तो भैया जो हतोमाओ आज को फोन इन कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने। ये कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी हते हेमंत तिवारी और ये कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत करो आपके ये दोस्त जयशेखर ने। और अब दो हमें अनुमति। राम राम।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। आइए सुनते हैं ये देशभक्तिपूर्ण गीत।

0: अभी आपने ये देशभक्तिपूर्ण गीत सुना। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है।
1: अरे काय भैया, जैसे वो लटकाए काय को दिए थे।
2: अब कहा बताए भज्जा तुम्हें, कोनो ये कब परेशानी हो तो बता दे। ये तो राम भाई समस्याओं की ये लगी है।
1: अरे भैया ये सब क्या होगा, तो बताओ।
2: अब तुम्हें कहा बताए भैया, कबू वो ढोर बीमार, कबू वो ढोर बीमार, कबू ये खोजा परेशानी, कबू वो खोजा परेशानी, और ऊपर से अपना खेती रो आ रही है सोल गई।
1: अरे अब रोबो धोबो छोड़ो, उठाओ मोबाइल, लगाओ हेलो किसान वाणी में। हेलो किसान वाणी में हर गुरुवार को दोपहर 1 बजे से फोन लगाते, उन्हें आउट है आकाशवाणी में एक से एक चुनिंदा वैज्ञानिक और डॉक्टर सोई।
2: अच्छा अच्छा,
1: मोबाइल पे फोन लगाओ 22 88 20।
2: हाँ,
1: और दूसरा नंबर भी लिख लो 240 845।
2: और इसी वाला घर का कछुआ करना पड़े,
1: बड़े समझदार हो। इनमें कोड नंबर भी लगाने पड़े सागर को, और सागर को कोड है 0 7 5 8 2। अब सागर आकाशवाणी को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सागर आकाशवाणी को व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो भैया। सागर आकाशवाणी को व्हाट्सएप नंबर है 9 7 7 0 4 3 2 2 9 7।
2: एक बार फिर से बता दे भैया।
1: भैया फिर से लिख लो, इनमें कछु परेशानी नहीं। 9 7 7 0 4 3 2 2 9 7।
2: अच्छा तो पहले फोन की कोशिश कर है, तो फिर बात साहब।
1: अरे
2: भज्जा बताओ भज्जा, जैसे राम भाई हमारी सब समस्याओं को निदान हो जाए।
1: अब तो रोबो धोबो हो गई पुरानी बातें, लगाओ हेलो किसान वाणी में फोन।
0: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। सुबह के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, नीलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीनबाई और मोतीनबाई मानिकपुरी जी ने। अच्छे स्वभाव और व्यवहार वाले लोगों की जगह इस दुनिया में प्राणवायु फैलाने वाले हरे वृक्षों जैसी होती है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल और दीपांजलि पटेल के साथ दीपक पटेल, टेकलाल पटेल जी लिखते हैं। विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। 19 अगस्त को सुनने को मिला नदी का सफर, हमें और हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगा। उसके लिए उमंग टीम को हम हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ज्ञान का खजाना है उमंग कार्यक्रम। मटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मेहू ने लिखा है नमस्कार। ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत हमारी प्रिय हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों को जान सके जिनको सर्वसम्मति से पूरा विश्व ये मान्यता प्रदान करता है कि इन शब्दों की उत्पत्ति भारतीय है। जंगल, शैंपू, पायजामा और अगले अंक में बंगला, खाकी, लूट, योग, गुरु शब्दों की मूल उत्पत्ति पर गहन साहित्यिक मालूमात हासिल हुई। कुछ दिनों पहले कुछ हिंदी शब्दों के अर्थ भी बताए गए थे, उसके लिए हम पूरी उमंग टीम का आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल, बेंगलुरु से जगदम्बिका और हमसावेनी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से

0: अष्टपाल गजभिये और राधिका गजभिये, रिडमा डाल्टनगंज पलामू झारखंड से मिंटू दुबे, दिशानी दुबे, किसले और आनंद के साथ साथ प्रीति दुबे, धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। हमारा पहला प्रश्न था, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है साथियों, साइकिल का आविष्कार जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल राइस ने किया था। हमारा दूसरा प्रश्न था, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं, उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया। और हमने अगला प्रश्न पूछा था, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? इसका उत्तर है, उन्हें कुल 22 वर्षों का समय लगा। और हमारा अगला प्रश्न था, देश के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में शहीद हुए 3 युवा क्रांतिकारियों के नाम बताइए। उन शहीदों का नाम था बिनॉय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। हमारा अंतिम प्रश्न था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का क्या नाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का नाम था ठाकुरदास बंदोपाध्याय। तो ये थे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारी ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताजा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्यपुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है बैंगनी जोजो। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम एक प्यारे डॉगी के बारे में बताता है जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। पर क्यों, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम से।
1: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था।

0: वो जग गया।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
0: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
1: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
0: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
1: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो पीला हूं।
1: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं। गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो लाल हूं।

0: धांस धांस, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
2: बेचारा जोजो।
0: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
4: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए।
5: बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम मारिया मोंटेसरी। इस कार्यक्रम में विश्व की महान शिक्षाविद, चिंतक और शिक्षिका मादाम मारिया मोंटेसरी के जीवन और शैक्षिक जगत में उनके अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार से बताया गया है।
3: शिक्षा का उद्देश्य मात्र तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। ये कथन है 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का।
4: आज हम बात करेंगे एक महान विलक्षण स्त्री की, जिसने बाल मनों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा शास्त्र को एक नया आयाम दिया और शिक्षण प्रणाली में सुखद और क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया।
3: उनका नाम है मारिया मोंटेसरी। वो इटालियन चिकित्सक और शिक्षाविद थी। मैडम मारिया मोंटेसरी को क्रिया प्रधान मनोवैज्ञानिक शिक्षण एवं खेल आधारित बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के विकास का श्रेय दिया जाता है।
4: उनका पूरा नाम था मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी। मारिया का जन्म 31 अगस्त 1870 को चेरा वाले इटली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एलिसेंड्रो मोंटेसरी था, जो इतालवी सरकार के वित्त मंत्रालय में एक अधिकारी थे।
3: उनकी माँ का नाम रेनोल्ड स्टोपानी था, जो बहुत ही सभ्रांत और सुशिक्षित घराने से आती थी। मारिया के जीवन पर उनकी विदुषी माता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो जीवन भर उनके साथ रहा।
4: जब वो मात्र 4 वर्ष की थी, उनका परिवार चेरावाले से रोम आ गया। 6 वर्ष की आयु में मारिया ने स्थानीय राज्य पोषित विद्यालय में दाखिला लिया। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी।
3: उनकी विद्यालय में सह शिक्षा थी। उन दिनों सामाजिक मान्यताओं के कारण यह स्वीकार करना आसान नहीं था कि लड़कियां लड़कों से अच्छा कर सकती हैं।
4: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 1886 में रेजियो इंस्टीट्यूटो टेक्निको लियोनार्डो दा विंची नामक तकनीकी स्कूल में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने का मन बनाया। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण उन्हें बहुत हतोत्साहित किया गया
3: और आखिर आ ही गया 10 जुलाई 1896 का वो गौरवशाली दिन।
5: साथियों, आज का दिन रोम विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत हर्ष के साथ सूचित करते हैं कि मादाम मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करके इटली की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त किया।
6: बधाई हो।
7: धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।
8: धन्यवाद। इटली की पहली महिला डॉक्टर, भाई वाह, कमाल है।
6: बहुत बहुत बधाई हो।
4: अठारह सौ 1897 में वो रोम विश्वविद्यालय के मनोरोग क्लिनिक द्वारा संचालित एक शोध कार्यक्रम में शामिल हुई और इस शोध कार्यक्रम के तहत वो रोम शहर और आसपास के पिछड़े इलाकों में बने बाल गृहों का दौरा करने लगी।
3: इन बाल गृहों में सामान्य बच्चों के साथ साथ आंशिक रूप से दृष्टि बाधित शनि बाधित, लोकोमोटर बाधित और कुछ कुछ बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे भी शामिल थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके सोचने के तरीके में एक नया आयाम जोड़ दिया। एक दिन वो एक बाल गृह पहुंची। मिस्टर गैब्रियल उस बाल गृह की देखभाल करते थे।
6: आइए मारिया जी।
9: कैसे गैब्रियल, कैसे चल रहा है यहाँ?
6: जी
9: कुछ उदास लग रहे हो।
6: जी मैडम, अब आपको क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि इन दिव्यांग बच्चों की हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है।
9: और बुरी?
6: जी।
9: अब भला वो कैसे?
6: आज दोपहर के भोजन के बाद आप बच्चों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण कीजिएगा।
9: हाँ हाँ जरूर।
6: जी
3: बच्चों की कक्षा का समय समाप्त हुआ और दोपहर के भोजन का समय हो गया। भोजन के बाद बच्चों को कुछ समय का अवकाश दिया जाता था।

0: मारिया ने देखा कि भोजन के बाद कुछ बच्चों ने अपने बर्तनों को, भोजन की मेज की खुरदरी सतह को, खिड़कियों की जालियों को छूना और टटोलना शुरू किया।
1: देखा आपने मारिया जी,
2: क्या ये
1: असामान्य नहीं है? जब ये बच्चे छोटे थे तो इनकी इस तरह की गतिविधियां बहुत कम थी, लेकिन अब तो देखिए देखिए कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं, अभी वो सड़क की गिट्टियों से खेलेंगे। वो देखिए, वो बच्चा टूटी हुई दीवार से निकली ईंटों पर उंगलियां फेर रहा है। देखिए देखिए,
2: नहीं नहीं गैब्रियल, मुझे लगता है कि यह सामान्य नहीं है।
0: बाल गृह से बाहर आकर लौटते समय रास्ते में वो सोच रही थी,
2: शायद ये बच्चे चीजों को इसलिए बार बार छूते हैं क्योंकि उन्हें संवेदी उत्तेजना चाहिए, लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा करके शायद वो सीखना चाहते हैं, वो अवलोकन और निरीक्षण करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद इनके सीखने सिखाने का एक नया रास्ता मुझे मिल गया है।
3: उन्होंने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया और इस विषय पर अन्य शिक्षाविदों के विचार जाने। उन्होंने सीखने के प्रतिफल विषय पर जितना संभव हो सके पढ़ना शुरू किया और विशेष रूप से उन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरुआती फ्रांसीसी शिक्षाविद एवं बाल शिक्षा विशेषज्ञ एडवर्ड सेगुइन के अभूतपूर्व काम का 2 वर्षों तक गंभीर अध्ययन किया।
0: उन्होंने लोम्ब्रोसो और सर्गी जैसे विचारकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि की भी जानकारी प्राप्त की।
2: महसूस कर लिया है कि इन बच्चों की बहुत सी समस्याओं का निदान चिकित्सा और दवा से अधिक शिक्षा विधि में निहित है। क्यों ना उनके लिए ऐसे खिलौनों और पाठ्यचर्या का विकास किया जाए जो उनकी संवेदना को उत्तेजित करे और उनमें उत्सुकता जगाए। खिलौनों को यदि एक समस्या की तरह उन्हें दे दिया जाए तो वो खिलौना ही उनका समाधान बन जाएगा।
0: बस फिर क्या था, उन्होंने बौद्धिक रूप से दिव्यांग और अन्य बाधित बच्चों की संवेदी धारणाओं और मोटर कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक उपकरण और खिलौने बनवाए जिनमें ब्लॉक्स, छिद्रों वाला तख्ता, बीट्स, कंचे, माला, गीली मिट्टी, रंग, विभिन्न अलग अलग आकारों की खुरदरी आकृतियां, वाद्य यंत्र, लकड़ी के जोड़ने वाले ब्लॉक्स और पैटर्न्स वाले खेल मुख्य रूप से शामिल थे।
3: उन्होंने बाल गृहों के रखरखाव पर भी बहुत जोर दिया और सुनिश्चित किया कि इन गृहों के वातावरण को सुसज्जित और साफ सुथरा रखा जाए। दीवारों पर अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी समतल और खुरदरी आकृतियां बनाई जाएं। 6 जनवरी 1907 को कासा देई बम्बिनी यानी चिल्ड्रन हाउस खुला।
0: इन बाल गृहों में 3 से 8 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और शर्त ये थी कि बच्चों को साफ सुथरा बिना पुस्तकों के भेजा जाए। अब सीखने सिखाने के ये बाल गृह लोगों की उत्सुकता और आलोचना का केंद्र बन चुके थे। चाइल्डहुड हाउस के कुछ फर्नीचर ऐसे भी होते थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था, इससे मोटर ट्रेनिंग भी हो जाती थी।
3: एक दिन मारिया कक्षा में आई। नव सुसज्जित स्कूल का दृश्य ही अद्भुत था।

0: बच्चा अपने अपने कार्य में लगा हुआ था। कोई ज्ञानेंद्रियों तो कोई कर्मेंद्रियों से संबंधित अभ्यास में लगा था। कोई चित्र बना रहा था तो कोई कुछ और कर रहा था। सारा कक्ष रोचक गतिविधियों से भरा हुआ था।
1: ۱۹۰۸ की शरद ऋतु तक 5 बाल गृहों का संचालन किया गया, 4 रोम में और 1 मिलान में। इन खेल आधारित बाल गृहों में आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने असाधारण प्रगति की और जल्द ही 5 साल के इन बच्चों ने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। मोंटेसरी के इस नए दृष्टिकोण की खबर सारे यूरोप में तेजी से फैल गई। शिक्षाविद और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और बच्चों के अभिभावक खुद ये देखने के लिए पहुंचे कि वो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम कैसे प्राप्त कर रहे हैं।
2: धन्यवाद डॉक्टर मारिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि मेरी बच्ची कभी नहीं सीख पाएगी, लेकिन अब वो लिखने और पढ़ने भी लगी है।
3: धन्यवाद
4: डॉक्टर मारिया, मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। वाह, मुझे धन्यवाद के शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपके पढ़ाने का तरीका कमाल है, बेमिसाल है।
3: धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने शिक्षा का कोई नया तरीका इजाद नहीं किया। मैंने तो बस कुछ छोटे बच्चों को उनके अनुसार जीने का मौका दिया है।
2: जी,
3: मैं सोचती हूँ कि यदि इसी खेल और अनुभव आधारित विधि का प्रयोग सामान्य बच्चों में भी किया जाए तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे।
2: जी जी, धन्यवाद
3: धन्यवाद।
1: समावेशी शिक्षा की सफल शुरुआत शायद यहीं से होती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों के संदर्भ में सफलता मिलने पर मोंटेसरी ने इसी विधि का उपयोग सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी किया।
0: उनकी असाधारण सफलता को देखते हुए इटली की सरकार ने उन्हें बाल गृह संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मारिया मोंटेसरी ने बाल शिक्षा विषय पर अनगिनत लेख लिखे और एक पुस्तक भी लिखी, जिसे आज विश्व मोंटेसरी मेथड्स के नाम से जानता है।
1: 1939 में थियोसोफिकल सोसाइटी के निमंत्रण पर वो भारत आई और देश भर में बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति पर व्याख्यान दिए। उन्होंने लगभग पूरे विश्व में जाकर मोंटेसरी शिक्षण विधि का प्रचार प्रसार किया।
0: आज पूरे विश्व में मोंटेसरी शिक्षण पद्धति पर आधारित अनगिनत विद्यालय हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित सीखने सिखाने के कार्य में जुटे हैं।
1: मोंटेसरी पद्धति में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बच्चों का कार्य और ज्ञान में कुशलता प्राप्त करने के भाव को ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उनकी शिक्षण विधि के मूल स्तंभ हैं बच्चों की स्वतंत्रता, स्वशिक्षा, रोचक शिक्षण, संवेदी अनुभव, प्यार और सम्मान।
0: ६ मई ১९५२ को इस महान शिक्षा शास्त्री का हॉलैंड में निधन हो गया। मारिया मोंटेसरी को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्हें फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा गया और दुनिया के कई महानतम विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। आधुनिक शोध भी उनके नवाचार और निष्कर्षों की मूलभूत भावना को मान्यता देता है।
1: विश्व शिक्षा के क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए सदा ऋणी रहेगा।
5: आओ खेलें झटपट झटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाए हम अक्षरों की।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है।

0: जब उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो हृदय माउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाजों में अभी आपने ये गणपति वंदना सुनी। इसे चंद्रशेखर पांडे ने लिखा और धुन बनाई थी श्याम सागर ने। आइए सुनते हैं ये अगला भक्ति गीत आवाजें जोनिता गांधी और साथियों की।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। मेरा था
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए अगला भक्ति गीत आवासी दिव्या कुमार और साथियों की। इसे मुकेश मिश्रा ने लिखा है और तर्ज बनाई है काशी कश्यप ने।

यंग तरंग कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर, सुरेश वाडेकर, शब्बीर कुमार और हेमलता की आवाजों में फिल्म मरते दम तक का ये गीत। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: इस गाने के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम गणपति बप्पा मोरिया को समर्पित था।
1: रंग तरंग
0: जी विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से, उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तिरुकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनॉम घेब्रियासिस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुति कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं फिल्मकार जीपी सिप्पी को। आज इस कार्यक्रम में हमने चुने हैं उन्हीं की फिल्मों के कुछ गीत। ये पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है सजा। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था सजा। और आइए आप सुनते हैं ओपन एयर के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और गीता दत्त की, फिल्म का नाम 12 o'clock।

0: La la la la la la la la la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर।
2: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन।
1: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
3: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्मकार जेपी सिप्पी के कुछ फिल्मों से गीत सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और साथियों को। फिल्म का नाम है मरीन ड्राइव, गीतकार कमर जलालाबादी और संगीतकार एन दत्ता।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। हमने लिखा
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मोहम्मद रफी की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राज का गीत। शब्दकार शमीम जयपुरी और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म राज का एक गीत सुना। आइए सुनते हैं एम दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये दो गाना। स्वर मोहम्मद रफी और गीता दत्त के, फिल्म का नाम है भाई।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य अकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य अकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहे, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। मेरा था।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ब्रह्मचारी से युगल स्वर मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के।

0: आज बरसात का मौसम ना कहीं छाई बदरिया, फिर भी मोरे जिया रम चमके अरे थम थम कोई बिझुरिया।
1: वाह वाह वाह, तुहार जवाब नहीं

0: बैठे हो जब मीठे सपने सजाई के,
1: सपने सजाई के,
0: ऐसे में होले से पास कभी आई के, जो बिछवा पर जाई दे तोरी छम से कसम से बिना बदरा के भी दुनिया कैसे चमके।

0: जैफी सुमन कल्याणपुर, सुषमा श्रेष्ठ और प्रतिभा को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था अंदाज। इसे हसरत जयपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। इससे पहले आपने मुकेश की आवाज में फिल्म बंधन का गीत सुना था। शब्द अंजान के थे और धुन कल्याण जी आनंद जी की थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था।

0: उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो फिल्म हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाली उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सुनिए राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर के बोल, आवाज किशोर कुमार की और फिल्म का नाम सागर।

आशा भोसले की आवाज में अभी अपने फिल्म शान का ये गीत सुना। इसे आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।

इस युगल गान के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको फिल्मकार जेपी सिप्पी की फिल्मों से कुछ गीत सुनवाए।

तो प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी तो आज तो हमारे श्रोताओं ने हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी और हिंदी दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं हमें भेजी है। आप सबको भी हमारी तरफ से इन सभी खास पर्वों की ढेरों शुभकामनाएं। हाँ, हमें उम्मीद है आज आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन ये भी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अपनी व्यस्तता के साथ साथ हमारे साथ इस सुरीला सफर पर भी आप निकलने के लिए तैयार हैं, क्यों है ना? चलिए तो आज के सफर में हम संगीत के लिए क्या लेकर जाने वाले हैं बताइए। जब सफर पर निकले हैं तो गीत तो गाएंगे ही, गीत सुनेंगे भी, लेकिन संगीत के लिए हमारे पास जरूरी नहीं कि सितार हो, तबला हो या बांसुरी ही हो। कभी कभी एक गिलास और एक चम्मच भी आपके गीत की धुन बना देते हैं। कभी घड़ी की टिक टिक, आपकी कदम ताल, आपकी चाल, आपकी हंसी, ट्रेन की छुक छुक या जो पास पड़ोस में या आसपास में पेड़ पौधों की आवाजें हैं, पशु पक्षियों की आवाजें हैं, हवाओं की आवाजें हैं, वो भी हमारे संगीत का हिस्सा बन जाती हैं। तो आज के सुरीला सफर में सुनिए ऐसे ही कुछ गीत जहां आवाजें सिर्फ आवाजें नहीं रही बल्कि वे खुद संगीत बन गई है ना। तो हम तैयार हैं इस तरह के संगीत के लिए, क्यों आप भी तैयार हैं ना? तो आज की इबारत है हमारी कि क्या कभी आपने गौर किया कि कुछ गीतों में कभी घड़ी की टिक टिक, कभी किसी खेल की आवाज, कभी कदमों की आहट और कभी कोई साधारण सी ध्वनि भी उस गीत की धड़कन बन जाती है। फिल्मी गीतों के संगीतकारों ने अपनी कल्पना

शीलता से ऐसी ही आवाजों और बीट्स को गीत का हिस्सा बनाया और उन्हें संगीत पे इस तरह ढाला कि वे उससे अलग महसूस ही नहीं होती, क्यों है ना। तो कहीं टिक टिक मेरा दिल बोले मैं आपको टिक टिक सुनाई देती है, तो कहीं ढल गया दिल मैं आपको रैकेट और शटल की आवाज गीत संगीत के साथ घुलकर एक अनोखा रंग भरती हुई दिखाई देती है, सुनाई देती है। यानी संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, कभी कभी वो हमारे आसपास की आवाजों में भी छुपा होता है। तो आज के सुरीला सफर में होगा ऐसे ही चुनिंदा गीतों का जिक्र, जहां धुन के साथ साथ किसी खास आवाज को भी संगीत का हिस्सा बनाया गया उस संगीतकार के द्वारा, जो गीतों को और भी यादगार बना गया। तो ये था हमारा आज का टेक्स्ट उन सभी लोगों के लिए जो हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि हमारे वो श्रोता जो फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं उन्होंने हमारे टेक्स्ट को पढ़कर बहुत सारे गीतों का जिक्र यहाँ पर किया है, क्योंकि हमने उन्हें दो उदाहरण ऐसे गीतों के दे दिए थे जहाँ वो इस बात से वाकिफ हो गए कि आज किस तरह के गीत हम इस कार्यक्रम में लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के बोल से किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम आराधना। आपको पता है इस गाने में हमें क्या सुनने को मिलने वाला है? ट्रेन की आवाज।

जी हाँ, इस गाने में राजेश खन्ना खुली जीप में चलते हैं और अभिनेत्री यानी शर्मिला टैगोर दार्जिलिंग की जो खूबसूरत टॉय ट्रेन है जो बहुत ही प्रसिद्ध है उसकी खिड़की से उन्हें देखती है। क्यों, याद है ना आपको ये सीन? और गाने की धुन और ताल कुछ इस तरह बनाई गई है जो टॉय ट्रेन की गति और उसकी पटरियों की आवाज के साथ बिल्कुल मेल खाती है और पूरा गाना जो पर्वतीय वादियां है और चलती ट्रेन का जो सफर है उसका एहसास हमें इस पूरे गाने में मिलता है सुनने को, है ना। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, लेकिन उससे पहले आपके संदेश आप तक पहुंचाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि संगीत केवल सुरों और शब्दों का नाम नहीं, वो तो हमारे आसपास बिखरी उन छोटी छोटी आवाजों में भी छुपा होता है जो अनायास ही मन के किसी कोने को छू जाती है। जब ये ध्वनियां किसी गीत का हिस्सा बनती हैं, तो गीत केवल सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होने लगता है। शायद इसीलिए कुछ आवाजें कानों से नहीं सीधे दिल से सुनी जाती हैं। वे हमारे मन की स्थिति को बदल देती हैं। उदासी में उम्मीद, अकेलेपन में साथ और खामोशी में संवाद, तो कभी कोई मधुर आवाज बीते हुए प्रेम और यादों के दरवाजे भी खोल देती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी घड़ी की सुइयों की टिकटी, कभी मैदान में किसी खेल की गूंज, तो कभी सन्नाटे को चीरती कदमों की आहट, ये सब केवल ध्वनियां नहीं है बल्कि जीवन की लय है। भारतीय सिनेमा के जादुई दौर में फिल्मी गीतों के संगीतकारों ने अपनी अनूठी कल्पनाशीलता से इन्हीं साधारण आवाजों और बीट्स को गीतों का अहम हिस्सा बनाया। उन्होंने उन ध्वनियों को संगीत के ताने बाने में इस तरह पिरोया कि वे गीत में अलग महसूस ही नहीं होती बल्कि उनकी आत्मा बन जाती है। इन प्रयोगों से ये साफ होता है कि संगीत केवल बंद कमरों या स्टूडियो में तैयार नहीं होता बल्कि ये हमारे जीवन के हर हिस्से में सांस लेता है। कदमों की आहट से लेकर हवा की सरसराहट तक हर ध्वनि में एक लय है। जरूरत है तो बस संगीतकारों जैसी एक संवेदनशील सोच और पारखी कान की जो शोर के बीच से भी एक सुरीली धुन को खींच लाए और उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दे। कितनी खूबसूरती से आपने अपनी बात रखी है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत फिल्म अलबेला से, जिसका जिक्र हमने अपनी इबारत में किया था। आवाजें लता मंगेशकर और चितलकर यानी सी रामचंद्र की, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, सी रामचंद्र का संगीत है और इस गाने में क्या सुनाई देता है? हाँ, घड़ी की टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक जो हमारे घर में भी हमें सुनाई देती है और एक मधुर संगीत खासतौर से रात के सन्नाटे में बहुत ही खूबसूरत संगीत हमें देती भी है ये घड़ी की टिक टिक।

लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजें थी, फिल्म का नाम था अलबेला। गाने के आरंभ में आपने घड़ियों की टिक टिक टिक टिक सुनी थी ना, सुनाई दी आपको। हाँ, कभी कभी इस संगीत को बहुत गहराई के साथ सुनना पड़ता है क्योंकि कुछ इफेक्ट्स बहुत ही हल्के से इस्तेमाल किए गए हैं। हाँ, कुछ का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है तो शायद उसे इतने गौर से सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ इफेक्ट्स बहुत ही गौर से सुनने पर पता चलते हैं कि हाँ, ये इफेक्ट हमने सुना। और अब दो सवाल हमेशा की तरह आपसे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद के वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। हो सकता है आप वाद्य यंत्र नहीं बजाते हो या नहीं शौक रखते हो, लेकिन फिर भी जब आप कोई गीत सुनते हैं, आपने कोई गीत सुना होगा तो आपको लगा होगा कि यहाँ सितार का प्रयोग बहुत अच्छा हुआ, तबले का प्रयोग हुआ, या गिटार बहुत अच्छा लगा, या जल तरंग बहुत अच्छा लगा, या जैसे कि आज हम विषय लेकर आए हैं कुछ ऐसे वाद्य यंत्र जो तबला, सितार, ढोलक इनसे अलग होकर बजाए जा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र आपको पसंद है, बांसुरी, हारमोनियम, जो आप बजाते भी हैं या पसंद करते हैं। कभी कभी ये होता है कि जब हम घर में गाना गाते हैं ना, या बाथरूम सिंगर बन जाते हैं, तो टीन, कनस्तर, बाल्टी, झाड़ू और भी न जाने क्या क्या चीजों को हम अपना वाद्य यंत्र बना लेते हैं, है ना। होता है ना ऐसा आपके साथ भी, कभी हुआ होगा जरूर। याद कीजिए वो दिन जब आपने टीन, कनस्तर, बाल्टी या किसी भी ऐसी चीज को, मेज को ही अपना वाद्य यंत्र बना लिया और गाना गाना शुरू कर दिया। और हमारा दूसरा सवाल कि आपको अपने आसपास की कौन सी ध्वनियां प्रभावित करती हैं जो प्रकृति में है, या यूं कहूं कि ऐसी कौन सी ध्वनियां जो आपको पसंद आती हैं या परेशान कर देती हैं। कम से कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को हम शामिल कर सके उनके विचारों के साथ। और आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना। आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, शब्दकार हसरत जयपुरी है, संगीतकार शंकर जयकिशन है। इस गाने में शंकर जयकिशन ने खास साउंड इफेक्ट्स का बहुत ही अनोखा और खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। आपने सुना है ना ये गीत, जब बिजली कड़कने की आवाज आती है तो सिर्फ एक इफेक्ट नहीं लगती बल्कि गाने की जो शुरुआती बोल है, जहां रफी साहब कहते हैं कि बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर गए, और उसके साथ ही बिजली कड़कने की और तेज बारिश की आवाज आती है, और लगभग ये आवाज पूरे गाने में हमें महसूस होती भी है। तो आप भी महसूस कीजिए इस आवाज को।

0: कुछ ना कहेंगे वो जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे वो
1: मोहब्बत की कसम
0: मोहब्बत की कसम
1: मोहब्बत की कसम
0: मोहब्बत की कसम।

मोहब्बत की तरफ।

एक श्रोता ने लिखा है कि संगीत जो हमें दैवीय शक्ति से बांधता सा लगता है, जैसे ही किसी जंगल में आप प्रवेश करते हैं जंगल की आवाज अलग अलग संगीत पैदा करती है। नदियों के पानी में अलग संगीत होता है, कल कल का संगीत बहुत मीठी मीठी है। संगीत बनने की कहानी रात के बहते हुए खामोश दरिया में चांद की किरणें खेलती रहती है और मन के बियाबान तारों में कुछ धुन ही बजने लगती है। जो कोई हुक हो जी मैं तो गूंज उठेंगे, ये विरही सुर कोशिशों साधे नहीं जाते। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है आज गीत की धुन के साथ विविध आवाजें भी अपने अस्तित्व का परिचय करवाएंगी। इस अनोखी सुंदर थीम को आज गणपति बप्पा का आशीर्वाद भी है। गणराज रंगी नाचतो इस मराठी गीत में बाल गणेश जी ने पैरों में पहनी यानी घुंघरू की रिमझुन रिमझुन ये बेहद सुरीली आवाज दिल को मोह लेती है। और आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र भी किया है, हो सकता है आपकी पसंद हमारी आज की लिस्ट में शामिल हो। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बिल्कुल नवीन है लेकिन बहुत ही रोचक है। गीतों में संगीतकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोग, उनकी कल्पनाशीलता जिससे गीत शानदार हो गए। तरह तरह की बीट्स के प्रयोग ने गीत को कर्णप्रिय बना दिया है। ऐसे ही बहुत सारे गीतों का जिक्र आपने भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मुझे चिड़िया या कोई भी गीत में पक्षियों की आवाज बहुत प्यारी लगती है, जैसे कोयल बोली दिल कहीं रुक जा रे रुक जा, पंछियों की आवाजें और चुन चुन करती आई चिड़िया इस तरह की आवाजें इन्हें बहुत पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में सभी तरह के वाद्य यंत्रों के साथ ही आसपास मौजूद आवाज का प्रयोग कर गीतों की प्रस्तुति को लाजवाब बनाया गया है। पंख होती तो उड़ाती रे गीत में पंछी की मधुर आवाज के साथ पंछी की तरह उड़ते हुए पंख फैलाते हुए किया गया नृत्य बहुत ही आकर्षक भी लगता है। साथ ही संगीत का लाजवाब धुन आसपास के वातावरण को गुंजायमान भी कर देता है। वहीं शुदा लिखते हैं कि सफर में आज गीतों में छुपे एहसास और दिल में भावों को जगाते हुए उन आवाज को सुनना, जैसे हवा की सरसराहट, दरवाजे की आवाजें, सांसों की धड़कन, कुछ मंदिरों की घंटियां, बांसुरी की, समुद्र की डरावनी लहरें, लहरों की आवाजें और धीरे धीरे गुनगुनाने की आवाजें, ये सभी आवाजें मन के हर भाव को जीवंत कर देती है। जीवन का सुख दुख, हंसना रोना, डरना सहम जाना आदि सभी नवरसों जो जीवन में समाहित है वो सभी हमारे साथ है और ये सभी हमें प्रभावित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इन गीतों के साथ हम भी खो जाते हैं उन खास संगीत की ओर जो हमारे संगीतकारों ने प्रयोग के तौर पर डाले होते हैं। जैसे कि अगला गीत हम सुनने वाले हैं फिल्म शोले से किशोर कुमार की आवाज में और इनका साथ दे रही हैं हेमा मालिनी। जब वो कहती है चल धन्नो तो अब आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और राहुल देव बर्मन का संगीत है। इस गाने में आपको चाबुक की आवाज, घोड़े की टापों की आवाज, धर्मेंद्र के गिरने पर साइकिल की आवाज, साइकिल की घंटी की आवाज, बहुत सारे प्रयोग इस गीत में किए गए हैं और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी इन गीतों में ये सभी धुनें सुनाई देंगी।

ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब पेशन से गाड़ी छूट जाती है तो फिर एक दो तीन हो ही जाती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको जाना है कहीं और आप भागते दौड़ते स्टेशन पहुंचे हैं और आपके सामने से ट्रेन निकल गई है, और वही हुआ जो इस गाने में कहा जा रहा है कि एक दो तीन हो जाती है। हमारे सवाल एक बार फिर से, हमने आपसे पूछा था कि आपकी पसंद के वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, जो रूटीन के वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि अगर आप हारमोनियम, तबला और बांसुरी, बहुत सारे माउथ ऑर्गन, सितार, गिटार, बांसुरी, क्या क्या पसंद करते हैं, अगर आप बजाते हैं या बजाना पसंद करते हैं, संगीत के शौकीन हैं तो। लेकिन इसके अलावा कई बार हर आदमी अपने जीवन में जब कोई गाना गाना पसंद करता है, बाथरूम में, कमरे में, एकांत में, तो टीन कनस्तर, जो हाथ में आता है, बाल्टी, झाड़ू, उसे भी वाद्य यंत्र बनाकर हम गाना गाने लगते हैं। भाई हमने तो ऐसा कई बार किया है कि टीन कनस्तर बजाकर ही ताल मिला ली है और गाना गा दिया है। तो आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा, याद कीजिए इन पलों को। या आपके बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो वो बात हमें बताइए, कम से कम शब्दों में लेकिन रोचक तरीके से। और हाँ, जब बात चली है ध्वनियों की, तो आपको अपने आसपास की कौन सी ध्वनियां प्रभावित करती हैं, यानी कौन सी ध्वनियां जो पसंद आती हैं और कौन सी ध्वनियां आपको परेशान करती हैं आपके घर के आसपास की। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज आपने बहुत ही खूबसूरत विषय उठाया है, संगीत में आवाजों की मौजूदगी को महसूस करने का। गीत की दुनिया में सुर और साज की अपनी खूबसूरती है, लेकिन कभी कभी कोई अनगढ़ सी जानी पहचानी आवाज भी गीत को ऐसी आत्मीयता दे जाती है कि वो बरसों तक दिल में बसी रहती है। कदमों की आहट हो, घोड़े की टाप हो, या रेल की चुक चुक, घड़ी की टिक टिक हो, या पायल की रिंझुन, जब ये ध्वनियां किसी धुन में शामिल होती है तो गीत सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। हर आवाज अपने साथ कोई दृश्य, कोई मौसम, कोई स्मृति ले आती है। संगीत केवल वाद्य यंत्रों से नहीं बनता, वो तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के शोर में भी कहीं चुपचाप सुर तलाशता रहता है। बस उसे पहचानने के लिए कान नहीं, एक संवेदनशील दिल चाहिए। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक छोटा लिखते हैं कि भारतीय सिनेमा के संगीतकारों की सबसे बड़ी खूबी रही है कि उन्होंने स्टूडियो की चार दीवारी से बाहर निकलकर हमारे दैनिक जीवन के शोर को सुर में तब्दील कर दिया। जब किसी गीत में कोई सहज आवाज, चाहे वो खेल की हो, रसोई की हो, किसी वस्तु की हो, शामिल होती है तो वो केवल एक धुन नहीं रहती बल्कि दृश्य को श्रोता के जहन में जीवंत कर देती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी शॉप रोड टच है तो पूरा दिन वाहनों की आवाजाही रहती है, तो आवाजें आती है, अच्छा भी लगता है। हमें रेडियो सुनने का शौक नहीं है तो पूरा दिन वाहनों की आवाज से हम तंग आ जाते हैं। और अच्छा, आपका कहना है कि आपके आसपास जो ये शोर आता है उससे आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल होते हैं इस शोर से हम परेशान। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीत संगीत केवल सुरों का संगम नहीं बल्कि हमारे आसपास की जीवंत ध्वनियों का खूबसूरत विस्तार है। फिल्मों में संगीतकारों ने अपनी अद्भुत कल्पनाशीलता से घड़ी की टिक टिक, खेल के मैदान की हलचल या कदमों की आहट जैसी रोजमर्रा की आवाजों को धुनों में ऐसा पिरोया कि वे गीत की धड़कन बन गई। चाहे वो टिक टिक टिक मेरा दिल बोले हो या दिल की धड़कन बना हुआ कोई गीत, घड़ी की आवाज हो या ढल गया दिन, हो गई शाम में बैडमिंटन की रैकेट शटल की लय, ये ध्वनियां संगीत से अलग नहीं बल्कि उसका प्राण महसूस होती है। सच ये कि संगीत सिर्फ वाद्य यंत्रों से नहीं, हमारे परिवेश की हर धड़कन में छुपा है। बस उसे महसूस करने वाले कान और सुनने वाले बुनने वाले दिल की जरूरत है। बहुत सुंदर इबारत हमारे श्रोताओं ने लिखी है, तो चलिए सुनते हैं ऐसा ही गीत जिसका जिक्र हमने भी अपनी इबारत में किया था और अभी भी इन श्रोता ने भी किया है। फिल्म हम जोली का गीत है, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ, आनंद बख्शी की बोल है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है। और इस गीत में क्या है ये आप जानते हैं। रैकेट और शटल की आवाज, है ना, सुना है आपने कितने तरीके से संगीतकार ने इस गाने में इस धुन को पिरोया है।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि संगीत में साज तो कई तरह के होते हैं, लेकिन जब रोजमर्रा की कोई साधारण सी आवाज किसी गीत में ताल बन जाती है तो गीत यादगार बन जाते हैं। आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और वही बात आपने भी कही है कि पूरा दृश्य चलने लगता है और सच्ची दुनिया बाहर से नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की रोजमर्रा की टिक टिक चुक चुक और छम छम से ही छुपी होती है। बस इन्हें सुनने और महसूस करने के लिए एक संगीत प्रेमी दिल और दिमाग चाहिए होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक शोधा लिखती है कि नित्य नवीन विषय की निर्मात्री का नवीनतम अध्याय प्रशंसनीय, उल्लेखनीय और विचारणीय है। सुरीला सफर मंदाकिनी जी के निर्देशन में नई ऊर्जा से संचालित हो रहा है। नियमित श्रोताओं को स्फूर्तिवान रखने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। चित्र विचित्र वस्तुओं के ध्वनियों से गूंजती आज की सुरीला सफर का संगीतमय आनंद बना रहेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय हिंदी फिल्मों के संगीत में अलग अलग संगीतकारों ने पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों के अलावा दूसरी अलग अलग चीजों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को अपनी संगीत रचनाओं में इस तरह प्रयोग और ऐसा तिलिस्म रचा जो कि कालजी रचनाओं में शामिल हो गया। आपने भी कुछ गानों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी ये पंक्तियां संगीत को देखने का एक बेहद जादुई और अलौकिक नजरिया देती है। ये बात हमें एहसास कराती है कि महान संगीतकार केवल वाद्य यंत्रों के मोहताज नहीं थे बल्कि वे हमारे आसपास बिखरी रोजमर्रा की आम आवाजों में भी संगीत ढूंढ लिया करते थे। घड़ी की सुइयों की टिक टिक को दिल की धड़कन बना लेना या खेल के मैदान की टुक टुक को दिन में ढाल देना उनकी अद्भुत कल्पनाशीलता और रचनात्मकता की पराकाष्ठा है। संगीत सिर्फ कानों से सुना नहीं जाता बल्कि वो हमारी जिंदगी की हर हलचल में छुपा होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि महान संगीतकार ओपी नैयर साहब ने अपने बनाए बहुत से गीतों में घोड़ों की टापों की आवाजों को शामिल किया और वो प्रयोग भी कामयाब रहा। और आदि बर्मन साहब ने तो कंगी, टिन का डिब्बा, शीशे का गिलास, झाड़ू सभी बजाकर मधुर संगीत का निर्माण किया और वो भी सफल हुए। जितना हमें पता है वो सब आप सभी से साझा किया। अब देखना यह है कि आप अपने पिटारे में से कौन सी जानकारियां लेकर आती हैं। भाई हमारी भी जानकारी वही है जो आपकी है, लेकिन हाँ हम इधर से आप तक पहुंचा रहे हैं और आप उधर से हम तक पहुंचा रहे हैं। तो चलते हैं अगले गीत की ओर। मन्ना डे की आवाज, फिल्म का नाम सफर, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन और यहाँ पर आपने देखा होगा चप्पू की आवाज आती है, पानी की आवाज, किस तरह से नाव चल रही है और ये आवाज हमें साफ साफ सुनाई देती है इस गीत के जरिए।

बता दें कि आज की उद्घोषिका मंदाकिनी जी और सभी को नमस्कार। आज का विषय बिल्कुल नवीन लेकिन बहुत ही रोचक है, हमें पसंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमने बचपन में परात को डफली बनाकर डफली वाले डफली बजा गीत की नकल की। जब मम्मी घर में नहीं होती थी, बस एक प्यारी सी दोस्त और हम होते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही होता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि डीजे की आवाज मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। अच्छा, एक श्रोता कहते हैं हमारे घर के पास ही दुर्गा मंदिर है, सुबह सोकर उठने से पहले ही मंदिर की घंटियां हमें जगा देती हैं। बहुत ही मधुर स्वर में घंटियों की आवाज आती है और हम उठते ही ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर, यानी हमारे सवालों का जवाब हमारे श्रोता दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि चाय के होटल पर पहले बैठते थे तो चाय आने में समय लगता था, तो टेबल बजाना चालू कर देते थे और उसके साथ गीत भी गाना शुरू हो जाता था। बिल्कुल ये होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो दो डब्बे रख कर तबला बजा लेते हैं। वीणा के तंतु द्वारा उत्सव उत्पन्न झंकृत ब्रह्मांडमीय नाद अति सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि ढोलक बजाना आए या ना आए, पर ढोलक देखने के बाद तो दो चार थाप हम भी लगा ही लेते हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि पूरब और पश्चिम फिल्मों में ओम जय जगदीश हरे आरती में घंटी और शंख ध्वनि, ये आवाज हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बांसुरी की आवाज मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगती है, उसमें न जाने कैसी सादगी और मिठास है।

यही नहीं, राहुल देव बर्मन साहब ने तो बहुत ज्यादा पियो कि कहीं चम्मच से भी लाजवाब संगीत उन्होंने बनाया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमें थाली, चम्मच और मेज ये वाद्य यंत्र बहुत पसंद आते हैं। वही एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट बहुत अच्छी लगती है, स्वाभाविक भी है, ये चहचहाट तो सभी को मधुर लगती है, लेकिन ये मधुरता कब तक हमें मिलेगी पता नहीं, जब तक मिले भगवान जी को समर्पित और नमन करूंगी। वही एक श्रोता लिखते हैं कि गली मोहल्ले के छोटे छोटे छोटे मोटे फंक्शन में ढोलक एक आम बात हुआ करती है और कुछ लेडीज एक इकट्ठी होकर भजन कीर्तन या अन्य किसी प्रकार का कार्यक्रम करती है, ढोलक उसमें जरूर बजती है, उसमें मन भी लग जाता है और ढोलक बजाने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही हमारे रोजमर्रा के वाद्य यंत्र भी होते हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप अपने बाइक पर गए हो या गाड़ी में गए हो, दोपहिया वाहन पर गए हो या साइकिल पर गए हो और टायर पंचर, तो ऐसा ही गीत आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं फिल्म टैक्सी ड्राइवर से, जहां किशोर कुमार और साथियों ने इस गीत को गाया है। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, सचिन देव बर्मन की धुन है, और इसमें यही होता है कि टायर पंचर होता है और फिर उसमें हवा भरी जाती है। बहुत ही ध्यान से जब आप इस गीत को सुनेंगे तो ये संगीत भी आपको सुनाई देगा।

0: कर जो भाई उससे अपने जान और दिल लुटा,
1: पार्टी कर जो भाई उससे अपने जान और दिल लुटा।
0: अरे जो बचाए मात उसको जूतियों का हार दे,
1: जो बचाए मात उसको जूतियों का हार दे। बात कर जो खाए उससे अपने जान और दिल लुटा, जो बचाए मात उसको जूतियों का हार दे। चाहे कोई खुश चाहे गाने या हजार दे,
0: अरे मत राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे।
1: चाहे कोई खुश चाहे गाने या हजार दे, मत राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश चाहे गाने या हजार दे,
0: मत राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। मत राम
1: मत राम
0: मत राम
1: मत राम
0: मस्त मस्त मस्त मस्त मस्त मस्त मस्त राम
1: मस्त राम
0: मस्त राम
2: जी। तो ये मस्ती भरा गीत अभी आपने सुना। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो हमें प्रॉपर ढोलक बजाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम तबला और डोर बजा लेते हैं, ढोलक बजा लेते हैं। इसके अतिरिक्त कुकर की जब सीटी आती है या टॉवल से भी गिटार बजाने का अभिनय कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि इन्हें गिटार और बांसुरी जो है बहुत पसंद आती है। वही एक श्रोता को हारमोनियम ढोलक तबला मजीरा मंदिर में सत्संग में बहुत साल तक बजाए है। अभी भी 2 महीने पहले रामकथा का आयोजन किया था, तब स्टेज पर पूरे 9 दिन पखावज मंजीरे बजाए, क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे बांसुरी और

सैक्सोफोन वाद्य यंत्र बहुत पसंद है और एक श्रोता को मुझे सभी वाद्य यंत्र पसंद है लेकिन सैक्सोफोन और सितार को जिस तरह हमारे फिल्मी गानों में बजाया गया है तो वो कालजयी बन गए हैं और सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि मुझे गानों में बांसुरी की आवाज बहुत अच्छी लगती है, पक्षियों का कलर बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो जब ज्यादा चींची करती है तो गुस्सा भी आने लगता है। अरे क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं हारमोनियम बजाता हूँ क्योंकि रीड वाला वाद्य यंत्र है अतः इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड भी बजाता हूँ। वैसे मुझे संतूर की आवाज भाती है, दिल दिमाग को झंकृत कर देती है। वहीं एक श्रोता को घोड़े की टापों की आवाज अच्छी लगती है और एक श्रोता ने लिखा है कि बांसुरी की आवाज और टेबल को बजा के हम तो गीत गा लेते हैं और कभी कभी ढोलक की आवाज के साथ भजन भी हम गाते हैं जो कि अच्छे लगते हैं। एक श्रोता को प्रकृति को सुकून देने वाला संगीत सुनना है तो सुबह 5 बजे उठकर बाहर चले जाइए, वहाँ बहुत सारे पेड़ और चारों तरफ हरियाली होगी, पानी से भरा तालाब फिर नदी होगी तो आपके मन को कितनी शांति मिलेगी ऐसा जानते हुए जब आप संगीत सुनेंगे तो उस संगीत का तो कहीं उदाहरण दूसरा मिलेगा ही नहीं, ऐसा आप लिखती हैं। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम पाकीज़ा, गीतकार कैफी हाजमी है, संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब है। इस गाने के अंत में जो गाड़ी की आवाज है यानी सीटी जो बजती है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है और दिल को एक अलग ही भाव पैदा कर देती है।

0: दोस्तों, समय अभाव के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए और इसी कारण गाने के अंत में जो ट्रेन की आवाज हमें सुनाई देती है वो आपको नहीं सुनवा पा रही है। फिलहाल सुरीला सफर कार्यक्रम का अब वक्त खत्म हो चला है।
1: ये प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दो बज चुके हैं, आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत।

आप सुन रहे हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म की ये भक्ति वंदना। सुखविंदर सिंह ने इसे गाया था, प्रशांत इंगोले के शब्द थे और धुन थी शेष पुरानिक की।

आपको सुनवा रहे हैं मुकेश का गाया हुआ ये गीत। इंदिवर के शब्द हैं, धुन कल्याण जी आनंद जी की, फिल्म का नाम सरस्वती चंद्र।

0: मुकेश जी गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 2:10 होने को हैं, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। आज हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। श्री शाह ने कहा कि ब्रिटिश कानूनों की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाना सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदी और अन्य सभी भाषाएं तकनीकी विकास के सुनहरे दौर से गुजर रही हैं। श्री शाह ने कहा कि मौजूदा समय में AI भारतीय भाषाओं के आसान अनुवाद के अवसर दे रहा है।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: आज देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। इस अवसर पर आज भोपाल स्थित भारत भवन में 2 दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम 4 बजे करेंगे। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में देशभर के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार और कवि मातृभाषा, संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्यों पर संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में भी 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान शुरू होगा। इसके तहत उज्जैन में 17 सितंबर को शाम 7 बजे भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान क्षिप्रा नदी के विभिन्न घाटों और महाकाल महालोक क्षेत्र में 25 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। अभियान का उद्देश्य जनभागीदारी के जरिए सेवा, सुशासन और जन कल्याण का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। उधर मैहर में जिला भाजपा कार्यालय में स्थानीय विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी और भाजपा जिला अध्यक्ष कमलेश सोहाने ने पत्रकार वार्ता के जरिए सेवा संकल्प अभियान की जानकारी दी। श्री चतुर्वेदी ने बताया कि इस दौरान रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता सहित धार्मिक स्थलों पर दीप प्रज्वलन के व्यापक आयोजन किए जाएंगे। भगवान श्री गणेश की आराधना का 10 दिवसीय पर्व आज गणेश चतुर्थी के साथ प्रारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत में सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कामना की कि ये पवित्र त्यौहार सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा। इधर प्रदेश में भी गणेशोत्सव उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में आज तड़के भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल का गणेश चतुर्थी के अवसर पर विशेष श्रृंगार किया गया। आगरमालवा जिले में घरों, दफ्तरों, प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के साथ ही गणेश उत्सव शुरू हो गया है। जिले में अनेक स्थानों पर पांडाल बनाकर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है। प्रदेश के गुना जिले में भी 100 से अधिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं स्थापित होंगी। वहीं पन्ना में गणेश चतुर्थी पर विश्व की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला की प्रतिमा का टाइगर रिजर्व के अकोला गेट पर अनावरण हुआ। आज हरतालिका तीज पर्व भी है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि, अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा करती हैं। वहीं नव युवतियां भी अच्छे वर और अच्छे वर की कामना के लिए तीज पर्व मनाया करते हैं। आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में हरतालिका तीज पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल से वर्चुअली गुना में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कल पन्ना

0: आयोजित एक कार्यक्रम में किलकिला नदी में धर्मसागर तालाब के पुनर्निर्माण कार्यक्रम का लोकार्पण किया और कटनी में पीएम स्वनिधि योजना के तहत पिछले 10 दिनों में 112 प्रकरणों में ऋण राशि वितरित की जा चुकी है। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान। देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। और अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। एक रिपोर्ट।
3: 2 दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान लोगों के विकास और ग्लोबल साउथ के हितों को विशेष महत्व दिया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेलन के पहले ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं आम लोगों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी दिया गया। इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने त्रिकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स की विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है, विरोध प्रदर्शनों में भी गिरावट आई है और पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है। रिपोर्ट में चीन के साथ समग्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा LSE और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 संयुक्त शस्त्र ब्रिगेड के आकार के बल तैनात किए गए हैं। भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है, जिससे स्थिरता आई है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल की मांगों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने हिंदी दिवस के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया।
4: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकन अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है, वो सभी को मैं मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
2: गृहमंत्री ने वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
4: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागरूक किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोह में गाने का काम किया।
2: दो दिन के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और महाराष्ट्र के समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपराओं के बीच संबंध को उजागर करना है। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, बैंकों और मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
5: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें, बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें, क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है।

0: सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के जल विद्युत अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 10 नगर निगमों में से भाजपा जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित 6 में आगे है, जबकि कांग्रेस पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भूमि मालिकों की जानकारी के बिना किए जाने वाले फर्जी भूमि पंजीकरणों को रोकने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू कर रही है। ये संपत्ति पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। केंद्रीय विद्युत और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा मंचों की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। ऊर्जा प्रचुरता पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक 14 से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के अनेक जिलों में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नौसारी और वलसाड़, इन 5 तटीय अंचल अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर और सूरत समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मानसून की नई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है, जिससे किसानों में खुशी की लहर छाई है। राज्य के 35 बांध अपनी पूरी क्षमता से भरने के कारण हवाई अलर्ट पर है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भगवान गणेश की पूजा की।
2: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, उत्साह, उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूं। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
0: गणेश चतुर्थी की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार बंद है। कम्युनिटी बाजार में आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन शाम 5 बजे से कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराया। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष

0: 25 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान और देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुना। स्वर मोहम्मद रफी का था फिल्म आरजू के लिए। यह आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीत शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

0: जब उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिना मॉस में लाइन लगी होती
1: उजाली उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
2: चिट्ठी न कोई संदेह
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: शंकर जयकिशन की संगीत निर्देशन में हम आपको शैलेंद्र का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम संगम, आवाज मुकेश की।

0: है रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य अकादमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य अकादमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती है जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती है सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती है मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। मेरा था
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत राजा मेहदी अली खां का लिखा हुआ, संगीत में ढाला है मदन मोहन ने, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है आपकी परछाइयां।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ

कार्यक्रम का अगला गाना मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आरती से हम लिया है। इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन रोशन की है।

सदाबहार नगमी कार्यक्रम का आप सुनिए ये आखिरी गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस।

इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: सभी सखियों को, सभी सहेलियों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, और दीपा आपको भी नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां।
1: जी बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं स्वीकारते हैं और अपने सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को और चंचल आपको भी नमस्कार, हेल्दी नमस्कार। हाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं क्योंकि बहुत खास दिन है आज।
0: बिल्कुल, मुझे इंतजार था कि आपका हेल्दी नमस्कार क्यों नहीं है।
1: वो कैसे छूट सकता है, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। सब चीज चलती रहेंगी, मतलब हर चीज, परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, कभी खुशी वाले दिन होंगे जैसे आज का दिन है।
0: हाँ,
1: त्योहार आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन
0: इनमें सेहत बड़ी जरूरी है, इसीलिए आपके हेल्दी नमस्कार का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। चलिए विषय बताते हैं आज के। आज कथा सुबह में हमारी सखियां और सखा सुनेंगे कहानी बड़े भाई साहब, इसका पहला भाग
1: जी।
0: इसके अलावा आज प्रादेशिक व्यंजनों में हम कश्मीरी व्यंजन की बात करेंगे, नदरी यखनी यानी कमल ककड़ी। उसे कश्मीरी भाषा में नदरी यखनी कहा जाता है। तो इससे क्या क्या बन सकता है, इसके क्या क्या व्यंजन बनते हैं, हमारी सखियां हमारे साथ जरूर साझा करेंगी। और खुशी का दिन है भाई, स्पेशल दिन है, खास दिन है, बोलो क्या है ये आप बताइए।
1: देखिए आज है हिंदी दिवस। और सुबह से हमारे सभी श्रोता सुन भी रहे हैं कुछ खास हिंदी के, हिंदी से, शुद्ध हिंदी से भरपूर वाले जी, शब्दों से भरपूर वाले गीत हम भी यहाँ पर कुछ आपके लिए प्रस्तुत करेंगे और जानेंगे कि क्या इसकी विशेषता है। और साथ में और भी एक खास बात है जो
0: देश
1: आ रहा है,
0: क्योंकि आज बहुत खास दिन है ना दीपा, और ये मेहमान तो हम सबके घर में आते हैं, लेकिन आज जो आने वाले हैं वो सबसे खास मेहमान है, क्योंकि वो है विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति, हमारे गणपति बप्पा। आज उनके आगमन का दिन है।
1: बिल्कुल, और चंचल सच कहूं तो गणपति उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो पल है जब हम अपने घर में सिर्फ बप्पा की मूर्ति नहीं लाते हैं, हम लाते हैं खुशहाली। तो वो जो हंसी पूरे साल घर में गूंजती रहती है, हम लाते हैं मंगल कामनाएं कि हमारा घर, हमारे अपने, हमारे खुश रहें, सलामत रहें। गणपति उत्सव में हम खुशहाली और मंगल कामनाएं घर पर लेकर आते हैं।
0: बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो एक रीति रिवाज जिसे हम कहें कि सब लोग छोटी छोटी सी मूर्तियां अपने घर में लेकर आते हैं और बप्पा आते हैं, तो सिर्फ उनकी एक मूर्ति नहीं आती है, घर में खुशियों की रोशनी आती है, भरोसा आता है कि अब जो होगा सब ठीक होगा, बप्पा सारी कहते ना कि तकलीफों को, परेशानियों को हर लेंगे। आंगन में रोशनी आती है, दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता है बप्पा के आने से।
1: ये बात तो
0: बच्चों की जो हंसी है वो थोड़ी तेज हो जाती है, और फिर भाई बच्चों की हंसी या खुशी है या हम सब बड़ों की भी इसलिए भी तेज होती है कि रसोई से मोदक की खुशबू आने लगती है, और ये कह सकते हैं कि एक खासियत है इस पर्व की और असली रोशनी भी है। तो हम सभी बोले ना, दिल से सब मिलकर बोलते हैं ना, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
1: और बप्पा के आने का मतलब सिर्फ दिए या लाइटें, मतलब कि घर में रोशनी है, सिर्फ ये नहीं, जब मन रोशन होता है ना चंचल, तब हमारी पुरानी नाराजगी भी हम भूल ही जाते हैं कहीं। सही बात। और जब पूरा परिवार एक साथ आरती भी खड़ा होता है,

0: या हमारी सोसाइटी में जब सब एक साथ खड़े हाँ। तो सच में ऐसा लगता है पप्पा हमें यही सिखाने आए हैं कि शुरुआत करने से कभी मत डरो और हर नया काम शुभ है अगर आपकी नीयत साफ है।
1: तो बस पप्पा के आज का जो दिन है इसमें हमने घर को तो खूब सजाया ही है, क्यों ना अपने मन का भी कोना हम थोड़ा सा साफ कर लें, उसे सजा लें प्रेम की भावना से, अच्छाई से, और पुराने जितने भी मतभेद हैं उसे भुला कर हम भी इस खुशी के उत्सव में शामिल हो जाएं। और महाराष्ट्र में तो 11 दिन तक ये उत्सव चलने वाला है, हम भी शामिल होते हैं।

Sambungnya

0: अभी तो ये तो हुआ गणपति उत्सव के रंग में डूबा हुआ जी, और अब बारी है कार्यक्रम में कथा सुधा की। तो सुनते हैं कहानी।
1: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
0: कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
2: मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द का वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिनमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कभी कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर वार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोष मिश्रित शब्दों में मेरा सत्कार करें।
3: अरे इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, एरा गैरा नथू खैरा सभी अंग्रेजी में विद्वान हो जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं तुम कितने घूंगा हो भाई कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं, तुम अपनी आंखों से देखते हो मगर नहीं देखते जो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहा हूं, उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूं। पर तुम कैसे आशा कर सकते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो दो ही तीन साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो?
2: मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। छटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे हाथ मुंह धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वो दांव घात, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया, भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी वो घोर तपस्या कहां गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में प्रथम भी हूं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हां, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी ससहमत बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े।
3: देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजों को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया, कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी जो चाहे करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, उसे यह अनुमान था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में ये हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरुख ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो, अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर ना जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा, जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं, आठ आठ हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी सातवें की जगह हेनरी आठवां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट, सिर्फ भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है, इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते। एक ही नाम के पीछे दोयम तेयम चहारम पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पेर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा, इस रेखा पर वो लंब गिरा तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना तो ये सब खुराफात याद रखनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो चार पन्नों से कम ना हो। अब कॉपी सामने खोले कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। उस जरा सी बात पर चार पन्ने कैसे लिखे, जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे चार पन्ने में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत समझता हूं। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि दुरुपयोग है, व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया। हम जो चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपके पन्ने चार रंग में पड़ेंगे चाहे जैसे लिखिए और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है, उल्टी बात या नहीं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं, संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे।
2: स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर भी यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा यही ताज्जुब है।
0: कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, छोटे भाई जयंत पात्रिकर, बड़े भाई साहब जी श्याम, संकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति

0: जब उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो इधर माउस में लाइन लगी होती
1: उजाली उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ
2: चिट्ठी न कोई संदेह
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इस संदेश से पहले सखियों आपने कथा सुधा में सुना बड़े भाई साहब की पहली कड़ी और अब एक अंतराल का समय हो चुका है।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और इस अंतराल से पहले हमने सुनी कहानी, और उससे पहले हमने बात की गणपति उत्सव की। बहुत सारे संदेश हमारे सखियों ने भी भेजे
1: जी, बहुत सारे आए हैं,
0: तो उनके संदेश भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक गीत सुन लें।
1: चलिए

0: बहुत ही खूबसूरत गीत और वैसे ही खूबसूरत संदेश भी हमें मिले हैं,
1: बहुत सारे संदेश। और पुनः हम सभी अपनी सखियों को, श्रोता भाइयों को गणेश चतुर्थी और ये आने वाले 10 दिनों तक जो आप हर्षोल्लास के साथ मनाने वाले हैं इस त्योहार को, उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। और ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं कि गणपति की स्थापना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि घर आंगन में खुशियों, शांति और समृद्धि के आगमन का शुभ अवसर है। बप्पा के स्वागत के साथ वातावरण भक्ति और उल्लास से भर उठता है। और साथ में ये भी लिखते हैं कि उनके आगमन से परिवार में प्रेम, एकता, उत्साह की नई रोशनी फैलती है। और आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ बप्पा का हम स्वागत करें। इसी भावना के साथ बहुत सारे संदेश।
0: हाँ, और हमारे श्रोता भाई ने या सखी ने उन्होंने ये भी लिखा है कि महाराष्ट्र में ये उत्सव बड़े हर्षोल्लास से, जोरों शोरों से और बहुत बहुत विशाल तरीके से मनाया जाता है। बड़े बड़े पंडालों में गणपति की मूर्ति स्थापित की जाती है। लोग अपने परिवारों के साथ मंडप में भी जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपने पूरे परिवार के लिए मंगल कामनाएं मांगते हैं। और हमारे संदेश में हमारे शोधा बहन लिखती हैं कि हमारे बेटे बहू ने भी गणपति महाराज की स्थापना की है। गणपति भगवान सभी की मनोकामना पूरी करें।
1: बिल्कुल। और इसी तरह की बातों के साथ एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि बहुत जरूरी है कि हम सब इको फ्रेंडली गणपति का इस्तेमाल करें और जितना हो सके इस बार अपने घर को इको फ्रेंडली अपने घर पर लेकर आए उनकी मूर्ति और उसी तरह से सजावट भी करें। तो भाई ये बात पे ध्यान रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
0: तो आपने बात पर ध्यान देने की बात की, मेरा ध्यान गया एक ऐसे संदेश पर जिसमें लिखा गया कि पिछले कई सालों से गणेश चतुर्थी के दिन हम घर पर ही मिट्टी लाकर गणपति जी की मूर्ति बनाते हैं।
1: क्या बात है।
0: और ये अजमेर के श्रोता भाई हमारे श्रोता हैं और उन्होंने बताया है कि पूजा के रूम में उनको विराजमान करते हैं, 11 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है, मोदक का भोग लगाया जाता है और पूरे विधि विधान से अनंत चतुर्दशी के दिन उनका हम घर में ही अपने बगीचे में विसर्जन भी करते हैं।
1: कितनी अच्छी बात है। देखिए हमारे ही बीच में अगर एक कोई बात समाज समझा रहा है तो एक और हमारे घर सखी है या श्रोता है जो हमें उस बात को करके भी दिखा रहे हैं। तो अपना परिवार इसी तरह से सखी सहेली का समृद्ध परिवार है।
0: और लगभग ये मिली जुली बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है कि घर में हर्षोल्लास का माहौल रहता है, सकारात्मकता आती है, नई ऊर्जा आती है। तो इसी ऊर्जा के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की तरफ।

0: अच्छे शब्द थे इस गीत के और बहुत सुंदर हिंदी का लालित्य इसमें देखने को मिला। और आज 14 सितंबर है और ये सिर्फ एक तारीख नहीं होती दीपा कि बस कैलेंडर पे मुझे तारीख दिखी, उस तरह से नहीं है, बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को याद करने का भी बहुत सुंदर अवसर होता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं।
1: बिल्कुल, हिंदी यानी एक ऐसी भाषा जिसमें अपनापन है, भावनाओं की गर्माहट है और दिल की बात को सहजता से कह देने की ताकत भी होती है। कभी ये माँ की लोरी बन जाती है और अपने कानों में उतरती है, कभी कविता बनकर मन को छू जाती है और कभी किसी कहानी के किरदारों में हमें अपना जीवन दिखाई देने लगता है, या कभी किसी गीत की बोल जैसे सीधे अपने दिल को उतर जाते हैं ना, बस कुछ ऐसी ही है ये भाषा।
0: और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इस ऐतिहासिक दिन की याद में ही हर साल 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में हम मना लेते हैं। और हिंदी बहुत खूबसूरती है, सिर्फ उसके इतिहास में नहीं है इसकी, बल्कि उसकी क्षमता में है जो अलग अलग लोगों को एक दूसरे से जोड़ देती है।
1: बिल्कुल, और हिंदी ने दूसरी भारतीय भाषाओं से बहुत कुछ ग्रहण भी किया है और बदले में उन्हें भी अपने शब्दों और अभिव्यक्तियों से समृद्ध किया है। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है चंचल, कि यहाँ भाषाएं अलग हो सकती है लेकिन भावनाएं हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहती है।
0: और हिंदी वर्ष में पता है हमारे फिल्मी गीतों से भी बड़ा गहरा था। हाँ। अभी जो हम गीत सुन रहे थे उसमें बड़ा अच्छा लालित्य था कविता का। और रेडियो पर जैसे ही कोई पुराना गाना बजता है, चाहे उसमें प्रेम हो, विरह हो, जीवन की उम्मीद हो, मतलब हर भावना को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने परोसा जाता है और बहुत मधुर संगीत होता है। वर्षों पुराने गीत जब हम सुनते हैं ना, तो हमें हमेशा अपने से लगते हैं।
1: बिल्कुल, ये बात तो
0: क्योंकि मिट्टी से जुड़े हुए लगते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हिंदी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है चंचल, दुनिया के बहुत सारे देशों में हिंदी बोली पढ़ी और समझी जाती है। इंटरनेट हो या सिनेमा, टेलीविजन या सोशल मीडिया ने हिंदी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में नई भूमिका इन सब ने निभाई है।
0: तो देखो कितना सुंदर संदेश हमें मिला है, हिंदी महज भारत की नहीं बल्कि दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी भारत की पहचान भी है और सम्मान भी है। और जो अन्य भारतीय अन्य देशों में बजे जो बसे हुए हैं उनको जोड़ने का एक काम करती है। वैसे तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन उन्होंने 10 जनवरी गलत तारीख लिखी है। आगे लिखते हैं कि लेकिन भारत में हिंदी दिवस को एक खास दिन तय किया गया है। भारत में 22 भाषाएं और 72,507 लिपि है। बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, लगभग कि हम कह सकते हैं कि ऐसा है। और इतनी सारी भाषाओं की विविधता के बीच हिंदी ऐसी भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ देती है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही है। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि इस दिन हिंदी भाषा के सम्मान, उसके प्रचार प्रसार और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए ये दिन समर्पित है। शिक्षण संस्थाओं में इस दिन हिंदी दिवस पर भाषण होते हैं, निबंध लेखन, वाद विवाद और कविता पाठ जैसी प्रतियोगिताएं ये आयोजित की जाती है संस्थानों में, और भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं।
0: और दीपक, कोई भी भाषा तब तक जीवित या समृद्ध रह सकती है जब तक उसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में सम्मान के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दूसरी भाषाएं सीखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अपनी भाषा से जुड़े रहना ये बहुत जरूरी चीज़ है।
1: बहुत ज्यादा जरूरी है। हम विदेश की भी कई भाषाएं सीखते हैं क्योंकि काम काज के चलते आजकल ऐसी भी जरूरत हो गई है, लेकिन बाहर जो देश के विदेश में रहते हैं हमारे परिवार के कोई जन, तो ये देखा सुना है कि वो लोग घर में हमेशा कहते हैं कि नहीं, हमारी जो भाषा है, जो हमारे घर की जो भाषा है हिंदी भाषा, वो अपने बच्चों को आना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती है, हमारी स्मृतियां होती हैं और हमारे संस्कार होते हैं। और देखिए संदेश भी बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। कितनी सुंदर दो पंक्तियां लिखी है हमारे किसी श्रोता ने, निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है की सूर। और आगे उन्होंने सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दी है, बहुत सारे संदेश है, लेकिन पहले एक गीत सुन लेते हैं जो इसमें भी हिंदी का बड़ा सुंदर लालित्य देखने को मिलता है।
1: चलिए

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई अब हम थोड़ी सी व्यंजन की बात करने खाने पीने की बात। भाई मोदक की बात अलग हुई लेकिन कुछ अलग व्यंजन भी तो होना चाहिए और क्योंकि अभी श्रृंखला कश्मीरी व्यंजन की है तो कश्मीर में कमल ककड़ी बहुत होती है।
3: बहुत होती है और बहुत प्रकार से वो बनी जाती है।
2: हाँ
3: लेकिन आज जो हम बात कर रहे
2: मतलब इसका सूप भी बना सकते हैं, पकौड़े भी बना सकते हैं, इवन सब्जियां भी बहुत सारी तरह से लोग बनाते हैं अपने अपने तरीके से।
3: और खासतौर पर चंचल जिनको जिनके घर में प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता है, नहीं पसंद कर रहे या किसी कारण से कुछ दिनों के लिए बंद है तो वो नदरू यखनी बना सकते हैं।
2: जी
3: ये जो कश्मीरी का बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है, ये दही की ग्रेवी में बनाया जाता है जो कि बिना प्याज लहसुन के जैसे अभी हमने आपको बताया। क्या लेना है इसमें, 500 ग्राम आप नदरू यानी कमल ककड़ी लीजिए, दही लेना है 500 ग्राम अच्छा सा फेटा हुआ, घी या तेल ले सकते हैं 3-4 बड़े चम्मच, हींग लेना है थोड़ा सा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, हरी इलायची ये सब दो तीन, लौंग 4-5, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, सौंठ का पाउडर लेना छोटा सा चम्मच 1, और सौंफ पाउडर अगर आपको पसंद है तो 2 बड़े चम्मच ले लीजिए, बेसन 1 बड़ा चम्मच, दही को फटने से बचाने के लिए, जो दही को हमें फटना है ना तो फटे ना इसलिए हमें उसमें डालना है। अब बनाने की विधि
2: और जो भी हम सामग्री हमने बताई है अपने स्वाद के अनुसार अब इसे थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं।
3: बिल्कुल, अब सबसे पहले नदरू को साफ करना होता है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है।
2: हाँ
3: तो इसको छील करके अच्छे से धो लीजिए और इसे तिरछा या गोल टुकड़ों में अगर काटते हैं ना तो पूरी अंदर तक की
2: मिट्टी छेद में अंदर मिट्टी घुस जाती है, चिकनी मिट्टी होती है
3: तो वो सब बाहर निकल
2: आसानी से निकल
3: जाएगी। अब उबालना है इसे तो कटे हुए नदरू को पानी में 10 मिनट तक उबाल लें, इसके बाद इन्हें पानी से निकालकर छान लेना है। अब एक कुकर या कढ़ाई में घी गर्म करें, इसमें हींग और सारे खड़े मसाले जो आपके घर में पसंद किए जाते हैं वो सब डाल लीजिए। फिर मसाला मिलाना है तो उबले हुए नदरू को घी में डालें और 2 मिनट तक भून लीजिए। अब इसमें सौंठ पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ा सा नमक मिलाकर अच्छी तरह चला लीजिए। थोड़ा पानी डालकर कुकर की 2-3 सीटी आने तक बनाए पका लीजिए या तब तक की जब तक की कमल ककड़ी थोड़ी नरम ना हो जाए।
2: जी
3: जो दही का मिश्रण अब तैयार करना है, 1 कटोरे में फेटा हुआ दही और बेसन को थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छी तरह फेट लेना ताकि कोई गांठें उसमें ना पड़े। उसके बाद ग्रेवी बनानी है तो कुकर का प्रेशर जब खत्म हो जाए तो ढक्कन खोल लीजिए और गैस को धीमा करें या चालू रखें और लगातार चलाते हुए दही का मिश्रण इसमें धीरे धीरे कढ़ाई में या कुकर में अगर आप बना रहे हैं तो कुकर में डालना है, लगातार

0: स्वाद बहुत अच्छा आता है। और जैसे कि इसने पहले आपने बताया कि बेसन इसलिए मिलाना है ताकि दही ना फट जाए
1: जी।
0: तो अगर कमल ककड़ी आपको बनानी है तो इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा क्योंकि हमारे पास रेसिपी सिर्फ सब्जी की आई है, आप कमल ककड़ी के बहुत स्वादिष्ट पकौड़े भी बना सकते हैं, इसका कमल ककड़ी का सूप भी बन सकता है। तो ये तो ही कमल ककड़ी के अलग अलग व्यंजन की बात।
1: कमल ककड़ी और चने की दाल, उसको मिला के दाल भी बनती है।
0: हाँ, तो अलग अलग संयोजन से अलग अलग एक स्वाद तैयार हो जाता है। इसी तरह से हमारी बातें, रेसिपी, श्रोताओं के संदेश और गीतों को मिलाकर हमारे जो प्रोग्राम का जायका है वो बन जाता है। तो गीत सुनने चलिए।

0: प्रेम पुजारी फिल्म के लिए इस गीत को गाया था किशोर कुमार ने, और इस गीत को लिखा था गोपाल दास नीरज ने। और जब मैं इस गीत को सुन रही थी ना, तो मुझे याद आया कि आज हिंदी दिवस है, और हमने भी कोशिश की कि हम कुछ ऐसे गीत बजाएं जिसमें हिंदी का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया। ऐसा ही ये गीत था
1: बिल्कुल।
0: और गोपाल दास नीरज ने बहुत सारे गीत ऐसे लिखे हैं ना जिसमें हिंदी की इतनी सुंदर शब्द रचना है, और बाद में उन शब्द रचनाओं के जो भी उनके लिखे गीत थे या कविताएं थी, उन्हें इतनी सुंदर तरीके से गीतों में ढाला गया ना, वो गीत आज भी यादगार बिल्कुल है।
1: और नीरज जी के साथ और भी फहरिस्त में लंबी लंबी फहरिस्त है, जैसे कि भरत व्यास, पंडित नरेंद्र शर्मा, कवि प्रदीप, शैलेंद्र, वसंत देव, ये सारे वो गीतकार हैं जिन्होंने हमारी हिंदी फिल्मों के लिए सुंदर रचनाएं दी हैं। चंचल,
0: तो भाई इन रचनाओं को तो हमने सुना, और इतना समय नहीं कि बहुत सारी रचनाएं हम सुना सके, लेकिन कुछ चुनिंदा गीत हमने शामिल किए, और बहुत सारी बातें करते, गीत सुनते, कार्यक्रम का समय पूरा हो गया, और घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि हमारे जाने का समय हो गया। तो बस लेते हैं विदा
1: आप सभी को, दीपा माहेश्वरी और
0: चंचल वर्मा का नमस्कार।

नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत, और इस बातचीत की दूसरी कड़ी लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए सुन

0: अदिति जी, ये जो कार्यक्रम है हमारे बहुत सारे श्रोता सुनते हैं, ग्रामीण श्रोता भी सुनते हैं और शहरी श्रोता भी सुनते हैं। पोषण सप्ताह मनाया जाता है, तो पोषण सप्ताह आप अपने पैमाने पर भी मनाती होंगी, क्या कुछ शामिल करती हैं इसमें, किस तरह से लोगों को जोड़ पाती हैं?
1: पोषण सप्ताह सितंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, 1 से 7 तारीख के बीच में, और ये कई सालों से चल रहा है
0: जी।
1: और इस सप्ताह में हम बहुत जनहित के लिए प्रचार करते हैं, बहुत ज्यादा रोड स्किट्स होते हैं ग्रामीण लेवल पे या आदिवासियों के लेवल पे, हम जाके वहाँ पे कैंप्स करते हैं या हेल्थ कैंप्स होते हैं सोसाइटीज में, ऐसे बहुत सारी चीजें चलती हैं। हर डाइटिशियन अपने तरीके से कुछ ना कुछ करती रहती है, वो चाहे अपने क्लिनिक में थोड़े से छोटे मोटे कैंप हो या कॉलेज में जाके सिखाना हो या कॉर्पोरेट जॉब्स हैं जहाँ पे वहाँ पे जाके आहार के ऊपर बातें करनी हो, ताकि लोगों को आहार के बारे में और आहार के महत्व के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले और उनको ये पता चले कि कहाँ और किसके पास जाना है सही जानकारी मिलने के लिए। ये इस चीज के लिए हम ये पूरा सप्ताह इस्तेमाल करते हैं। ये हम कई सालों से कर रहे हैं, मगर पिछले कई सालों से पोषण माह ज्यादा करके मनाया जाता है, जो कि सितंबर का पूरा महीना होता है। इसका मतलब अब हम एक हफ्ता नहीं, पूरा महीने भर हम कुछ करते रहते हैं, जैसे कुछ छोटा मोटा कुछ भी हो जो जनरल पॉपुलेशन या लोगों के लिए फायदेमंद हो, ये हम ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं।
0: जी बिल्कुल, भारत सरकार की ओर से एक मुहिम चलाई जाती है, बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, क्योंकि बहुत सारा वर्ग कुपोषण का शिकार है आज भी, तो उन्हें पोषक तत्व मिले और कुपोषण से रहित अपना देश हो जाए, ये एक मुहिम है। और अब हमें बताइए कि ये जो वर्किंग वुमेन होती है और जो हाउसवाइफ होती है, तो उनके लिए किस तरह के पोषक तत्व जरूरी है, किस तरह के न्यूट्रिशन उन्हें लेने चाहिए?
1: अगर हम पोषण के बारे में बात करें और औरतों के बारे में बात करें, तो मेरी हमेशा एक बड़ी शिकायत होती है कि औरतें जो होती हैं वो सबका करने में इतनी मशरूफ हो जाती है, वो हमेशा खुद को भूल जाती है। भले आप हाउसवाइफ हैं या भले आप जॉब करते हैं, दोनों तरीके से आप बहुत ज्यादा काम करते हो।
0: जी जी,
1: कोई भी किसी से कम नहीं होता। बहुत बार हमें लगता है अरे ये कुछ नहीं कर रहे, ये तो हाउसवाइफ है, इनको घर संभालना है। नहीं, अगर आप देखें कई बार हाउसवाइफ जो है पूरे दिन में इतना काम करते हैं, उनको अलग से वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
0: जी बिल्कुल,
1: और दोनों के लिए अपना सही वक्त पे खाना, सही मात्रा में खाना बहुत जरूरी हो जाता है।
0: जी।
1: अगर आप वर्किंग हैं तो अक्सर ये दिक्कत आती है कि सुबह उठे डब्बा बनाया तो अपना नाश्ता भूल गए, तो अपने नाश्ते का समय निकाल के फुर्सत से बैठ के नाश्ता करना जरूरी है। फिर उसके बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा सही है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। और पूरे दिन में पानी के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वैसे ही घर की जो औरतें हैं, जो घर संभालती हैं, उनको ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो वक्त पे खा रही हैं, या क्योंकि वो किचन में काम करे बहुत बार छोटा मोटा खाया जा रहा है और इसके वजह से भी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि हमें चखने की तो बहुत आदत होती है। चलो ये खा लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, इसमें दिक्कत हो जाती है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो औरतों को अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, उनको ये देखना जरूरी है कि क्या उनको 7 से 8 घंटे नींद मिल रही है, 2 से 3 लीटर उनका पानी दिन का जा रहा है, क्या उनका शारीरिक काम हो रहा है, जैसे चलना हो गया, जिम जाना जरूरी नहीं है बट कोई तो एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो भले 10-15 मिनट हो, मगर खुद के लिए वक्त निकालना उतना जरूरी है। और उसके अलावा सही वक्त पे खाना और संतुलित खाना, जहाँ पे वो ध्यान दे कि उनके खाने में प्रोटीन हो, फाइबर हो, आयरन युक्त जैसे मुरिंगा हो गया या फिर हलीम या अलीफ के बीज हो गए या फिर अनार हो गए, ये थोड़ी सी चीजें आपको खाने में होनी चाहिए, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है।
0: जी, आपने कहा पानी पीना चाहिए प्रचुर मात्रा में, कुछ लोगों को देखा पानी एक साथ गट गट गट गट पी लेते हैं, एक बोतल या 2-3 ग्लास पानी, तो ये तरीका सही है? थोड़ा तरीका भी बताइए किस तरह से पीना चाहिए पानी।
1: कुछ लोग बहुत जल्दी में पानी पी लेते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के पानी पी लेते हैं और पूरा दिन पानी नहीं पीते। हमारा शरीर इस तरीके से काम नहीं करता
0: जी, सही
1: उसको सही वक्त पे पानी की जरूरत होती है। आपको प्यास लग रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, मतलब पानी की मात्रा आपके शरीर में कम हो गई है। प्यास लगने तक राह ना देखिए,
0: बिल्कुल
1: धीरे धीरे थोड़े थोड़े वक्त पे थोड़ी थोड़ी घूंटों में पानी पीजिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ पानी हमेशा ग्लास में लेकर पीजिएगा
0: जी जी,
1: ना बॉटल से। आप बैठ कर पियो, खड़े रहकर पियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्लास में इसलिए ताकि आपको एक क्षण की क्यों ना हो थोड़ी सी एक पॉज मिल जाए, एक ठहराव मिल जाए, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है भाग दौड़ की जिंदगी में, कि आप वो एक दो सेकंड का काम है कि थोड़ा सा रुक लो, थोड़ा ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दो, आप किस तरीके से पूरे दिन में सांसें अंदर बाहर कर रहे हैं, थोड़ा सा ठहराव आने दो, पानी पी लीजिए और फिर अपने काम पे आगे बढ़ जाइए। कहीं अगर हम देखें तो अगर हम 2-3 लीटर की बात करें पूरे दिन में, तो आपको एक ग्लास एक घंटे में धीरे धीरे करके पी लेना चाहिए, धीरे धीरे, ये जरूरी है। गर्म पानी पिए, ठंडा पानी पिए, वो आपके ऊपर है, आप बैठकर पियो, खड़े रहकर पियो, वो आपके ऊपर है, मगर धीरे धीरे पीना बहुत जरूरी है
0: जी। बहुत भ्रांति थी, बहुत बड़ी आपने दूर की। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर
1: जी।

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज एक बहुत बड़ी समस्या और है, डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं और थायराइड की समस्या ज्यादातर हो रही है, तो क्या आहार के जरिए, सही न्यूट्रिशन के जरिए क्या इस पर नियंत्रण किया जा सकता है?
1: अगर हम डायबिटीज की बात करें तो अगर आपके फैमिली में या आपके परिवार में माता पिता को, चाचा चाची को, जो इमीडिएट फैमिली होती है, तुरंत आपके माता पिता, भाई बहन, किसी को भी डायबिटीज है, आपको डायबिटीज होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको ये जानकारी है तो आपको आपके आहार या पोषण का ध्यान पहले से रखना शुरू कर देना चाहिए। आपके खाने में क्या होना चाहिए ये आप समझ गए तो आप अपने ब्लड शुगर को आराम से मैनेज कर पाओगे, आपको डायबिटीज के लेवल पे आप पहुंचोगे नहीं। अगर आप प्री डायबिटीज के लेवल पे किसी वजह से पहुंच गए, सही आहार से आप उसको रिवर्स कर सकते हो। अगर आपका लेवल डायबिटीज में चला गया और आपको डॉक्टर ने डायग्नोज कर लिया कि आपको डायबिटीज है या आपको शक्कर की बीमारी लग गई है, तो उस वक्त के बाद से आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब वो चला जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। उस लेवल के बाद से आप बस वो शक्कर की मात्रा को कंट्रोल में रख सकते हैं, तब भी आपको आहार की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो टाइप का आपको डायबिटीज है, भले वो जेस्टेशनल डायबिटीज जो कि प्रेगनेंसी में होता है, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, उसके हिसाब से और आपको कौन सी दवाई दी जा रही है और आपका करंट ब्लड शुगर कितना है, उस हिसाब से आहार को डिजाइन किया जाता है, ताकि आपका जल्द से जल्द शुगर कंट्रोल में आए, आपको दवाइयां कम लेनी पड़े, या अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो वो अच्छे से आपके ऊपर काम करे कम से कम डोज में। तो आहार इतनी आपकी हेल्प कर सकता है कि आपका 16-15 ऐसा HbA1c है तो वो 7-6 पे भी लेकर आ सकते हैं 3-4 महीने में।
0: जी बिल्कुल।
1: बट लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट दवाई ले लेंगे मगर खाना नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ पे दिक्कत आती है। बिना खाने को ठीक किए आपकी दवाई काम नहीं करने वाली है या कम काम करेगी।
0: बिल्कुल सही बात है, मतलब कि हमारे जीवन में सही और संतुलित आहार का बहुत महत्व है।
1: बहुत महत्व है।
0: अदिति जी, हमें बताइए कि सप्लीमेंट की कितनी जरूरत होती है पोषक तत्वों के साथ साथ? कई बार लोग खाना पीना तो ठीक ठाक रखते हैं, उसके बावजूद उन्हें विटामिन्स की कमी होती है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती है। तो सप्लीमेंट किस तरह से लेना चाहिए और कितना इसका महत्व है और कितनी हानि है?
1: सप्लीमेंट कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, कुछ लोगों के लिए वो जरूरी नहीं है। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं, आपका रहन सहन सही है, नींद ठीक है, पानी ठीक है, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो अक्सर आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपके रिपोर्ट्स में आ गया कि आपको कोई विटामिन या मिनरल की कमी है, तो कभी कभार आपको वो लेने पड़ते हैं।
0: जी,
1: जो भी आप सप्लीमेंट लें वो हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से लें, और डाइटिशियन आपको दवाई नहीं दे सकते, डाइटिशियन आपको विटामिन मिनरल के बारे में जरूर बता सकते हैं, मगर ये विटामिन और मिनरल भी एक समय के लिए लेना चाहिए, एक उसका विशिष्ट रूप होता है जिस तरीके से लेना चाहिए, और विटामिन मिनरल्स ऐसी चीज है जिसका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है सप्लीमेंट में, तो वो पेशेंट की जरूरत के हिसाब से हम देते हैं, बिना किसी की सलाह के, बस इसलिए क्योंकि विटामिन मिनरल मिल रहा है और किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने बता दिया आपको विटामिन ये लेना है, कैल्शियम ये लेना है, आपको वो अवॉइड करना चाहिए। अगर सलाह दी है तब भी ले लीजिए, और उतने वक्त के लिए ही लेना जितना बताया गया है।
0: बिल्कुल,
1: वो सही वक्त पे लेना, सही तरीके से लेना जरूरी है। अभी कौन से विटामिन मिनरल ज्यादातर लगते हैं? अगर आपकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, मतलब आपके शरीर में कोई भी विटामिन या मिनरल की कमी बहुत ज्यादा है, तब आपको सप्लीमेंट की जरूरत लगती है। उसके साथ साथ आपको आहार को भी आपके ठीक करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो रोज का आहार है वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी जरूरतें पूरा करेगा। सप्लीमेंट जो कि आपका बैकलॉग है, जो कि आपके शरीर में ऑल ऑलरेडी कम है वो चीजें को भरेगा, तो वो सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही जैसे विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का मेन तो धूप से मिलता है, मगर हम आजकल धूप में ज्यादातर जाते नहीं, या फिर हम पूरे कपड़े पहनते हैं या ऐसे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स या कुछ भी शरीर पे, जिससे विटामिन डी अब्सॉर्ब नहीं होता। और खाने में विटामिन डी की मात्रा कम है तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप विटामिन डी बहुत, क्योंकि कम है सबको कम होता है, हम हर रोज लेंगे या हर हफ्ते लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, उससे आपके बॉडी में विटामिन डी स्टोर हो सकता है और आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो बिना सलाह के कभी भी उनको नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज, आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कोई डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, एक चिट्ठी पे लिख के उन डॉक्टर को थमा दीजिए कि मैं ये ऑलरेडी ले रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है, आप एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी कैल्शियम दिया, किसी और ने भी कैल्शियम दिया और आपने उनको बताया नहीं, तब भी ज्यादा हो सकता है आपके लिए। तो सप्लीमेंट कभी भी कितने भी आसानी से मिले, कितने भी करीबी रिश्तेदार ने आपको बताए हो, बिना जांच पड़ताल या बिना कोई प्रोफेशनल सलाह के नहीं लेनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
1: जी,
0: कौन सा गाना आपके पसंद का?
1: आजकल तेरे मेरे प्यार।
0: जब सेहत सही रहती है तो भाई जाहिर सी बात मन ठीक रहता है, मन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो प्यार की भावना भी उपजती है। सुनते हैं ये गाना।

0: मालूम है और सबको खबर हो गई।
1: अदिति जी हमें बताइए कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने से पहले एक गिलास पानी पी लो, खासतौर से वो लोग जो वजन घटाने की मुहिम चला रहे होते हैं, और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने के बीच बीच में पानी पीते जाओ थोड़ा थोड़ा, और कुछ लोग ये मानते हैं कि खाने से पहले ना तो पानी पीना है, ना खाने के दौरान, ना खाने के बाद। ये जरा स्पष्ट कीजिए क्या करना चाहिए।
2: इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है और मैं वही सोच रही हूँ कि सही अल्फाज क्या है इसके लिए, थोड़ा स्पष्टीकरण देने के लिए, क्योंकि ये सब विचारधारणा है, ये किसी किसी को आप अप्लाई कर सकते हो, हर किसी के लिए नहीं है। सीधी बात है, आपको पानी लगता है आप पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाने के पहले एक गिलास पानी पियोगे क्या हो जाएगा, आपके खाने पे असर पड़ेगा,
1: भूख कम हो जाएगी।
2: आपकी भूख कम तो हो जाएगी, मगर ऐसा भी हो सकता है आप कम भूख के कारण खाने की कोई विशिष्ट चीज जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है आप उसी को निकाल दो।
1: जी जी,
2: जैसे भूख कम हो गई तो आपने रोटी सब्जी कर ली, दाल छोड़ दी, तो आपको दिक्कत देगा। अगर आप कर रहे हो तो उसके पीछे का शास्त्र समझ लो कि आप पानी पी रहे हो ताकि आपकी थोड़ी भूख कम हो जाए, मगर ऐसा करने के बाद अगर आपको 4 बजे बड़ी जोर की भूख लग रही है तो फिर क्या ही फायदा उस चीज का। वैसे ही आप पानी आधा घंटे पहले मत पियो, आधा घंटे बाद मत पियो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। पानी किसको संभाल के पीना चाहिए, कुछ लोग जो होते हैं ना जो खाना खाने के वक्त पे कम चबाते हैं या उनको चबाना पसंद नहीं आता, तो ऐसे लोग जो है थोड़ा चबा लेते हैं खाना, बाकी पानी पी के उसको थोड़ा सा घटक लेते हैं, मुझे उसका सही अल्फाज नहीं पता, बट उसको पूरा स्वॉलो कर लेते हैं।
1: जी जी जी,
2: तब आपके खाने की मात्रा बहुत कम हो जाती है और आप पानी से ही आपके खाने को अंदर ढकेल रहे हो, ये आपको तकलीफ देगा और बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, आपके डाइजेशन के हिसाब से भी तकलीफ देगा और आपको भूख के हिसाब से भी तकलीफ देगा। ऐसे वक्त पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सिप सिप करके पानी पी रहे, घूट घूट लेके पानी पी रहे खाने के दौरान, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
1: जी बिल्कुल। और एक सवाल और है, वो ये कि एक वक्त में 2 अनाज खाएं, एक अनाज, जैसे कि या तो दाल चावल खाएं या फिर रोटी सब्जी खाएं, रोटी सब्जी शाम को खा ले, दिन में दाल चावल खा ले, ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूरी थाली, जैसे पुराने जमाने में पूरी थाली सजा के खाई जाती थी, तो आपका क्या कहना है
2: इसमें। सीधी सी बात है, धान धान होता है, आपको आखिर में देखना है धान की मात्रा आपकी थाली में कितनी है। आप अगर रोटी भी कर रहे हैं और चावल भी कर रहे हैं और आपकी आधी थाली उसी से भर रही है तो उसमें दिक्कत है। हमने क्या बात की थी कि थाली में 1/4 धान होना चाहिए, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप रोटी सब्जी अलग करें, दाल चावल अलग करें या साथ में करें। प्रॉब्लम ये आती है या दिक्कत ये आती है जब आप उसका प्रमाण बदल देते हो। अगर आपकी थाली में रोटी सब्जी है मगर आप सब्जी को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, और दाल चावल है मगर आप दाल को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो कम मात्रा में,
1: जी जी,
2: तब आपकी थाली का संतुलन बदल जाता है। और 90% लोगों का यही इशू होता है कि उनकी थाली में आधे से ज्यादा धान होता है, एक छोटी मात्रा में सब्जी होती है और बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है।
1: जी, खाने का सही तरीका बहुत जरूरी है, और जिसको पित्त की समस्या, एसिडिटी की समस्या हो तो उसे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत गलत फहमी है लोगों में कि कब क्या खाएं, 2 भोजन के बीच में कितना गैप होना चाहिए।
2: इसका कोई एक सरल फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। किसी किसी को दिन में 3 बार खाने की आदत होती है, किसी को 5 बार खाने की आदत होती है। मुझे ऐसे लगता है, मैं हमेशा पेशेंट्स को भी यही बताती हूँ कि आपकी जो जिंदगी है, आपका जो रूटीन सेट है, आप उस तरीके से काम करो। अगर आप 3 बार खाते हो 3 बार खा लीजिए, मगर ये देखिए कि वो आहार संतुलित हो। अगर हम बात करें भूख की, दिक्कत ये है शहर में आजकल लोगों को यही समझ नहीं आता भूख कब लग रही है और प्यास कब लग रही है। बस 1 बज गया है तो अभी लंच करने जाना है, ये समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को समझना जरूरी है कि मुझे भूख कब लग रही है, मुझे प्यास कब लग रही है।
1: तो क्या जब भूख लगे तभी खाना चाहिए,
2: ऐसा जरूरी नहीं है। शरीर को जरूरत है उसकी समझे और आप अपना रूटीन सेट करें उस हिसाब से। अब मैं ये कहूंगी पहले तो रूटीन सेट करिए और उस वक्त पे आपकी बॉडी को ट्रेन करिए कि आपको उस वक्त पे भूख लगे, मगर भूख लगना उस वक्त पे जरूरी है। बस एक बजा है उसके लिए मुझे खाना है ये नहीं होना चाहिए, मुझे एक बजे भूख लगनी चाहिए क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, ये होना चाहिए। जब आपको भूख लगेगी वही अनाज वही थाली आपको अच्छे से शरीर आपका उसको एब्जॉर्ब करेगा। आपके दो खाने के बीच में कितना गैप होना चाहिए ये निर्भर करता है आप कितनी मात्रा में खाते हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्वांटिटी में ज्यादा खाते हैं, खाने की मात्रा उनकी ज्यादा होती है, और कुछ लोग होते हैं जो एक वक्त पे एक रोटी या दो रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। जो कम खाते हैं उनको कई बार थोड़े थोड़े अंतर पे खाना जरूरी है, तो 2-3 घंटे के अंतर पे आप थोड़ा थोड़ा खा लेंगे अच्छा रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी खाने की मात्रा ज्यादा है तो आप दिन में 3 बार खा लोगे आप ठीक रहोगे। अगर आपको जैसे एसिडिटी या गैस की दिक्कत है तो आपको थोड़ा थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। आपको ब्लड शुगर की इश्यू है तब भी आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए ताकि आपका शुगर स्टेबल रहे। अगर आप दिन में 3 बार खा रहे हो जस्ट इसलिए कि अभी ट्रेंड चल रहा है दिन में 1 बार खाने का, आप डायरेक्टली 3 से 1 पर आ गए वो दिक्कत करेगा।
1: जी जी, अभी 2 टाइम का भी
2: बहुत ज्यादा
1: कि सिर्फ 2 टाइम खाना खाना है। यहाँ पर एक जरूरी बात जहन में आई है वो ये कि कई बार लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो सलाद भी रख लिया, दही भी रख लिया, फल भी रख लिया काट के और पूरी थाली में, तो क्या फल और खाना एक साथ खाना चाहिए या उसे बीच में गैप देना चाहिए?
2: हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि फल ऐसी चीज है जो हमारे पूरे खाने में हम उसे बिना पकाए खाते हैं।
1: जी जी,
2: तो उसे ऐसे वक्त पे खाएं जहां आप उसका मजा अलग से ले पाए।
1: जी,
2: जहां पका हुआ खाना जा रहा है वहां पे वो होना चाहिए। सलाद आपके खाने में जा सकता है वो कच्चा होता है, मगर सलाद हर किसी को सूट करता है ऐसे नहीं है। इसका मतलब कच्चा खाना सबके लिए है नहीं।
1: जी जी बिल्कुल,
2: आपकी सेहत के हिसाब से आपके पेट कैसे काम कर रहा है उस हिसाब से आपका सलाद पका हुआ हो या कच्चा होना चाहिए ये देखना आपको जरूरी होता है। फल आपको हमेशा अलग से ही खाने होते हैं और कभी भी फल के साथ आपके नट्स जाने चाहिए। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि नॉर्मली लोग 8-9 बजे नाश्ता कर लेते हैं, 1 बजे खाना खाते हैं और जो रात का खाना होता है वो अक्सर 8-10 बजे चला जाता है, तो आपके दोपहर के खाने और रात के खाने में बहुत बड़ी गैप हो जाती है। तो ऐसे वक्त पे इसके बीच में वहां पे फल और आपका जो नट्स है वो बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। अभी आपको ये भी देखना है कि 5 से 7 के बीच में ही आपको समोसे चाट की जरूरत पड़ती है, तो वो भूख लगने के पहले और आपके दोस्त आपको बताने के पहले कि चलो हम जाके समोसा खाते, उस वक्त पे आपका फल और नट्स खा लीजिए और आपकी सेहत बढ़िया रहेगी।
1: जी जी, एक गाना सुनिए।
2: जी,
1: कौन सा?
2: क्यों ना ये जीवन है, इस जीवन का घर।
1: जी, इस जीवन का यही है।

0: और कुछ लोगों का ये भी मानना है रोटी के मामले में कि गेहूं की रोटी नहीं पचती है, देर से पचती है, और मोटा अनाज ज्वार बाजरा और नाचनी, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: अगर हम गेहूं की बात करें, एक ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि गेहूं बहुत बुरा है। गेहूं हर किसी के लिए बुरा नहीं है। अगर आपको एलर्जीज हैं या आईबीएस आईबीडी जैसे कोई मेडिकल कंडीशन है तब आपको, या आप गेहूं जब भी खाते हो आपको थोड़ी बहुत डाइजेशन की इश्यू होती है, गैस की इश्यू होती है, तब गेहूं दिक्कत दे रहा है आपको और तब आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। तो मतलब आपकी थाली में गेहूं नहीं होना चाहिए या कम मात्रा में होना चाहिए क्योंकि वो आपको तकलीफ दे रहा है। बाकी को गेहूं से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है कि आप गेहूं कौन से तरीके का यूज कर रहे हो ये देखिए।
0: जी जी,
1: जिसमें आपके पास खपली गेहूं है जो सबसे बेहतर है, उसके बाद आपके पास अलग अलग तरीके के गेहूं हैं, आप कौन सी वैरायटी यूज कर रहे हो ये भी देखिए, और उसमें आप जो गेहूं के ऊपर का छिलका होता है ब्रांड होता है वो इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं खाने में रोटी में, ये देखिए आप सही रहोगे। रोटी गलत नहीं है, रोटी हर किसी को तकलीफ देती है ऐसा भी नहीं है। अगर हम ज्वार बाजरा की बात करें, मिलेट्स बहुत ज्यादा चर्चा में है एक दो सालों से, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मिलेट्स हम पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश में, आज उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है मगर लोगों को उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आज भी नहीं आता। ये जो मिलेट है या मोटे अनाज है ये बहुत बार आप देखोगे थोड़े सूखे या ड्राई टेंडेंसी के होते हैं, ये कम खाएंगे तब भी आपको एकदम ऐसे लगेगा कि भरा भरा पेट लग रहा है या पेट बहुत टाइट हो रहा है या आप और एक ज्वार की रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। अच्छे हैं मगर वो भी सही मात्रा में आपके दिन में होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको थायराइड जैसा इशू और आप पूरी तरीके से मिलेट्स पे रह जाए, आपको दिक्कत होगी। तो एक संतुलन गेहूं और मिलेट्स के बीच में रखना, चावल के बीच में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो संतुलन जमा लिया तो आपका पेट सही रहेगा। दूसरी चीज मुझे ये हमेशा दिखती है कि कुछ लोग जो होते हैं ना आंकड़ों के पीछे पड़े रहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि उनके प्लेट में उनको या थाली में उनको दो रोटी चाहिए होती है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो गेहूं की है ज्वार की है बाजरा की है। अभी ये दिक्कत है कि एक फुल्का या एक रोटी जो है 20 से 30 ग्राम आटे की बनती है और एक ज्वार की रोटी जो है 50 से 60 ग्राम आटे की बनती है।
0: बिल्कुल,
1: तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने ज्वार बाजरा जो भी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया, जहाँ की आप रोटी एकदम हल्के फुल्के में काम चला लेते हैं
0: तो पाचन पर असर पड़ेगा।
1: जी, तो ये लोग सोचते ही नहीं है क्योंकि ये उन्होंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं है। तो ये आपको देखना जरूरी है कि आपकी पाचन क्रिया कैसी है, आपका पेट कैसा है, क्या आप मिलेट्स को डाइजेस्ट कर पा रहे हो, और अगर आप मिलेट्स को आपके खाने में रोजमर्रा की जिंदगी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो या डालना चाहते हो आप किस तरीके से डाल रहे हो।
0: जी,
1: आप अगर मिलेट्स बिल्कुल भी नहीं खा रहे तो तुरंत से पूरे हफ्ते मिलेट्स ना करें, हफ्ते में एक दो बार करें, फिर तीन चार बार करें, धीरे धीरे मिलेट्स की आदत लगाएं। और ज्वार बाजरा नाचनी के आगे भी हमारे पास धान है उसका भी इस्तेमाल करें, जैसे कोड़ो हो गया, कांग हो गया, पोर्स हो गया, महाराष्ट्र में वरी हो गया, ये सारे भी तो धान है, वो भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सूडो मिलेट्स हैं जैसे कि किनवा हो गया, कुट्टू हो गया, बकवीट जिसे बोला जाता है, किनवा को तो हिंदी मराठी नाम है नहीं, किनवा को किनवा ही बोलते हैं,
0: सावा
1: नहीं, सामा है जो कि होता है महाराष्ट्र में वरी, बानयार्ड मिलेट।
0: जी जी,
1: तो ये सारी चीजें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमें सिर्फ रोटी और उसके आगे ज्वार बाजरा नाचने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें बस कुछ चीजें पता नहीं है और कुछ चीजें हमें इस्तेमाल करने नहीं आती। तो आप सही तरीका सीख लो तो हो जाएगा। जब भी आप मोटे धान की बात करें और आप अगर अक्खा धान यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से 4 से 6 घंटे भिगो के रखना बहुत जरूरी है और सही मात्रा में पानी डाल के उसको पकाना बहुत जरूरी है। उसके साथ आप किस तरीके की सब्जी खा रहे हो, अगर आप मोटा धान इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ जो सब्जियों में पानी का अंश ज्यादा होता है, जैसे दूधी हो गया, कद्दू हो गया, पीठा हो गया, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें तो वो आपका सूखी रोटी और उसके साथ गीली सब्जी, ये थोड़ा सा बैलेंस आपके पेट के लिए बहुत अच्छा ठहरता है।
0: अच्छा, क्या बात है।
1: तो ये थोड़ा संतुलन आपको समझना चाहिए और आपको धीरे धीरे अपने खाने को उस तरीके से बदलना जरूरी है।
0: एक गाना सुनिए
1: जी।
0: कौन सा?
1: आप भी बता दीजिए कोई गाना।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: जो आप धान की बात कर रही थी, धान में ये सारी चीजें आती हैं। धान में सिर्फ वो चावल जो हम रोज खाते हैं वो नहीं, हाँ। बल्कि कोदो और जो ना
1: बहुत ज्यादा। और आप अगर चावल की ही बात करें तो भारत ऐसा देश है जहाँ हमारे पास 150-200 तरीके के चावल है।
0: बिल्कुल,
1: मगर हम एक ही चीज जानते हैं,
0: सफेद चावल बिल्कुल,
1: खुशबूदार चावल, बासमती चावल, इतना ही जानते हैं। थोड़ा हमारे जो चावल के अनाज है जो हमारे पास है, जैसे आंबे मुहर है, मट्टा है केरला का, या असम का ब्लैक राइस है, जो आपके यहाँ है, या कृष्ण कमोद है, आप वो चावल का इस्तेमाल करें। ब्राउन राइस आता है, मगर उससे अच्छा हमारे पास बहुत सारे चावल है, अनपॉलिश्ड वैरायटी का चावल इस्तेमाल करें, या सेमी पॉलिश्ड वैरायटी इस्तेमाल करें। बहुत खुशबूदार, बहुत फ्लेवरफुल चावल आते हैं हमारे पास। सफेद चावल में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रहता है, उसका सब कुछ निकाला हुआ होता है, बस हल्का सा बी विटामिन आपको मिल जाएगा, बाकी सब वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट है।
0: क्या बात है, बहुत सही जानकारी आपने दी है। पहले ग्रामीण इलाकों में आज भी
1: वही
0: धान को उबाल कर चावल बनाया जाता है, वो उसको उसना चावल कहते हैं।
1: हाँ, हमारे यहाँ उकड़ा तांदूल बोलते हैं, महाराष्ट्र में, जहाँ हम वही राइस को यूज करते हैं, जिसमें अच्छा ब्रांड भी होता है, वाइटमिन भी होते हैं, वो मोटा होता है तो आप कम भी खाते हो।
0: अदिति जी, बहुत जरूरी मुद्दा है आजकल तेल के बारे में, कि पुराने जमाने में तो हम सबको याद है कि सरसों का तेल सब्जियों में इस्तेमाल होता था, और कुछ जगहों पर नारियल का तेल, साउथ में खासतौर से अलग अलग जगहों पर, और आजकल तरह तरह के तेल हैं, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर, राइस ब्रॉन। तो बताइए कि कौन सा तेल सब्जियों के लिए सही होता है इस्तेमाल करना।
1: आप जिस जगह रहते हो उस जगह आपके आजू बाजू में कौन से पेड़ ज्यादा है, उस हिसाब से उस इलाके में वो तेल ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की बात है में बात करें तो वहाँ पे आपको सरसों का इस्तेमाल ज्यादा मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें या साउथ की बात करें तो नारियल का तेल ज्यादा मिलेगा। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो ये सारे तेल अभी हम सबको मिल रहे हैं। कोई तेल बुरा हम नहीं बोल सकते, हर तेल अपने तरीके से सही है, किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वो बुरा हो सकता है। मुख्य क्या होता है कि आपके खाने में तेल की मात्रा कितनी है। आप अगर आपके खाने में, जैसे एक इंसान को पूरे दिन में तेल की मात्रा 3-4 चम्मच रखनी चाहिए, छोटे चम्मच, 5 ml के चम्मच, उसके ऊपर नहीं। अगर हम कभी गिन के थोड़ी ना तेल इस्तेमाल करें, अंदाजे से भिंडी की सब्जी को थोड़ा ज्यादा तेल डाल दिया, कोई पत्ते की सब्जी है तो उसमें कम तेल डाल दिया, हम स्वाद अनुसार तेल इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अगर हम तेलों की बात करें कि कौन सा सबसे अच्छा होता है, सबसे पहले आप देखिए कि आपको मेडिकल इश्यूज है या नहीं। कुछ मेडिकल के इश्यूज में कुछ तेल हम मना कर देते हैं, बाकी केस में अगर आपको कोई इश्यूज नहीं है, आप सेहतमंद है, आपको बस आपकी तबीयत का ख्याल रखना है, तो इसका सिंपल तरीका यह है कि आप पारंपरिक तौर से आप जो तेल खा रहे हो उसका इस्तेमाल करें, बाकी तेल भी अपने रूटीन में रखें, उसको थोड़ा सा साइकिल करें। मतलब अगर एक महीना आप सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिर राइस ब्रान को लेकर आए, फिर आप सरसों पे चले जाए, फिर सनफ्लावर का इस्तेमाल करें, ऐसे थोड़े आप बदलाव लेकर आ सकते हैं। आखिर में आपकी तेल की मात्रा कितनी है ये मायने रखता है।
0: जी,
1: कुछ तेल होते हैं जिनको बहुत बुरा नाम पड़ा है, जैसे पाम ऑयल है, क्योंकि ये ज्यादा करके पैकेज फूड, बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो हाँ, ये बुरा है क्योंकि उसकी जो गुणधर्म है वो आपको तकलीफ दे सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप पैकेज फूड और प्रोसेस फूड कितना खा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: आखिर में गिनके आप पूरे दिन में तेल कितना खा रहे हो। और तेल भी दो तरीके से हम देखते हैं, नॉर्मल लोग सिर्फ तेल को गिनते हैं, हम डाइटिशियन दो तरीके से देखेंगे। विजिबल सोर्सेस जो कि दिखते हैं, मतलब आपका तेल, घी, बटर, चीज, और दूसरा होता है इनविजिबल सोर्सेस, मतलब दूध में से आने वाला फैट, आपके नट्स में से आने वाला फैट, ये भी तो जरूरी है।
0: जी जी,
1: तो अगर आप पूरे दिन में 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट ही खा रहे और आपकी सब्जी तेल में तैर रहे हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो आप ज्यादा तेल खा रहे हो, आपको तकलीफ होने ही वाली है। आखिर में तेल की मात्रा कितनी है वो ज्यादा मायने रखती है, और अपने तेल को बदलते रहिए। कौन सा तेल अच्छा है, क्या केमिकली रिफाइंड तेल अच्छा है, फिजिकली रिफाइंड अच्छा है, वुड प्रेस्ड अच्छा है, कोल्ड प्रेस अच्छा है, तो फिजिकली रिफाइंड या घानी, वुड प्रेस, कोल्ड प्रेस, ये अच्छे हैं। जितना हो सके केमिकल जो फिल्टर्ड होता है वो थोड़ा सा दूर रहिए। अगर शहर में रह रहे हैं या आपको दिक्कत है, आपको एक्सेसिबिलिटी या फाइनेंस का इशू है, तो आप जो भी तेल मिल रहा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली अफोर्डेबल है तो घानी का तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल, वुड प्रेस ऑयल, इसकी तरफ थोड़ा सा मुड़ जाइए। वो तेल थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, तबीयत के लिए भी अच्छा होता है, और उसमें गुणधर्म भी अच्छे खासे होते हैं।
0: जी जी,
1: तो वो इस्तेमाल आप कर सकते हो।
0: जी बिल्कुल, घानी का तेल यानी जो कोदू के बैल से निकाला जाता है ताजा तेल, सरसों का तेल खास तौर से होता है। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
1: जी।

0: और घी के बारे में भी बताइए। घी के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां, लोग चुपड़ के घी खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी खाते ही नहीं, तो घी क्या है बताइए।
1: घी भी फैट का एक ही रूप है। आप तेल खाओ, घी खाओ, बटर खाओ, चीज खाओ, उसके रूप अनेक है।
0: अच्छा।
1: आखिर में मात्रा आपकी मैटर करती है, जो कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि दिन में आपकी 3 से 4 चम्मच तेल होना चाहिए, उसमें घी भी आता है। आप 4 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो या उसमें से 1 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या घी खाने से फायदा है? हाँ, पेट के लिए अच्छा है, तबीयत के लिए अच्छा है। आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हो तब भी आपको फायदेमंद ठहरेगा। अगर आपको ब्लॉकेज इश्यूज है, हार्ट इश्यूज है, या आपको कोई मेडिकल बाकी के कंडीशन है, तो आपको घी को थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी है। अगर आप घी नहीं खाते हो, क्या आपको कोई नुकसान है? नहीं, बिना घी खाए भी आप अच्छी खासी जिंदगी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको घी खाना जरूरी है जिंदगी में। तो आखिर में आप कितनी मात्रा में खा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है।
0: जिला हुआ घी नहीं खाना चाहिए पराठे के रूप में, पूड़ी और पराठे के रूप
1: बहुत ज्यादा।
0: अदिति जी, घी तेल सब कुछ शामिल हो गया, और

0: अगर आपके पूरे दिन में आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण बहुत ज्यादा है तो मिठाई उसे और बढ़ाएगा। और मिठाई जो है छोटा बम बड़ा धमाका है,
1: तो
0: छोटे से बाइट में बहुत ज्यादा कैलोरीज होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फैट भी होता है और उतनी ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं। तो क्या मिठाई जरूरी है? नहीं। अगर आप मिठाई हर खाने के बाद खाना चाहते हो तो ये आपको कम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपकी तबीयत के हिसाब से। तो एकदम से अचानक से अगर आप बंद नहीं करना चाहते, पहले तो दिन में एक ही बार कर लीजिए और फिर उसी मिठाई के थोड़े से हेल्दी रूप थोड़े से देख लीजिए। जैसे आपको खजूर मिल जाएगा, या आपने थोड़ा चना और गुड़ ले लिया, या आपने छोटा चिक्की का टुकड़ा ले लिया, आप इसका इस्तेमाल करें, ना कि गुलाब जामुन या और कोई तली हुई मिठाई, मावा जलेबी, इसका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा, आखिर में पूरे दिन में आपने कार्बोहाइड्रेट कितने खाए हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग जो है खाने में भी शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो मतलब आप चाय में शक्कर गुड़ खा रहे हैं, आपके खाने में गुड़ और शक्कर जा रहा है और फिर आपके मिठाई में भी शक्कर है। तो आपने यहाँ फॉर्मूला बना लिया आपका ब्लड शुगर बढ़ाने का।
1: जी, जी।
0: इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा क्योंकि आप हर जगह पे मिठाई खा रहे हैं। अभी कुछ लोग बोलेंगे हमें तो ब्लड शुगर नहीं है, हम तो जिंदगी भर खा रहे हैं। अच्छी बात है, हो गए, आपकी तबीयत उतनी अच्छी है, हो गया। मगर क्या ये हर कोई कर सकता है? नहीं, वो हर किसी को तकलीफ दे सकता है।
1: जी,
0: तो मिठाई भी आखिर में आपको ये देखना है कि क्या ये मेरे को फायदा देने वाली है। आज के टाइम में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां आ रही है जो कि आपकी तबीयत को भी संभाल सकती है और मीठे की क्रेविंग को भी संभाल सकती है। जैसे डार्क चॉकलेट हो गया, या आप छेना इस्तेमाल करो, रसगुल्ले का छेना वो आप यूज करो,
1: खीर घर में बना के।
0: खीर भी आखिर में दूध और शक्कर ही आई, और उसमें अगर आपने साबुदाना डाल दिया तो खत्म। तो आपने एकदम ऐसा फॉर्मूला बना दिया जहाँ पे शुगर बढ़ जाएगा। तो ये कितनी मात्रा में खा रहे, पूरे दिन में कितनी शक्कर गुड़ जा रही है, और ओवरऑल आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है, इस पे निर्भर करेगा कि क्या आप मिठाई खा सकते हो या नहीं। दूसरी चीज ये होती है कि बहुत ज्यादा मीठा खाने से ना कुछ लोग कई सालों तक उनको आदत होती है मीठा मीठा खाने की, कार्बोहाइड्रेट खाने की। इसकी वजह से उनके टेस्ट बड्स जो है ना वो भी थोड़े चेंज हो गए, जिनको हर चीज उस तरीके से टेस्ट नहीं आती। तो जब वो मिठाई थोड़े दिन के लिए निकाल लेते हैं तब उनको वही मिठाई कितनी मीठी है वो पता चलेगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो मिठाई बिल्कुल नहीं खाते, वो फटक से बोलेंगे आपकी एक चम्मच शक्कर भी बहुत ज्यादा है। वो क्यों बता पा रहे? क्योंकि उनके टेस्ट बड अभी वापस ट्रेन हो गए कि जो निसर्ग में जो चीजें जैसी हैं वो उनके फ्लेवर्स का मजा उस तरीके से ले ले। तो हमें उस चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है।
1: मतलब ये भी है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम खाना कम खा लें, मिठाई ज्यादा खा लें।
0: हाँ।
1: तो वो भी ठीक नहीं है।
0: ठीक नहीं है,
1: क्योंकि मीठा तत्व तो आपके हाँ। शरीर में जा रहा है। जो
0: कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, डाइट भी कर रही हूँ, मगर वेट लॉस नहीं हो रहा है या मेरी शक्कर कम नहीं हो रही है, तभी भी अक्सर गुनहगार वो मिठाई ही होती है।
1: बिल्कुल। तो अब इस मिठाई के साथ ही मीठी मीठी बातों को हम विराम दे रहे हैं। अदिति जी, बड़ी ढेर सारी जानकारी आपने साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। एक गाना सुनिए।
0: जी।

न्यूट्रिशन माह के उपलक्ष्य में सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपने सुना न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो, हवाओं पे नाम।
0: इसके अलावा वेव्स OTT, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणाम उन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। भोपाल स्थित भारत भवन में 2 दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। पहले दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसमें हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर गुरुवार से सेवा संकल्प अभियान शुरू होगा। इसके तहत शाम को क्षिप्रा नदी के घाटों और महाकाल लोक में दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। शासन ने 10 आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के 127 अधिकारियों सहित कुल 137 पुलिस अफसरों के तबादले किए हैं। और मौसम विभाग के मुताबिक आज उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना और श्योपुर में भारी बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युवा वाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी युवा साथियों का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में, और मैं हूं आपकी रेडियो साथी प्रज्ञा गुप्ता। दोस्तों, आज का दिन वाकई कई मायनों में विशेष है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हम विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश का स्मरण कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और विवेक के प्रतीक माने जाते हैं। वे हर शुभ कार्य के आरंभ में स्मरण किए जाते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद जीवन में नई शुरुआत, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से सभी विघ्न दूर करें और हमें ज्ञान, विवेक एवं सही दिशा का आशीर्वाद दें। गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर आप सभी को आकाशवाणी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इसी मंगल कामना के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म काई पोचे से।

दोस्तों आप सुन रहे थे स्वानंद किरकिरे का लिखा, अमित त्रिवेदी का निर्देशित, श्रुति पाठक और दिव्य कुमार की आवाज में गीत शुभारंभ। जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बात की थी कि आज का दिन काफी विशेष है क्योंकि आज हम गणेश चतुर्थी के साथ साथ हिंदी दिवस भी मना रहे हैं। तो आइए आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हिंदी दिवस के महत्व, विशेषताओं और हमारे जीवन में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में। दोस्तों भाषा केवल विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह किसी समाज की स्मृतियों, अनुभवों, परंपराओं, ज्ञान और सांस्कृतिक चेतना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने वाली जीवंत धारा भी है। भारत जैसे बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश में भाषा का महत्व और भी व्यापक हो जाता है क्योंकि प्रत्येक भाषा अपने साथ विशिष्ट इतिहास, लोक स्मृतियां और सांस्कृतिक संसार लेकर चलती है। हिंदी भी इस विशाल भाषाई परिदृश्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है और आज के समय में इसका हमारे लिए क्या महत्व है? दोस्तों हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने के पीछे भारत के संविधान निर्माण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रसंग है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। संविधान के अनुच्छेद 343 में इसका प्रावधान किया गया। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके पश्चात वर्ष 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों यह दिन हमें हिंदी के संवैधानिक महत्व की याद दिलाता है और इसके प्रयोग, विकास तथा प्रचार प्रसार के लिए प्रेरित करता है। हिंदी दिवस केवल एक तारीख याद करने का दिन नहीं है दोस्तों, इसका संबंध हिंदी के वास्तविक इस्तेमाल और उसके प्रचार प्रसार से भी है। भारत सरकार के राजभाषा विभाग के द्वारा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सरकारी मंत्रालयों एवं विभागों में हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी माह जैसे आयोजन होते हैं। इन आयोजनों के माध्यम से हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार हिंदी दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि भाषा के निरंतर और प्रभावी प्रयोग का अवसर भी है। दोस्तों आज हिंदी के विकास में डिजिटल माध्यमों की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इंटरनेट ने हिंदी के विस्तार को एक अभूतपूर्व गति दी है। अब कंप्यूटर और स्मार्टफोन पर हिंदी लिखना पहले की तुलना में काफी अधिक सहज हो गया है। दोस्तों भाषा का विकास तभी होता है जब हम उसका प्रयोग करते हैं, उसमें लिखते हैं, पढ़ते हैं और नए विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। हम हिंदी को केवल एक विषय या एक दिन तक सीमित ना रखकर आइए इसे अपने संवाद, लेखन, अध्ययन और रचनात्मक अभिव्यक्ति का हिस्सा बनाते हैं। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा, अजय अतुल का निर्देशित फिल्म अग्निपथ से।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये देवाश्री गणेशा फिल्म अग्निपथ से। स्वर थे अजय गुगावले के, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत निर्देशन था अजय अतुल का। तो दोस्तों कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे सोशल मीडिया और हमारी निजता से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर। दोस्तों आजकल सोशल मीडिया हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। सुबह उठते ही संदेश देखना, दिन भर की तस्वीरें साझा करना, नई जानकारी या समाचार पढ़ना, दोस्तों और परिवार से जुड़े रहना, इन सब के लिए हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया ने हमारे संवाद करने, जानकारी प्राप्त करने और अपने विचार व्यक्त करने के तरीकों को बहुत बदल दिया है। लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या सोशल मीडिया पर हमारी निजी जानकारी सुरक्षित है? तो दोस्तों हम जो कुछ भी सोशल मीडिया पर साझा करते हैं वह केवल हमारे दोस्तों या परिचितों तक सीमित नहीं रहता। कई बार हमारी जानकारी अलग अलग डिजिटल प्रणालियों में एकत्र की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर हमें पोस्ट, विज्ञापन या सुझाव दिखाए जाते हैं। दोस्तों जब हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं तो हम कई प्रकार की जानकारी साझा करते हैं। इसमें हमारा नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, तस्वीरें, पसंद नापसंद और हमारी गतिविधियों से जुड़ी जानकारी शामिल हो सकती है। हम किन पोस्ट को पसंद करते हैं, किन वीडियो को देखते हैं, किन विषयों के बारे में जानकारी खोजते हैं और किसी वीडियो या पोस्ट को कितनी देर तक देखते हैं, इन गतिविधियों से भी हमारे बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। कई प्लेटफॉर्म हमारी लोकेशन, डिवाइस और ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़ी कुछ जानकारियां भी एकत्र कर सकते हैं। इन जानकारियों का उपयोग हमारी रुचि और व्यवहार को समझने के लिए किया जाता है। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट पर एक बैग देखा, उसके बाद आपको सोशल मीडिया पर भी उसी प्रकार के बैग के विज्ञापन दिखाई देने लगे। ऐसा इसलिए भी हो सकता है दोस्तों क्योंकि आपकी ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़ी जानकारी का उपयोग विज्ञापन दिखाने के लिए किया गया हो। अब सवाल यह है कि हम अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? अधिकांश लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी सेटिंग्स पाते हैं जिनसे हम खुद तय कर सकते हैं कि हमारी पोस्ट, तस्वीरें और प्रोफाइल की जानकारी कौन देख सकता है। हमें समय समय पर इन सेटिंग्स की समीक्षा करनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार अपने अकाउंट को और अधिक सुरक्षित बनाना चाहिए। दोस्तों हमारा पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसका आसानी से अनुमान ना लगाया जा सके। अलग अलग अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड रखना बेहतर माना जाता है। जहां सुविधा उपलब्ध हो वहां दो स्तरीय सुरक्षा यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना चाहिए। सोशल मीडिया का सही उपयोग केवल अपनी जानकारी सुरक्षित रखने तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि हमें दूसरों की निजता का भी सम्मान करना चाहिए। किसी की तस्वीर या वीडियो उसकी अनुमति के बिना साझा नहीं करनी चाहिए। किसी व्यक्ति की निजी बातचीत, फोन नंबर या व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक करना भी उचित नहीं है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर खबर सही नहीं होती। किसी पोस्ट को आगे साझा करने से पहले उसके स्रोत और सत्यता की जांच बहुत जरूरी है। इसी जागरूकता के साथ हम एक सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल वातावरण बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म केदारनाथ से अमित त्रिवेदी आवाज में।

नमो नमो। अब समय है आज की रोजगार सूचना का। दोस्तों, SSC यानी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2536 रिक्त पदों के लिए CHSL की आवेदन आमंत्रित किए गए। इसके माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न विभागों में लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2026 है। पात्रता और अन्य आवश्यक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म ABCD 2 से।

युवा श्रोताओं का दैनिक प्रसारण युववाणी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी सागर है। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गई गणपति वंदना।

गणेश वंदना अभी आपने सुनी अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के स्वर में। कार्यक्रम में अब आपको सुना रहे हैं सुदर्शन फाकिर की रचना सुधा मल्होत्रा के स्वर में। संगीत है जगजीत सिंह का।

आकाशवाणी सागर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं महादेवी वर्मा का लिखा गीत जयदेव की बनाई तर्ज पर। स्वर है आशा भोसले का।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है सुबह 11 से 11:30 बजे तक।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।

जगजीत सिंह की गई गजल अभी आपने सुनी। कार्यक्रम संगीत सरिता में अब आपको सुनवा रहे हैं चंदन दास की गई ये गजल।

चंदन दास की गई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी सागर है, शाम के 6 बजने को है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
1: भारतीय साहित्य एक विकसित सत्तल कमल की तरह है जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सत्तल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
0: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। अमेरिका के एक विश्लेषक ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कोगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता बढ़ सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। प्रीतम के संगीत निर्देशन में गीत की रचना की है सैयद कादरी ने, आवाज के की।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ।

0: अभी आपने लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया आए दिन बहार के फिल्म का गीत सुना। रचनाकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य अकादमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य अकादमी युवा का।
1: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: ट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी। मेरा था
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक

0: उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिवर माउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

का लिखा आर्य बर्मन का संगीत बद्ध किया, सागर फिल्म का गीत सुना, स्वदेवी थे किशोर कुमार और एस पी बाली सुब्रमण्यम। इसी के साथ ही तेरानी नई पुरानी कार्यक्रम अभी समाप्त होता है।

FM 9 पर यह आकाशवाणी सागर है। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सदा बहार गीतों का कार्यक्रम।

योगेश का लिखा गीत अभी आपने सुना यसुदास की आवाज में। आनंद महल फिल्म के लिए संगीत था सलील चौधरी का। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं बालिका वधु फिल्म से गीत अमित कुमार के स्वर में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

सदा बहार गीतों के इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं जहरीला इंसान फिल्म से एक गीत किशोर कुमार की आवाज में। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही सदाबहार गीतों का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी सागर है। शाम के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग।

राजू पटेल और धनी राम सेन की गई ये गणेश वंदना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं जयंत विश्वकर्मा का गाया हुआ ये लोक भजन।

0: भगवती बाई और भगवती बाई का गाया ये लोकगीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम लोक रंग अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी सागर है। शाम के 7 बजने को है। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणापत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणापत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के विदेश मंत्री ले हुआई ट्रुंग के साथ भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा भारत में निर्मित रक्षा उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने पर चर्चा हुई। वियतनाम भारत की लुक ईस्ट, आसियान, हिंद प्रशांत महासागर और ग्लोबल साउथ नीतियों में महत्वपूर्ण साझेदार है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने यह बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
2: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
1: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता बढ़ सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

इस सभा में शाम 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम सभा। चित्रपट संगीत प्रसारित होगा रात 8:20 पर। पेश करेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। मन चाहे गीत सुने जा सकेंगे रात 9 बजे से। 9:30 से प्रसारित होंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। 1000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 GST है, जबकि 1000 से 2499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% GST लगता था। 2500 से लेकर 7499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% GST लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% GST देना होगा।

कब जानकारी? कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की। भक्ति संगीत सुनेगा कार्यक्रम अर्चना में सुबह 6:05 पर। श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ सुना जा सकेगा सुबह 6:30 पर। कार्यक्रम सुबह सुबह का प्रसारण समय सुबह 7:00। पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर, ये कार्यक्रम सुनेगा सुबह 8:30। विषय है कुश्ती का बदलता स्वरूप। इस कार्यक्रम में मनीष यादव से बातचीत करेंगे जय शेखर। शास्त्रीय संगीत सुनेगा कार्यक्रम राग रागिनी में सुबह 10:05 पर। कल सुबह 11:00 सुनेगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कल शाम

7:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसान वाणी। चित्रपट संगीत प्रसारित होगा कल रात 8 बजे। मन चाहे गीत सुने जा सकेंगे कल रात 9 बजे। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

FM पर यह आकाशवाणी सागर है। शाम के 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए
2: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
1: ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हिंदी दिवस पर अमित शाह ने हिंदी को प्रतिस्पर्धी नहीं संवाद की कड़ी कहा। सेवा संकल्प अभियान की तैयारियां जारी, मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। उज्जैन में 17 सितंबर को 25 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। प्रदेश में उत्साह उमंग के साथ गणेश उत्सव आरंभ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित जनप्रतिनिधियों ने स्थानीय कलाकारों से खरीदी मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं। और राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश का जोर, उज्जैन और नीमच सहित 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल के फूल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाया करती है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी पंखुड़ी खो जाए तो पूरे कमल की सुंदरता कम हो जाया करती है। श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं का पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। गृहमंत्री ने आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6 अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृहमंत्री ने कहा कि भारत में कई भाषाएं और बोलियां हैं, लेकिन भारतीय भावना और देश की आवाज एक रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाषाई विविधता देश की ताकत है और हिंदी अलग अलग भारतीय भाषाओं के बीच बातचीत का प्रभावशाली पुल बन सकती है, जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी।
6: भारतीय साहित्य एक विकसित सबल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं। किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
5: ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण आधार है। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने, विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण

0: ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया था कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में भी 17 सितंबर से सेवा संकल्प अभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान का आयोजन प्रदेश के हरेक ग्राम एवं नगर स्तर पर अधिक से अधिक जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए उत्साहपूर्वक किया जाए। 17 सितंबर को आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में शाम 7 बजे एक साथ दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। उज्जैन में भी भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान क्षिप्रा नदी के विभिन्न घाटों और महाकाल महालोक क्षेत्र में 25 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। आपको बता दें कि अभियान का उद्देश्य जनभागीदारी के जरिए सेवा, सुशासन और जन कल्याण का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। अभियंता दिवस के अवसर पर कल लोक निर्माण विभाग द्वारा भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य स्तरीय अभियंता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। लोक निर्माण से लोक कल्याण की अवधारणा पर आयोजित समारोह में अधोसंरचना निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और उल्लेखनीय योगदान देने वाले अभियंताओं, अधिकारियों, संयुक्त दलों तथा समारोह में मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार, विश्वकर्मा पुरस्कार, विक्रमादित्य पुरस्कार, रानी दुर्गावती पर्यावरण हितैषी पुरस्कार और राजा भोज पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। भगवान श्री गणेश की आराधना का 10 दिवसीय पर्व गणेश चतुर्थी के साथ आज से प्रारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर संस्कृत में सुभाषितम साझा करते हुए उन्होंने कामना की कि ये पवित्र त्योहार सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा। इधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में तो वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बैतूल में स्थानीय कलाकारों से मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं खरीदी। उन्होंने प्रतिमा के लिए 3,000 रूपये का ऑनलाइन भुगतान भी किया। श्री खंडेलवाल ने स्थानीय कलाकारों से प्रतिमा खरीदने को उनकी कला और रोजगार को बढ़ावा देने का माध्यम बताया। वहीं श्री चौहान ने प्रदेशवासियों को गणेश उत्सव की बधाइयां दी।
2: सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा वो आप सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। लेकिन मैं जो दृश्य देश भर में देख रहा हूं वो अद्भुत है। जिन युवाओं के बारे में, किशोरों के, यहां तक के बच्चों के बारे में ये बात कही जाती है कि इस जमाने में सोशल मीडिया और रील बनाने में व्यस्त रहते हैं, उनको हमारी संस्कृति और जीवन मूल्यों से बहुत लेना देना नहीं है, ये गलत है। आज देश भर की सड़कों पर मैं देख रहा हूं युवा, नौजवान, किशोर, बच्चे कई दिनों से लगे हैं गणपति बप्पा की प्रतिमा की स्थापना के लिए, गणेश उत्सव बनाने के लिए।
0: इधर गणेश चतुर्थी पर आज प्रदेश में भी आस्था और उत्सव का अलग ही रंग दिखाई दिया। उज्जैन के महाकाल मंदिर से लेकर इंदौर के खजराना और बड़ा गणपति मंदिर, मंदसौर के द्विमुखी चिंताहरण गणपति मंदिर और सतना, रतलाम, टीकमगढ़, ग्वालियर तथा बैतूल तक के मंदिरों और गणेश पंडालों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। घरों और सार्वजनिक पंडालों में भी विधि विधान से गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। कई स्थानों पर विशेष पूजन, अभिषेक और महाआरती के आयोजन हुए। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर स्थित सिद्ध विनायक मंदिर में भगवान गणेश को 5,51,000 मोदक का भोग लगाया गया। वहीं इंदौर के ही खजराना गणेश मंदिर में 7 करोड़ के आभूषण से श्री गणेश का श्रृंगार किया गया और 1,25,000 मोदक का उन्हें भोग लगाया गया। मंदसौर के गणपति चौक स्थित द्विमुखी चिंताहरण गणपति मंदिर में करीब 8 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा का विशेष आकर्षण बना हुआ है। गणेश उत्सव के दौरान यहां 12 दिनों तक विशेष पूजन, हवन और महाआरती के आयोजन होंगे।

रतलाम में भी सुबह से ही गणेशोत्सव का उत्साह देखने को मिला है। ग्वालियर में गणेश प्रतिमाओं की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ देखने को मिली। इस बार मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं की मांग यहां भी देखी गई। सतना के सिंधी कैंप स्थित मीरानी कॉलोनी में भी आज गणेशोत्सव की शुरुआत हुई। यहां स्थापित होने वाली गणेश प्रतिमा रविवार देर रात जबलपुर से यहां पहुंची। उधर जबलपुर जिले के बोलाई गांव के करीब 300 वर्ष पुराने सिद्धवीर खेड़ापति हनुमान मंदिर में हनुमान जी के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा विराजमान हुआ करती है। गणेश चतुर्थी पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसी तरह सीहोर के गणेश मंदिर में भी गणेश चतुर्थी के साथ 12 दिवसीय गणेशोत्सव शुरू हुआ। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ आयोजन की शुरुआत की गई। आज हरतालिका तीज पर्व भी है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि, अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा करती हैं। वहीं नव युवतियां भी अच्छे घर और अच्छे वर की कामना के लिए तीज पर्व मनाया करते हैं। बाद मौसम की करते हैं। प्रदेश में मानसून एक बार फिर पश्चिमी हिस्से में सक्रिय हो गया है। कल इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर संभाग के कई इलाकों में बारिश हुई। बड़वानी में नदी नाले उफान पर आ गए। वहीं टीकमगढ़ में बांध के गेट खोलने पड़े। मौसम विभाग ने अयोध्या, नीमच, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, गुना और श्योपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। सागर में अवैध शराब की घटना से मुरैना में आबकारी विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग ने नागरिकों से अवैध शराब की सूचना देने की अपील की है। झाबुआ जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 6 के उपनिर्वाचन की प्रक्रिया के प्रेक्षण के लिए सेवानिवृत्त आईएएस शेखर वर्मा को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। और मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने खंडवा जिले के मूंदी स्थित 132 केवी सब स्टेशन में 50 एमवीए क्षमता का अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत किया है। इस बुलेटिन में अपने अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। अभी आगे दीजिए।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
3: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
2: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एफएम माइंड पर यह आकाशवाणी सागर है, प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुन रहे सभी किसान भैया बहनों को बहुत ही बहुत स्वागत है। आज फिर का आपके संगे का हम सुनील राय स्वीकारो हमारी दो हाथ जोड़े की राम राम। मालखरो आज के कार्यक्रम में अपन का क्या लेके आए, सबसे पहले अपन चर्चा कर ली थी वो की आज अपन किसानी पे तो चर्चा कर ही कि वर्तमान में जो मौसम है वो खूब देखत भय अपन को का करो चज्जे और जो फसलें हैं वे कैसे अपने बोरों तक आवे उन्हें अपन का कर सकते हैं और प्रकृति अपनो कितनों संग दे है वो हिसाब से अपन उपे कछु मंथन कर है बातचीत कर है। और एक और बात रवि फसल की अपन को तैयारी सोई रखने हैं तो जो किसान मालक रहे हैं अगर फार्मर आईडी नहीं बनी है तो पहले से बनवा के अपन को का करने पर ओपे भी अपन चर्चा कर हैं। और जैसो के दिन दिवस की बातचीत रहते तो आज हिंदी दिवस कहा गणेश चतुर्थी कहा और आज तीजा सोई है ये पे भी अपन चर्चा कर हैं। दूरदर्शन दिवस डॉक्टर मूच गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती का ही ए पी भी अपन चर्चा कर है और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती है ए पी भी अपन चर्चा कर है। और जैसो की बरहमीस लोक संगीत मनोरंजन के संगे ज्ञान भी दे थे वो भी अपन बते हैं आपके लाने सुन रहे हैं जरूर। बहुत उमदा सी एक भेंटवार्ता लेके आए हैं रासायनिक खाद मन उर्वरक जो वितरण करो जाते लाइन से बचवे के लाने भीड़ से बचवे के लाने और जो खाद चाने हैं वही खाद लेवी के लाने ई विकास प्रणाली 2.0 कैसे अपनी रबी फसलों के लाने अपन उर्वरक प्राप्त करें ये पे चर्चा करिए अंकित रावत जो कि सहायक संचालक कृषि विभाग सागर से है इनसे बातचीत करी राजन नायक तिवारी ने अपन जरूर सुने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और अपन बातचीत कर लेते हैं। जैसो कि आज 14 सितंबर है हिंदी दिवस भी हर सालीना 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाओ जाते हैं। 1949 को संविधान सभा ने जो निर्णय लिया तो कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा हुई है यही दिना 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार करो। हिंदी दिवस मनावे को मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता फैलावो और ई के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देवे का हो। सो अपने लाने जो अपनी क्षेत्रीय भाषा है बातो माँ कहानी मनो अपनी हिंदी भाषा बड़ी माँ कहानी ऐसा ही जैसे कि कहो जात है कि हर 100 किलोमीटर पे वाणी बदलत है पानी बदलत है ऐसा ही भाषा भी बदलत है मनो अपनी जो मुख्य भाषा कहानी व हिंदी कहानी। अब अपन चर्चा करे लेते हैं दूरदर्शन दिवस। दूरदर्शन स्थापना दिवस के रूप में मनाओ जाते हैं और जो 15 सितंबर को मनाओ जाते हैं माने कल जो दिना भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन डीडी की स्थापना को प्रतीक कहा जो उनसे 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में एक प्रायोगिक प्रसारण के रूप में इन्हें अपनी यात्रा शुरू करी थी और एको उद्देश्य तो सत्यम शिवम सुंदरम जैसो कि अपने आकाशवाणी को है सूचना शिक्षा और मनोरंजन। अब बात आ जाते है आज को खास दिना बड़े धूमधाम से तैयारी चल रही है गणपति बब्बा आज पधार रहे हैं जो पावन पर्व जो त्योहार हर सालीना भाद्रपद मास शुक्ल के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है जो कि आज कहानी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही भगवान गणेश जी को जन्म भवत दो। सो जो त्योहार जन्मोत्सव के रूप में हर्षोल्लास के साथ दस ही दिना तक मनाया जाता है
एक और खास बात कहानी है में 1893 में लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में ई त्योहार को सार्वजनिक रूप से मनावे की शुरुआत करी हती, जो उनसे लोगों में राष्ट्रीय चेतना और एकता की भावना जागृत हो सके। तो कायने अपन एक बहुत ही उमदा सो लुग्गी सुन लेवे, गणेश जी पधारे रहे, एकों गा रही मालती सेन।

0: देखियो भैया हम बहुत ही उम्दा लोकगीत गाओ मालती सैन्य और गजानन पधार चुके हैं और अब अपनी भारी कहानी के अपन को 10 दिना तक सेवा करने का है और बड़े धूमधाम से बड़े मन से अपनी जोन भी इच्छा है बा धर लेने कहा बताने नैया बा जरूर पूरी हुई है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुने लेते हैं संदेश।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पॉन्ड

0: यानी डीसी के पास जाए या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें, और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मालखनो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब अपन चर्चा कर लेते हैं जयंती की। कल कहानो 15 सितंबर तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती का है। इनको जन्म 15 सितंबर 1876 के ग्राम देवनंदपुर पश्चिम बंगाल में भवत। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय बांग्ला और भारतीय साहित्य के सबसे लोकप्रिय बहुत ही नामवारे उपन्यासकार और कथाकार थे। इनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन की यथार्थ तस्वीर, मानवीय भावनाओं की गहरी समझ और महिलाओं की पीड़ा और उनके अधिकारों को सजीव चित्रण मिलत। ऐसे महान कथाकार उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को अपन सत सत नमन करते हैं। 15 सितंबर को और एक बहुत बड़े नाम की अपन चर्चा कर लिए थे, डॉक्टर मूर्छ गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती कहाई। भारत के महान सिविल इंजीनियर, राजनेता और मैसूर के दीवान थे। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में अद्वितीय योगदान के लाने भारत रत्न से, जो कि भारत को सर्वोच्च सम्मान कहा, उसे सम्मानित करो। तो भारत में हर सालीना 15 सितंबर को उनकी जयंती अभियंता दिवस के रूप में मनाई जाते हैं, जिनको अंग्रेजी में इंजीनियर्स डे भी कहते हैं। और जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं उतना सभी कारखानों में पूजा पाठ होते, कैसे मशीनों से चल रहा हो और अपनी आकाशवाणी या आप उन्हें आवाज सुन रहे हो हमारों की, जो भी मशीनों के माध्यम से आ पा रहा है। तो कल हमारे थे भी बड़े प्यार से मशीनों की पूजा हुई है। डॉक्टर मूर्छ गुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पे अपन को सत सत नमन करते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपन सुनते हैं एक भेंट वार्ता। खाद उर्वरक वितरण की जो प्रणाली कहाई, ई विकास प्रणाली 2.0 से कैसे अपन अपनी जो जड़कारी की फसल है वो केलाने खाद कैसे लेवे। अंकित रावत सहायक संचालक कृषि विभाग जो सागर में पदस्थ हैं उनसे चर्चा करी है राजेंद्र नारायण तिवारी जी ने, अपन बात सुनी लेते हैं।
4: किसान भैया बिन्नाहरो, समय समय पे हम आपोरों को नई नई उपयोगी और सामयिक जानकारी लेके आउ थे, तो आज यही क्रम में हमने आमंत्रित करो है अंकित रावत जी के लाने, जो सहायक संचालक कृषि सागर हैं, और आपसे हम आज चर्चा कर रहे हैं उर्वरक वितरण की ई विकास प्रणाली 2.0 के बारे में। सबसे पहले तो रावत जी आपको बहुत बहुत स्वागत है
5: जी। धन्यवाद।
4: और जा बताएं कि उर्वरक वितरण की जा ई विकास प्रणाली 2.0 का है और किसान भैया आ रहे हैं एको फायदा कैसे ले सकते हैं।
5: सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसानों के लिए महत्वपूर्ण आदानों में एक आज के समय आपका फर्टिलाइजर भी है, जिसके बिना खेती करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और पूरी फसल का इस पर प्रभाव पड़ता है। जिस तरह हमें आहार की आवश्यकता है उसी प्रकार फसलों को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। पोषक तत्वों की आवश्यकता हम दो प्रकार से पूरी कर सकते हैं, या तो हम जैविक पद्धति प्राकृतिक पद्धति का उपयोग करते थे जैसे हमारे पूर्वज करते आए हैं, है ना, उस माध्यम से हम उनकी पूर्ति करते थे। अब वर्तमान में परिस्थिति थोड़ी चेंज हो रही है, कुछ किसान तो कर रहे हैं आज भी वैसा कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर किसान पोषक तत्वों की पूर्ति करने हेतु उर्वरकों पर आश्रित हो गए हैं। वर्तमान में जो व्यवस्था संचालित हो रही है उर्वरक वितरण की, है ना, वो ई प्रकाश प्रणाली के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को उर्वरक का वितरण किया जा रहा है
4: जी।
5: और ये जो प्रणाली प्रारंभ हुई थी ये पूरे अपने देश में मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो इस प्रणाली को किसानों के लिए बीच में लेके आया है और जिससे किसानों को बहुत फायदा हुआ है। और ये प्रणाली हमारे प्रारंभ हो गई थी जनवरी से, जनवरी 2026 से प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन कुछ समस्याएं थी जिस समस्या के कारण किसानों को असहजता थी और कहीं ना कहीं वो समस्या के कारण किसान इसका उतनी अच्छी से उपयोग नहीं कर पा रहा था। पर्याप्त प्रचार प्रसार किया गया और सब कुछ किया गया लेकिन जो सॉफ्टवेयर में जो समस्याएं थी, वर्तमान में हमारी मध्य प्रदेश सरकार के जो हमारे मुख्य सचिव थे, प्रमुख सचिव थे, संचालक महोदय थे, किसान संगठनों थे, इनकी एक बैठक का आयोजन किया गया और जो हमारे किसान संगठनों के माध्यम से जो हमारे किसान भाइयों की जो समस्या आ रही थी उन समस्याओं को इस प्रणाली से दूर किया गया
4: जी,
5: है ना। तो महत्वपूर्ण समस्या ये आ रही थी, हमारे कुछ किसान भाई के पास जमीनें थी लेकिन कहीं ना कहीं वो अपडेट नहीं थी, खसरा उनका राजस्व खसरा अपडेट ना होने के कारण उनको खाद नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए भी उन्होंने व्यवस्था की गई। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये रहा कि जो पहले की प्रणाली थी आज की प्रणाली है थोड़ा अंतर आ गया है, सरलीकरण उसको कर दिया गया है। अब वर्तमान में किसानों को ना लाइन में लगने की आवश्यकता रहती है और ना उनको ये पता करने की आवश्यकता रहती है कि डबल लॉक में फर्टिलाइजर कब आ रहा है, सब अपने अपने मोबाइल से फर्टिलाइजर किट में टोकन बुक करते टोकन बुक करेंगे उसमें दिनांक जाएगी, उस दिनांक को अब जहां पे भी उन्होंने निजी विक्रेता के पास या सोसाइटी के पास या डबल लॉक सेंटर में अपना खाद बुक करा है उनको पता है कि हमें इतनी इतनी खाद हमारी जो पात्रता के अनुसार आ रही हमने बुक कर लिया गए और एकदम वाजिब दाम उसमें आपका तिवारी जी वो तक प्रदर्शित होता है कि आपकी जो बोरी का कितना मूल है
4: जी।
5: तो आपका जो मूल है आपको सामने वाले को केवल वो पेमेंट करना है, क्योंकि किसान भाइयों को ये पता ही नहीं रहता था कि हम जो लेके आ रहे हैं खाद उसका मूल क्या है, लेकिन अब तो आपको जब आप टोकन बुक करोगे टोकन में मूल प्रदर्शित हो जाएगा
4: जी। तो रावत जी, किसान भैया आ रहे हैं जो ये प्रणाली को लाभ उठावो चाहत है वे ऐसे कैसे जुड़ सकते हैं ये बारे में भी कछु जानकारी देवे।
5: उर्वरक वितरण की ई विकास प्रणाली आप जाएंगे, एक ऐप भी आ गया है आजकल सारे किसान भाइयों ने, बलराम कृषि ऐप के नाम से वो है, सबने अपने अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड भी करा रखा है
4: जी।
5: और ई विकास प्रणाली जैसे ही अपन गूगल पे डालते हैं तो उसकी लिंक खुल जाती है ना, उस पे उधर से भी अपन जा सकते हैं यहाँ से भी जा सकते हैं, उसमें जाएंगे हमारे किसान भाई और जैसे किसान भाई वहां पे जाएंगे और अपना आधार नंबर डालेंगे, जैसे आधार नंबर डालते हैं तो आधार नंबर के बाद जो हमारा आधार नंबर से रजिस्टर्ड जो मोबाइल है,
4: मोबाइल नंबर जरूरी है
5: हाँ, उस मोबाइल पे सबसे पहले तो ओटीपी आता है, जैसे ही ओटीपी आया आपने ओटीपी डाला तो हमारे किसान भाइयों की प्रोफाइल खुल जाती है
4: जी।
5: किसान भाई की प्रोफाइल में ये देखने लगता है हमारे किसान भाई का क्या नाम है, कौन से ग्राम का है, उसका क्या पता है, अन्य जानकारी जो भी रहती बेसिक जानकारी प्रोफाइल में सब प्रदर्शित हो जाती है। सबसे पहले वो अपनी जानकारी प्रदर्शित हो गई, जब जानकारी प्रदर्शित हो गई तो वो पूछता है कि हमारा किसान भाई का रकबा भी उसमें आज के क्या है एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से उनका रकबा भी अपडेट हो गया है कि कितना कितना उनका रकबा है, उनको अपना रकबा भी दिखने लगता है। जैसे मान लो कोई किसान भाई हमारा उसका 10 एकड़ का रकबा है तो उसमें दिखेगा कि आपका 10 एकड़ का रकबा है। कुछ किसान भाइयों का कभी कभी होता क्या है कि एग्रीस्टेक पोर्टल पर रकबा अपडेट नहीं होता, ऐसे किसान भाइयों से अपील है कि वो अपना पूरा रकबा एग्रीस्टेक पोर्टल पर अपडेट कर लें, क्योंकि जैसा हम रकबा अपडेट करेंगे वैसे ही हमको फर्टिलाइजर मिलेगा। अगर हमारा कोई खसरा छूट रहा है तो उसकी पोर्टल पर उसकी हमारी पात्रता कम हो रही है, तो किसान भाई अपने नजदीकी पटवारी से संपर्क करके अगर उनका एकाध कोई खसरा अपडेट नहीं है तो उसको खसरा को अपडेट करवा लें। हमारे खसरे की जानकारी आ गई फिर उसके बाद वो पोर्टल पर ये विकल्प दिखता है कि हम कौन सी फसल लगाना चाहते हैं, तो हम अगर एक फसल लगा रहे हैं तो हम पूरे रकबे में एक फसल डाल देंगे, और अगर हम तीन प्रकार की फसल है तो उसमें ये प्रदर्शित होता है कि आप कौन कौन से रकबे में कौन कौन सी फसल लगा रहे हैं। तो अपन ने अपनी फसल अपडेट कर ली पोर्टल पे, तो अपन ने अपनी अपनी फसल अपडेट कर ली। जैसे ही हमने अपनी फसल का चयन कर लिया उसके बाद जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रहता है जो हमारा कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्थान है ना, उसके अनुसार हमने जो फसलों का चयन किया है
4: जी,
5: उन चयनित फसलों के अनुसार उर्वरक की मात्रा प्रदर्शित होने लगती है
4: जी,
5: है ना। और जैसे ही वो प्रदर्शित होने लगती है उसके पश्चात हम ये चयन करेंगे कि हमें कौन सा उर्वरक चाहिए, हमने उर्वरक का चयन करा, उर्वरक के बाद हमने कौन से विकास खंड है उसका चयन करा, है ना। और जैसे मान लो हमारी जितनी पात्रता आ रही है अगर हम पूरा लेना चाहें तो हम पूरा एक बार में ले सकते हैं, और पूरा नहीं लेना चाहें कम लेना चाहें अपन कम का टोकन बुक कर लो, है ना। जैसे ही आप टोकन बुक करोगे आपको दिख जाएगा कि आपके नजदीकी कौन सी विक्रेता के पास उर्वरक उपलब्ध है, जो उर्वरक की भी आवश्यकता हमारे किसान भाइयों को है तो वो वाला उर्वरक अपन बुक कर लेंगे, और जैसे ही आपने बुक करा आपके मोबाइल पर ये मैसेज आ जाएगा जाएगा और ई टोकन आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जहां से आपने बुक करा है उसमें आपको समय दिखेगा कि ये आपका जो कूपन बुक हुआ है ना, उसकी वैधता इतने दिनों तक है, और उस दिन के पहले जाके संबंधित विक्रेता को अपना कूपन स्कैन कराएं और उर्वरक ले आए। तो ना लाइन में लगने की आवश्यकता, ना परेशान होने की आवश्यकता, घर के बैठे बैठे कूपन बुक करो और आप अपना जब टाइम निकाले जाओ वहां से उर्वरक रो।

0: कूपन स्कैन कराओ, अपना खाद लो और वापस आ जाओ।
1: जी मतलब बड़ी सुविधा की बात है। में पहले की जो उर्वरक वितरण की ई विकास प्रणाली हती ओ में यूरिया के संगे फास्फेटिक फर्टिलाइजर लेवो जरूरी हतो, तो अब जा ई विकास प्रणाली 2.0 आई है ये में भी का बदलाव भाव है।
0: ये कई किसानों की ये समस्याएं थी कि अगर हम मान लीजिए कोई यूरिया लेने जा रहे हैं, हमें यूरिया की आवश्यकता है तो हमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर क्यों दिया जा रहा है।
1: जी
0: तो वर्तमान जो व्यवस्था है आपका ई विकास प्रणाली 2.0, इसमें किसान चाहे तो केवल एक उर्वरक का भी अपनी आवश्यकता के अनुसार क्रय कर सकता है। फॉस्फेटिक उर्वरक क्रय करने की बाध्यता अब नहीं है, पहले जो थी, अब वर्तमान में इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। उसके पश्चात और कोई ऐसा बंधन नहीं है कि उसको लेना आवश्यक है। और एक और अच्छी चीज इसमें ये हो गई है कि जो ICR की जो आपकी रिकमेंडेड आपका फर्टिलाइजर का डोज है वो हमारा किसान भाई चाहे तो एक ही बार में उसको बुक कर सकता है। कभी कभी होता क्या है कि ऐसी परिस्थिति रहती है कि जैसे जनरली 2 बोरी यूरिया की हमारी रिकमेंडेशन आ रही है लेकिन हमें खेत में 3 बोरी डल रही है। तो होता क्या था कि उन्होंने कहा जब 3 बोरी डल रही तो 1 बोरी हम कहां से लाएं। जो अतिरिक्त फर्टिलाइजर है वो भी हम इस प्रक्रिया के तहत उठा सकते हैं। पहले उसमें हमें 50 अक्षर डालने पड़ते थे कारण के रूप में, हमें फला फला कारण से हमारे खेत में नाइट्रोजन का लेवल कम है इसलिए हमें अधिक यूरिया की आवश्यकता रहती, इस प्रकार का कुछ ना कुछ किसानों को ये विकल्प था, कम से कम 50 शब्द उसको डालने पड़ते थे।
1: जी
0: अब वर्तमान में क्या है, उन्होंने ड्रॉप डाउन बना दी है, यानी कि पहले से आपके 8-10 विकल्प हैं, है ना, उनमें से आप एक विकल्प का चयन कर लो, अब आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं है।
1: मतलब सरल प्रक्रिया हो गई,
0: बहुत सरल प्रक्रिया हो गई। उसके अलावा अतिरिक्त फर्टिलाइजर भी हमारा किसान भाई इस प्रणाली के अनुसार ले सकता है। एक चीज इसमें और अच्छी हो गई है कि पहले जो आपके उर्वरक की जो गणना हुआ करती थी आपके तत्वों के अनुसार हुआ करती थी कि आपका जो क्षेत्र है उसमें नेत्रजन के हिसाब से इतना किलोग्राम नेत्रजन लग रहा है, इतना किलोग्राम फॉस्फोरस लग रहा है, इतना किलोग्राम पोटास लग रहा है। लेकिन वर्तमान व्यवस्था में अब जो नेत्रजन की गणना है या जो आपका तत्वों की गणना है वैसी ना होके बोरियों में हो रही है कि आपकी 2 बोरी की पात्रता है, आपकी 3 बोरी की पात्रता है, आपकी 4 बोरी की पात्रता है ना, जो भी पात्रता है वो आपको प्रदर्शित हो रही है ना। उसके बाद एक अच्छी व्यवस्था ये हो गई है कि कभी कभी हमारे किसान भाइयों के साथ समस्या ये आती है कि उनकी फसल खराब हो गई, तो फसल खराब होने की स्थिति में उन्हें अगर बोनी करना है दोबारा खाद की आवश्यकता है, ऐसे किसान भाई भी चाहे तो अपनी उर्वरक की मांग करके फर्टिलाइजर ले सकते हैं, है ना। इसमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग की सुविधा प्रदान की गई। एक्सेप्शनल हैंडलिंग का मतलब ये है कि अगर ऐसी परिस्थिति रहती है तो आपका राजस्व अधिकारी के पास उसका अनुमोदन जाता है और 48 घंटे के अंदर राजस्व अधिकारी, पहले समय उसमें ज्यादा लग जाया करता था लेकिन अब व्यवस्था ये कि 48 घंटा के अंदर वो उसको अनुमोदित कर देता है, हमारे किसान भाइयों को फर्टिलाइजर मिल जाता है।
1: जी रावत जी, कछु किसान भैया रहे ऐसे भी होते हैं जिनको मान लो कि राजस्व अभिलेख अपडेट नहीं है, तो ऐसे किसान क्या कर सकते हैं?
0: ऐसे भी हमारे कई किसान भाई हैं जिनका राजस्व अभिलेख अपडेट नहीं होता है। जैसे कि अगर आप ग्राम के हम कोटवार की बात करें
1: जी,
0: या ऐसी भूमि की बात करें कि जिसका कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, है ना, तो जब अपन उर्वरक वितरण की ई विकास प्रणाली का होम पेज अपन खोलते हैं और जैसे ही खोलते हैं तो उसमें कई विकल्प प्रदर्शित होते हैं, जैसे आपका वन अधिकार पट्टा है ना, उसके बाद राजस्व पट्टा, सिकमी पट्टा है ना, आपका धार्मिक ट्रस्ट की भूमि है, ऐसे किसान जिनकी फार्मर आईडी नहीं है, यूनिवर्सिटी की जमीन, मृत किसान, असक्षम किसान, है ना, इस प्रकार के विकल्प ये पहले भी थे लेकिन अतिरिक्त विकल्प इनके अलावा कर दिया है प्लांटेशन कि जहां पे प्लांटेशन क्रॉप लग रही है है ना, वहां विशेष प्रयोजन करके विकल्प दिया गया। जो आपका क्वेश्चन ये था कि ऐसे भाई जिनका कहीं राजस्व अभिलेख ही अपडेट नहीं है लेकिन वो खेती कर रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करे जा रहे हैं, तो वो विशेष प्रयोजन विकल्प के माध्यम का चयन करेंगे और जैसे ही माध्यम का चयन करेंगे उसमें संपूर्ण जानकारी जो आपसे जानकारी मांगते जाते हैं वो जानकारी का प्रविष्टि करते जाइए। जैसे आप प्रविष्टि करेंगे जो संबंधित आपके तहसीलदार हैं, संबंधित राजस्व अधिकारी हैं, उनके पास वो ऑनलाइन जो है आपने प्रक्रिया करी और वो उनकी आईडी पे प्रदर्शित होने लगेगी और वो जैसे ही अनुमोदन देंगे, अनुमोदन के बाद हमारे ऐसे किसान भाई अपना उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी रावत जी, किसान भैयारों को कई प्रकार के कामकाज लगे रहते हैं, अगर जैसे मान लो किसान ने अपना टोकन बुक कर लो है, मिल गया है, तारीख मिल गई है, और अगर ये दौरान अकेला ने कोनो काम आ गया, कहूं बाहर जाने पड़ रहा है, तो कौन प्रकार से वो अपना टोकन निरस्त कर सकते हैं?
0: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है तिवारी जी, क्योंकि कई किसान भाई हैं कभी कभी कर लेते हैं लेकिन परिस्थिति ऐसी निर्मित हो जाती है कि वो उस चीज को नहीं समय निकाल पा रहा है, कई समस्या है, पानी कब कैसी समस्या निर्मित हो जाए इसका कोई अंदेशा नहीं है। तो इसमें 2 प्रकार के व्यवस्थाएं हैं। एक व्यवस्था तो ये है कि अगर कोई किसान भाई अपना टोकन निरस्त कराना चाहता है तो वो टोकन बुक करने के 24

0: घंटे पश्चात उसमें एक आपका टोकन निरस्त करने का विकल्प दिखता है, तो हमारा किसान भाई चाहे तो उस विकल्प का उपयोग कर ले, तो 48 घंटे के पश्चात जो उसने टोकन बुक करा है वो टोकन को निरस्त कर दे, ये तो उसके हाथ की बात है, उसको वहीं दिख रहा है
1: जी।
0: दूसरी चीज ये रहती है कि अगर मान लो निरस्त भी नहीं कर पाया और उसने अपना उर्वरक नहीं लिया, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं होता कि आपने टोकन बुक कर लिया है तो आप बाध्य हो कि अगर आप नहीं लेते हो तो आपकी गणना के अनुसार अब आगे फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। तो हमारे ऐसे किसान भाई जो निरस्त भी नहीं कर पा रहे हैं
1: जी,
0: और आपका जो उसकी निर्धारित अवधि है वो अवधि समाप्त होती है, तो उसके पश्चात टोकन स्वतः भी निरस्त हो जाता है और हमारा किसान भाई चाहे तो उसको बाद में पुनः टोकन बुक करके फर्टिलाइजर ले सकता है। इसके अलावा तिवारी जी, एक मैं आपको और विशेष ध्यान हमारे किसान भाइयों का केंद्रित करना चाहूंगा कि अगर ई विकास प्रणाली संबंधी किसी भी समस्या हमारे किसान भाइयों को फील्ड में आती है तो उस समस्या के समाधान के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, तो हमारा किसान चाहे तो सीधे उस नंबर पे संवाद स्थापित कर सकता है और जो उसको समस्या आ रही है वो उसका त्वरित निदान प्राप्त कर सकता है।
1: तो किसान भैयाओं को वो नंबर बता दो जाए।
0: वो नंबर है भैया, सारे किसान भाई इसको नोट कर ले नंबर, सब अपने अपने कागज पेन उठा लें क्योंकि ये नंबर बहुत उपयोगी नंबर है, अगर आपके काम नहीं आएगा तो आपके पड़ोसी के काम आएगा, आपके पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो आपके रिश्तेदार के काम आएगा, अगर आपके रिश्तेदार के काम नहीं आ रहा तो गांव के अन्य व्यक्तियों के काम ये नंबर आ सकता है, क्योंकि हमारे किसान भाई को कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करना पड़ सकता है और हर समस्या की समाधान करने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये नंबर जारी किया गया है ना। और हमारे किसान भाई इस नंबर को नोट डाउन कर लें, 7880223344।
1: तो जो नंबर हिंदी में भी हम बताए दे रहे हैं लिख ले गए किसान भैया, 7880223344।
0: एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा
1: जी,
0: टोल फ्री नंबर पे आप हमारे किसान भाई जो फोन लगा सकते हैं वो प्रातः 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक,
1: समय को ध्यान रखें किसान भैया। तो अंकित रावत जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भैया बिन्नारों के लाने उर्वरक वितरण की ई विकास प्रणाली 2.0 के बारे में इतनी उम्दा जानकारी दी, एक लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मालखरो रावत जी ने सभी बातें बड़ी बारीकी से बताई, अपने काम की बात वर्तमान समय में जा कहानी के जो किसान भैया हरों की फार्मर स्टेट मतलब फार्मर आईडी नहीं बनी है या जो अपने सबरे खसरा नहीं चढ़े हैं तो तुरंत ही अपने लाने, अब अपने पास समय है, अपने जो पटवारी कहा है उनको अपनो आधार कार्ड और अपनो खसरा नंबर दे देने कहा, और अगर अपन उत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ग्राम के सचिव का है, सहायक सचिव का है, इनसे अपन को अपनों जो काम करवा के अवैध रख लेने कहा, कहा कि हरकत से ही बरकत आते है, उतना हलचल तो कर नहीं पड़े अपन को, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनाते हैं अपन संदेश।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: देखो मालखरो, आज अपने घर में गणपति जी तो पधार ही रहे हैं, संगे संगे जो न खास त्योहार और कहान हो तीजा, हरतालिका तीज को व्रत, जो त्योहार ऐसो कहानों के अपने सनातन धर्म में महिलाएं अटूट श्रद्धा को परिचय देते हैं, निर्जला उपवास राखते हैं और पूरे में तैयारी चल रही कहानी काय में अपन उन्हीं के लाने एक लुग्गी सुने ले रहा है, ये खूं गा रहे हैं आनंदी पटेल।

मालकरों आनंदी पटेल ने बड़े अच्छे से चित्रण कर दो कि सोनी सी पुतरिया कहाई, मानो सबरी महिलाएं सोनी सी पुतरिया कहाई और भूतनाथ जैसे दिखावे को काम अलग है, तो मनो उनको समर्पण देखरेख सब चीजें बिल्कुल आज भी अपने ते के परसों में देखवे को मिलत है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बताओ चाहते हैं आज मौसम कैसो का रहो। दिन को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहो, न्यूनतम तापमान रहे 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड, आर्द्रता रही है 90 और 92%, माने कहूं कैसी कुंवर वर्षा होते ही रही है, अवेलोकुल वर्षा भई है 833 मिलीमीटर, आगे आवे वारे दिनों में कुंवर वर्षा घाई पानी तेज मध्यम झला आते ही रहे, अपन अपनी फसलों को कौन हिसाब से उठा पा रहे हैं, जो अपन को अपने अनुभव के हिसाब से प्रकृति का सहायता दे पा रही है वो हिसाब से काम करने का बात आ जाते। अब सागर कृषि उपज मंडी से जो भाव प्राप्त हुआ है, आज गणेश चतुर्थी कल है तो इतवार, तो भाव कहा है पुराने, पीसीआर 2400 से 3855, चना 5000 से 6180, मसूर 5600 से 9200, सोयाबीन 4000 से 5800, बटरी 3700 से 4400 रुपये प्रति क्विंटल, तेवरा 3200 से 3300 रुपये और मूंग 7000 से 7400 रुपये प्रति क्विंटल। इन्हीं सब बातों के संग ग्राम सभा कार्यक्रम

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी सागर है। रात के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी के स्वर में। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। ये गीत था फिल्म चरस से। कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, इसे हमने लिया है फिल्म आन बान से। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का।

जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।

ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार के स्वर में। शब्द रचना इंदेवर की थी और संगीत दिया था श्यामल मित्रा ने। यह गीत था फिल्म आनंद आश्रम से। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं संतोष आनंद की शब्द रचना लता मंगेशकर और मुकेश के आवाजों में। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और ये गीत हमें लिया है फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से।

संगीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। पेश है कार्यक्रम संगीत सरिता।

समीर का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। स्वर और संगीत था अदनान सामी का। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं जावेद अख्तर का लिखा गीत राजू सिंह की बनाई तर्ज पर। स्वर है अलका याग्निक और हरिहरन का।

साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी के महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।

0: बेटी की वो सोंधी सोंधी खुशबू, सच अब लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
1: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर न्यूज ऑन AIR।
0: न्यूज ऑन AIR?
1: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
0: अरे वाह वाह, कमाल है।
2: एक जमाने से कहानी है, सुना है आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड बेस OTT ऐप ना।

आकाशवाणी सागर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फैज अनवर का लिखा हुआ गीत सोनू निगम के स्वर में। संगीत दिया है निखिल वनैने।

0: कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं कैलाश खेर का लिखा हुआ गीत उन्हीं के स्वर में। संगीत दिया है नरेश कामत ने।
1: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी

0: कैलाश खेर के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता अब संपन्न हुआ। FM9 पर यह आकाशवाणी सागर है। रात के 8:45 होने को है। समाचार संध्या आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमरीकी विश्लेषक ने कहा, दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
2: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
1: नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद समूह में भारत के नेतृत्व की कई सदस्य देशों ने तारीफ की है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 2 दिन का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स में 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा है। ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सम्मेलन में एकमत से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दुनिया के नेता शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की गई और सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार और लोगों की प्रशंसा की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने बेहद सफल सम्मेलन आयोजित किया है। चीन की सरकारी मीडिया और नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को ग्लोबल साउथ देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता के सहयोग और एकजुटता के लिए सकारात्मक कदम बताया। रूस ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के साथ समावेशी विकास उन्मुखी साझेदारी के लिए मॉस्को के समर्पण की फिर से पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सचिव अंतोनियो गुतरश ने भी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की तारीफ की

0: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सहअध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच गरीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
5: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर इस सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
6: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। आज राज्य के 10,245 वार्डों के लिए मतगणना हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाजपा ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि अलवर में वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है और अजमेर तथा पाली में पार्टी आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश

0: बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति प्रकट की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@airnews हिंदी और पब्लिक पर @airnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
2: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। परिषद ने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिष्टी योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखौ स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
3: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मनोज सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग सराजा, गणेश गली, तेजुकाया और जीएसबी जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस, रेलवे और बेस्ट ने खास इंतजाम किए हैं। कई जिलों में एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया गया। इस साल शोर शराबे वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी कुदरत दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की। इसके साथ ही समाचार संध्या का

0: समाप्त हुआ, नमस्कार।
1: एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है, रात के 9 बजे हैं। पेश है मन चाहे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। फिल्म का नाम अखियों के झरोखों से। ये गीत सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका रॉबिन, शिवा शिवांशु और प्रेम नारायण। ग्राम बिनेका से बलराम सेन, अरविंद सेन, रविंद्र सेन, महेंद्र सेन, सुरेंद्र सेन, रेखा सेन, संगीता सेन, राम देवी सेन, नंदिनी सेन, रिया दीप्ति, कौशल और आर्यन। यवतमाल महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं ये गीत।

मन चाहे गीतों के इस कार्यक्रम का अगला गीत इन श्रोताओं की पसंद पर। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत राजेश रोशन की बनाई तर्ज पर। दूसरा आदमी फिल्म के लिए स्वर है लता मंगेशकर और किशोर कुमार का।

कार्यक्रम का अगला गीत है इन श्रोताओं की पसंद पर। पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल, बेबीसिया और जाधव परिवार के सभी सदस्य, ग्राम लोहेड़ी महोबा से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु और रोनिका यादव, बन्नी बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा, इन सभी ने सुना चाहा है इंदिवर का लिखा हुआ गीत कामचोर फिल्म से। संगीत है राजेश रोशन का, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुनें

0: सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
1: आकाशवाणी सागर से आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत। अगला गीत इन श्रोताओं की पसंद पर उदयपुर राजस्थान से कोमल भारद्वाज, अनुष्का भारद्वाज और शांतनु भारद्वाज, अस्तुपुरा मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी, गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद, इन सभी ने सुनना चाहा है राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गीत कल्याण जी आनंद जी की बनाई तर्ज पर फरार फिल्म से, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार का।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं होटल फिल्म से गीत मनीर उदास और आशा भोसले के स्वर में। गीत लिखा है नेवर ने, तर्ज बनाई है उषा खन्ना ने। पसंद करने वाले श्रोता हैं मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल और विक्टा बजाज। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दाता सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

इस गीत के साथ ही मन चाहे गीतों का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी सागर है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी देर में।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: उसने कहा है जोधन लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोले रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: कभी इस पग में कभी उस पग

0: ये सच है कि हमारी और आपकी दोस्ती इतनी पक्की है कि जिसे हम कभी तोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन ये गाना हमारी दोस्ती के नाम नहीं है, बल्कि उस शख्सियत के नाम है जिस पर केंद्रित है आज के फनकार कार्यक्रम। जरा ये संवाद सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: कितने आदमी थे?
2: सरदार, दो आदमी थे।
1: दो आदमी।
3: सुंदर के बच्चा,
1: वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों धिक्कार है? अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
4: पूरे 50,000।
1: सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो मां कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा।
3: और ये तीन हरामजादे, ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए,
1: इसकी सजा मिलेगी,
3: बराबर मिलेगी।
1: कितनी गोली है इसके अंदर?
2: हाँ?
3: कितनी गोली है?
2: 6 सरदार,
1: 6 गोली, 6 गोली है इसके अंदर, 6 गोली और आदमी 3।
3: बहुत बेइंसाफी है ये।
1: अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब इसके 3 खानों में गोली है, 3 खाली। अब हम इसको घुमाए दिए। अब कहां गोली है कहां नहीं हमको नहीं पता,
3: हमको कुछ नहीं पता।
1: इस पिस्तौल में 3 जिंदगी 3 मौत बंद है, देखें किसे क्या मिलता है। बच गया साला।

0: मेरा क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब गोली खा। कमाल हो गया।
2: तीनों बज गए, ये तीनों।

अब आपको लग रहा होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज उस शख्सियत पर केंद्रित है जिसका फिल्म शोले से कुछ ना कुछ तो ताल्लुक है। सोचते रहिए, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: भाई आज के फनकार कार्यक्रम में अगर कोई पहेलियां बुझाए तो जाहिर है कि आप पशुपेश में पड़ जाएंगे, आप चक्कर में पड़ जाएंगे, आप सोच में भी पड़ जाएंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि बहुत देर हो गई, पहेली को सुलझा लिया जाए और आपको बता दिया जाए कि आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक बहुत बड़े और बहुत ही कामयाब निर्माता निर्देशक पर, जिनका नाम है जीपी सिपी।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे
1: घटा के संग संग,
2: संभलना।
1: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग,

हाथों में हाथ चल तू साथी चल। एक तो ये मौसम है।

0: अपनी रेशम जुल्फे लहराने दे। ला ला ला ला ला ला।
1: जीपी सिप्पी का नाम हिंदी सिनेमा उद्योग के इतिहास में केवल एक फिल्म के लिए याद किया जाएगा, लेकिन उस फिल्म का पता तो आपको भी है और वो फिल्म है 70 mm वाली शोले। लेकिन जीपी सिप्पी ने सिर्फ शोले ही नहीं बनाई और वो सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं थे, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत बतौर डायरेक्टर हुई थी और वो भी साल 1955 में। फिल्म थी मरीन ड्राइव।

जिसके बाद उन्होंने एक बड़ी ही कामयाब फिल्म का निर्देशन किया। इस फिल्म के गाने आज तक संगीत के कदरदान गुनगुनाते हैं। ये फिल्म थी अदले जहांगीर।

साल 1956 में जीपी सिप्पी की निर्देशित फिल्म आई श्रीमती 420। साल 1959 में उन्होंने बनाई भाई बहन, इस फिल्म के निर्देशक थे वो। अब जरा आपको ये भी बता दिया जाए कि जीपी सिप्पी प्रोड्यूसर बने थे सन 1951 में फिल्म सजा के जरिए। फिल्म सजा के गाने हम आज भी गुनगुनाते हैं।

सन 1958 में उन्होंने एक सस्पेंस फिल्म बनाई 12 o'clock। उसके बाद सन 1955 में आई गुनगुनाती हुई कामयाब फिल्म मेरे सनम के प्रोड्यूसर भी जीपी सिप्पी ही थे।

0: जानकार कार्यक्रम में हम आज आपको निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी के बारे में बता रहे हैं, जिनका जन्म 14 सितंबर 1914 को हुआ था और वो दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जाने जाते हैं। ज्यादातर लोगों को उनकी फिल्म शोले का पता है, इससे आगे या पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। फिल्म शोले के निर्देशक तो थे उनके बेटे रमेश सिप्पी, लेकिन जीपी सिप्पी ने शोले के पहले और बाद में कई नामी फिल्में बनाई हैं। शोले से पहले ही वो सन 1968 में ब्रह्मचारी जैसी कामयाब फिल्म बना चुके थे।
1: चक्के में चक्का, चक्के

दूसरी तरफ सन 1971 में उन्होंने बनाई थी फिल्म अंदाज, सन 1975 फिल्म शूले, और शूले के ठीक बाद सन 1980 में आई थी फिल्म शान। सन 1985 में रमेश सिप्पी के निर्देशन में जीपी सिप्पी की प्रोड्यूस फिल्म आई थी सागर।

सन 1985 के बाद से जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस का ग्राफ थोड़ा सा नीचे हुआ था। दरअसल इसके बाद आने वाली फिल्में कामयाबी की वो कहानी नहीं रच पाई जो शोले या उसके पहले और बाद की फिल्मों ने रची थी, और जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस को फिल्म संसार का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस

सन 1992 में आई राजू बन गए जेंटलमैन, यहां से शाहरुख खान की कामयाबी की कहानी शुरू होती है। संघर्ष के दौर में शाहरुख खान जीपीसीपी के दफ्तर में अपनी तस्वीरें लेकर बैठे हुए थे और राजू बन गया जेंटलमैन के निर्देशक अजीज मिर्जा ने जीपीसीपी से कह रखा था कि इस लड़के में हीरो बनने का जबरदस्त पोटेंशियल है। जब जीपीसीपी ने शाहरुख खान को देखा तो उन्होंने फौरन ये फैसला किया कि उनकी इस अगली फिल्म में राजू शाहरुख खान ही बनेंगे।

0: उसके बाद आई आतिश। सन 1997 में जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस की आखिरी बड़ी फिल्म आई थी हमेशा। आपको बता दें कि जीपी सिप्पी के बेटे रमेश सिप्पी एक कामयाब निर्देशक के बाद एक कामयाब प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं। रमेश सिप्पी के बेटे रोहन सिप्पी परिवार में सिनेमा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये फिल्म है दम मारो दम।
1: तेरी बातों की शराब, तेरे पापों के हिसाब, तेरी स्विस बैंक अकाउंट खोल खोल मोल चाल, तेरे गली गली यार पूरी गोली बार बार, पहले हरी ले ले ली फिर दिखी बार बार, तेरी होगी सरकार तेरा होगा दस बार, पर रहेगी नहीं कमजोरी हर बार, जाएंगे जाएंगे जाएंगे बारी बारी,
2: आपकी सेवा में जनहित में जा रही है।
0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अजीमुश्शान निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
3: आज के फनकार।

सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मुझे तुमसे बेहतर की ख्वाहिश ना थी ना रहेगी। तुम्हारी जरूरत थी, जरूरत है और रहेगी। दुनिया लाख हसीन चेहरे दिखाए, दिल ने तुम्हें चुना, तो फिर किसी और की ख्वाहिश कहाँ रहेगी। एक ही शख्स में सब कुछ पा लिया, इश्क भी मोहब्बत भी, प्यार दोस्ती रूह का सुकून दिल का करार भी। तू मेरा अपना भी है और मेरी दुनिया भी, मैंने खुद को तुझ में पा लिया। अब अगर कोई पूछे कहाँ है मोहब्बत, जवाब होगा सिर्फ

तुझे शौक नहीं था मोहब्बत का, तुझे एक नजर क्या देखा, दिल बखावत कर बैठा, फिर ना अक्ल ने साथ दिया, ना दिल ने कोई दलील मानी, बस एक तुम और तुम्हारी याद जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी, ये मोहब्बत मेरे दिल की किस्मत बन गई, तुझे गले से लगाकर बताऊं कितनी रातें तेरी याद में जागकर गुजर गईं, तुझसे दूरी में कितनी बेचैनी, तन्हाई में कितने लम्हे तेरा नाम लेते हुए ठहर गए, काश तू एक बार करीब आ बैठे, मैं लफ्जों के बगैर अपनी कैफियत सुना दूं कि तुम दूर होते हो तो जिंदगी सूनी बेनूर सी लगती है मुझे।

हम खामोश रहे और तुम बात समझते गए। हम नजरें चुराते रहे और तुम हाल पढ़ते गए। हम हाले दिल छुपाते रहे और तुम करीब आते गए। फिर बेपनाह इश्क हुआ और तुम दिल के मालिक बन गए। तेरे होने से जिंदगी में कोई सवाल नहीं, तेरा हाथ थामा तो सफर में कोई मलाल नहीं। तुझे पाकर अब किसी खुशी का इंतजार नहीं, राहे मोहब्बत में तू मिला तो दिल पे अब कोई अख्तियार नहीं।

पत्थर मुझे कहता है, मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ। उसने मुझे छूकर नहीं देखा। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। पलकों के किनारे जो हमने कभी भिगोए नहीं, उन्हें ये लगता है कि हम कभी रोए नहीं। पूछते हैं किसे देखती हो ख्वाबों में, उन्हें क्या खबर के हम बरसों से सोए नहीं। दिल में छुपा है जो जुबा से कहें कैसे, मोहब्बत है तुमसे अब ये बताएं कैसे। जज्बाए इश्क सच्चा ना होता तो रास्ता बदल लेते, मेरे रास्तों का गुजर तुमसे तुम तक है, सांसों का सफर तुमसे तुम तक है। हाँ मेरी मोहब्बत भी तुमसे तुम तक है, दिल जिसे भूल नहीं सकता वो धड़कन हो तुम। तुमसे है मेरी दुनिया हसीन, मेरी पहली मोहब्बत हो तुम।
1: मगर बचा

मिलने की ख्वाहिश भी अजीब ख्वाहिश है। दिल ने हर ख्वाब में तुमको पुकारा है, तुम आओ करीब तो वक्त ठहरने लगता है। तुमसे बिछड़ना दिल को कहाँ गवारा है, ना तुमसे दूर रहने की ख्वाहिश ना भूलने का हुनर। तुमसे जुड़ी मेरी हर बात अब किसी बात की तमन्ना नहीं दिल में। तुम मिले तो मुकम्मल हुई मेरी तन्हाई, तुम मिले तो मुझे खुद से भी हुई मोहब्बत। तुम्हारा जिक्र हुआ तो महक गई तन्हाई, जैसे खामोश फिजा में उतर गई रानाई। तेरी आवाज में कुछ पाया ऐसा सुकून, जैसे धड़कते हुए दिल को मिले अपनी गहराई। तुम्हें सोचा तो लगा वक्त भी ठहरने, दिल ने इश्क की एक नई दुनिया बसाई।

दिल से उतरकर दिल में ही रहा करते हैं, कुछ ताल्लुक भी अजीब हुआ करते हैं। लोग चेहरों से मोहब्बत का सबक पढ़ते हैं, अपने दर्द को दिल में ही छुपाए रखते हैं। किसी ने पूछा मुस्कुरा के हाल हमारा, दिलों में तूफान लब पे खामोशी रखते हैं। वफा के नाम पे ये जो जख्म मिल गए हमको, उन्हें दिल में तुम्हारी अमानत बनाए रखते हैं।

है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार। विविध भारती से छाया गीत कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्र अध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी। डॉ जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देश, 10 साझेदार देश, 4 क्षेत्रीय संगठन और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉ जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट

0: नीति विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में दो दिन के हिंदी दिवस और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेन देन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रूपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। पिछले सप्ताह हमले में क्षतिग्रस्त हुई सऊदी अरब की एक महत्वपूर्ण तेल पाइपलाइन मरम्मत के लिए 3 से 5 सप्ताह तक बंद रह सकती है। 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन ले जाने वाली ये पाइपलाइन सऊदी अरब के लिए लाल सागर के रास्ते तेल निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सऊदी अरब ने गुरुवार के हमले के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया के ड्रोन हमलों को जिम्मेदार ठहराया है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी की जीत झूठ की गूंज पर सच्चाई की जीत का सबूत है। श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान के लोगों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे डबल इंजन सरकार के तहत सुशासन और विकास की नीतियों का पूरा समर्थन करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बिरी टाकर ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कांस्य पदक जीत लिया है। टोक्यो में उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today lauded the successful conclusion of BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as the most of the heads of state were present to represent their countries. Talking to the media, Dr. Jayashankar said that it is important to recognize that this BRICS summit was taking place in a very polarized world.
3: BRICS summit was taking place in a very polarized world where there are two major conflicts with a very strong opinions and interests. Even in the midst of this polarization, we actually forged a consensus, which was Mr. Shah, Middle East conflict. We were able to get out a statement which everybody agreed, a statement urging peace, security, stability, long-term understanding, the smooth flow of global trade, of supply chains, energy, and of the protection of civilians and civilian interests.
2: The minister stated that the BRICS countries were very clear that any act of terrorism is a criminal act, and it also explicitly recognized the unacceptability of the Pahalgam attack. Condemning the terrorism, Dr. Jayashankar said that BRICS emphasized zero tolerance for terrorism and rejected double standards in countering it. India's leadership of BRICS has won praise from several member countries following the successful conclusion of the 18th BRICS summit in New Delhi. The two-day summit held in the national capital under India's chairmanship concluded yesterday. BRICS comprises 11 major emerging economies representing nearly half the world's population and around 40% of global GDP. The BRICS countries unanimously adopted the New Delhi Declaration 2026 at the summit on Saturday, with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping among the world leaders attending. The New Delhi Declaration also commended India's chairship and expressed appreciation to the government and people of India for hosting the summit. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the people of Rajasthan following the BJP's victory in the urban local body elections. In a social media post, the Prime Minister said the party's win is a testament to the triumph of truth over the echo of lies. Mr. Modi said, "The people of Rajasthan have once again made it clear that they fully support the policies of good governance and development under the double engine government. This will not only propel the state to new heights of progress, but also strengthen the government's resolve to bring prosperity to the lives of every individual," he added. Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah has said that Chhatrapati Shivaji Maharaj made Swaraj, Swadharma and Swabhasha, self-rule, one's faith and one's own language, the fundamental elements of Swaraj. Addressing Hindi Divas 2026 and the 6th All India Official Language Conference in Mumbai today, the Union Home Minister highlighted Maharashtra's rich linguistic and cultural heritage. He said, "Shivaji Maharaj gave Marathi prominence in administration and created a strong repository of terminology in the language, which became an important foundation of governance during the era of Hindavi Swaraj." Greeting people on Hindi Divas and Ganesh Chaturthi, Mr. Shah described their celebration on the same day as a Manikanchan Yog and auspicious coincidence. The festival of Ganesh Chaturthi is being celebrated today across the country with great devotion. The day marks the birth of Lord Ganesh, who is a symbol of wisdom, prosperity and good fortune. Also known as Vinayaka Chaturthi or Ganesh Utsav, the day marks the beginning of 10-day-long festivities during which people place clay idols of Lord Ganesh at their homes and worship them. President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings to the people on the occasion of Ganesh Chaturthi. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Modi today attended the Ganesh Chaturthi celebration at the residence of Union Minister Piyush Goyal in New Delhi. The government has approved export of power for 18 hours a day to Nepal Electricity Authority till the 31st of December this year. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second T20 International at the Arun Jaitley Stadium in Delhi tomorrow. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. And with that, we end this news bulletin.
0: Frequency modulation 102.6 MHz पर यह आकाशवाणी सागर है। रात के 11:10 हुए हैं। आज की यह सभा अब संपन्न होती है। कल की सभा में सुबह 5:55 पर एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।